मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं उठिए, जागिए, सवेरा हो गया है और हो सकता है आपके यहाँ भी रिमझिम फुहारे पड़ रही हो या हो सकता है तेज़ बारिश हो रही हो, तो अपने चेहरे पर से चादर को हटाइए, ज़रा बाहर जाके और देखिए कि आज प्रकृति आपके लिए कौन से उपहार लेकर आई है, रिमझिम फुहार या जोरदार बारिश, क्योंकि धीरे

0: धीरे धीरे मौसम ने, मानसून ने हर जगह दस्तक देनी शुरू कर दी है और अब समय हो गया है कि ये सुबह तो है ही है, दिन की शुरुआत है जो आपके लिए ना जाने कितनी अनंत संभावनाएं, कितने शुभ संकेत, कितनी ऊर्जा सब कुछ लेकर आई है। तो नींद को त्यागिए और अपने इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत कीजिए। और आकाशवाणी लखनऊ तो आपने ट्यून इन कर ही रखा है, फिलहाल कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ, और आज हूँ आपके साथ मैं, आपकी दोस्त नंदिनी मिश्रा। स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले, आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी।

उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, सबसे पहले बात कृषि की। तो आज कृषि चर्चा में मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आनंद सिंह।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खेती के साथ साथ आप पोल्ट्री व्यवसाय कर रहे हैं तो मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन इस मौसम में क्या हो, कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड कटिया सीतापुर से वैज्ञानिक पशु विज्ञान डॉक्टर आनंद सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस मौसम में मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन में क्या कुछ करें पोल्ट्री पालक।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। इस मौसम में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे बरसात का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे जो हमारे जीवाणु हैं या फंगस हैं, प्रोटोजोआ हैं और बहुत सारे पैरासाइट जो है इस समय एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें सावधानी तो रखनी है मुर्गियों में आहार का प्रबंधन। यानी एक तो हमारी मुर्गियाँ होती हैं जो अंडा देने का कार्य करती, केवल हमें उसके लिए ही पालन करते हैं,
1: यानी लेयर
2: लेयर। तो लेयर में जो है एक कह सकते हैं जो हमारा रेडीमेड फीड आता है, वो रेडीमेड फीड का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक स्टेज में जो है हमारे पक्षी को कितना एनर्जी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, ये इसमें हम बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जो है डालते हैं। अगर आपने एक दिन पुराना पक्षी लेके आया जिससे हमें अंडा प्राप्त करना है, तो शुरुआत उसकी होगी चिक फीड से, और इस चिक फीड को कम से कम 2-3 सप्ताह आपको चलाना पड़ेगा,
1: चूजों को खिलाना होगा
2: जी। तो इसमें जो है जो प्रोटीन है और जो एनर्जी है वो एक सही तरीके से होती है जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ये जो है जब ब्रॉयलर में जाएंगे तो उनमें प्रोटीन और एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम कम रखते हैं क्योंकि जो अंडा देने वाला पक्षी है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी धीमे होती है। तो चिक फीड इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें जो है हम खल का प्रयोग जो है मात्र जो है 22-25% करते हैं, और जो अनाज का प्रयोग है हम 40-45% यूज़ करते हैं। इससे जो हमारा बैलेंस बनता है, इस तरह से चिक फीड का निर्माण होता है। फिर इसमें जो है मिथियोनिन, लाइसिन और खनिज मिश्रण और अन्य चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मछली का चूर्ण, हड्डी का चूरा, मांस का चूरा, ये सब चीज़ें बनाते हैं।
1: लेकिन अगर घर पर बनाना चाहते हैं तो क्या संभव है?
2: बिल्कुल संभव है। इसे हमारा जो रॉ मटेरियल है, एक समस्या ये आएगी कि उसको परचेज करना, क्योंकि पोल्ट्री फीड में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल आपका होता है मक्का और सोयाबीन की खली। अगर दो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं तो बाकी चीज़ें कम मात्रा में होती हैं, आप इसे आसानी से मंगा के आप बना सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं या कड़कनाथ कर रहे हैं तो उनकी आहार व्यवस्था कुछ अलग है क्या?
2: बिल्कुल। अब जैसे हम चीक फीड होती है, चीक फीड के बाद जो है हम ग्रोवर फीड चलाते हैं, फिर जब मुर्गी 18 सप्ताह की हो जाती है तो लेयर फीड चलाते हैं। ये 3 स्टेज होती है हमारे लेयर में। और अगर हम देसी में जाते हैं, जैसे हमने कहा कि कड़कनाथ है या असील है या हमारे CARI जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली की निकाली गई बहुत सारी प्रजातियां हैं, कारी प्रिया है, कारी जो है वन राजा है, कारी ब्रो धन राजा है, कारी देवेंद्रा है, कारी श्यामा है जो कड़कनाथ से क्रॉस करके जो है निकाली गई हैं, तो बहुत सारी प्रजातियां ये ड्यूल हैं यानी दुकाजी हैं कि ये पक्षी जो है अपने आप में सक्षम है और कीड़े मकोड़े और जो है आपके बासी खाने या सब्जी के छिलके खा के अपना 50% से ज्यादा अपने जो है पोषण कर सकते हैं।
1: तो जहाँ घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो क्या फीड भी दें और चराई पर भी रखें?
2: हाँ, शुरुआत में जो है हम यही कहते हैं कि शुरुआत में 15 दिन का जब आपका चूंजा होता है थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है, और हम उसमें जो है स्टार्टर फीड चला देते हैं या चिक फीड चला दीजिए या

0: स्टार्टर फीड जो आपका ब्रॉलर होता है वो वाला आप थोड़ा डाइल्यूट करके उसमें थोड़ा मक्का बाजरा मिला के आप चला सकते हैं, क्योंकि देसी के लिए कोई रेडीमेड फीड आता नहीं है। या फिर जो है स्टार्टर में 15% के आसपास जो है मक्का बाजरा मिला ले तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, 15 दिन तक दें। उसके बाद जो है 25 से 30% तक भी अगर हम दाना के थ्रू देते हैं, यानी उसको 15 से 20 से लेकर 30 ग्राम अगर कंसनट्रेट मिक्सचर यानी जो रातिब देते हैं मुर्गी आहार देते हैं तो वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी और साथ में जो है जब वो एक लेइंग स्टेज में पहुंचेगी मुर्गियां तो अंडा उत्पादन भी अच्छा करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 7376970259, 7376970259, 7376970259।
1: डॉक्टर आनंद सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कृषि चर्चा में आज मुर्गियों की आहार व्यवस्था और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी डॉक्टर आनंद सिंह ने और आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसी के साथ श्रोताओं, आज आप जानते हैं नमस्कार लखनऊ में समय है, क्योंकि दिन शुक्रवार है, समय है गांधी चर्चा का।
3: गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में सुनिए बापू के विचार।
4: गांधी जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते है, यानी जो मुक्ति के योग्य बनाए वो विद्या, बाकी सब अविद्या। अतः जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बताए और गुलामी से छूटने और आजाद रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वो शिक्षा नहीं है या अधूरी शिक्षा ही है। गांधी जी का मानना था कि 80 से 85% लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुट्ठी भर मनुष्यों की आवश्यकताओं अथवा राज्य के थोड़े से विभागों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो नहीं सकती, बल्कि गलत शिक्षा होने से ये अविद्या ही है। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच एक गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों को जनता का अगुआ, पथ प्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जाने वाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझने वाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अयोग्य बना दिया है। इस शिक्षा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए भवनों, साधनों, पुस्तकों, मृग तृष्णा की भांति दूर से लुभावने लगने वाले लाभों की आशाओं और चटक मटक वगैरह का आडंबर रचाकर जनता को कर्ज में डुबो दिया है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा ने लोगों के अंदर वहम पैदा कर दिए हैं, जैसे अक्षर ज्ञान और शिक्षा एक ही है और उसके बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस शिक्षा ने जनता को धर्म से विमुख किया है और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों को मिटा डालने का ही काम किया है। उनका मानना था कि चित्त शुद्धि के महत्व के अंग ईश्वर, गुरु, बड़े बूढ़ों में भक्ति, नीतिमय जीवन का आग्रह और संयम तथा तप में श्रद्धा, इन सभी विषयों में आधुनिक शिक्षा ने पढ़े लिखों को संशक और नास्तिक बना देने की दिशा में यत्न किया है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्तमान शिक्षा शैली ने भोग और संपत्ति में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर दी है कि उनके कम होने के डर से ही शिक्षित व्यक्ति डर जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म के आचरण में असमर्थता प्रकट करता है। गांधी जी का ये स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अतः उद्योग धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होते हुए भी महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य गिनना सीख सकता है, अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है, उसे कंठस्थ कर सकता है और शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्वर का ज्ञान भी वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। गांधी

0: जी का मानना था कि बालकों की शिक्षा का श्री गणेश अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि सफाई की शिक्षा से होना चाहिए। बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही जाए, लेकिन उसे अपने हाथ, पांव, नाक, नाखून इत्यादि की साफ सफाई को रखना भी सिखाया जाए। इसके बाद कहानियों और भजनों द्वारा धर्म का ज्ञान उसे दिया जाए। प्रत्यक्ष अवलोकन से पदार्थ विज्ञान, वनस्पतियों और भूमि तथा आकाश का ज्ञान दिया जाए तथा प्रत्यक्ष पदार्थों से गणित में प्रवेश कराया जाए। इस तरह लिखना पढ़ना आने के पहले उसे तीसरी चौथी पोथी तक का ज्ञान करा दिया जाए। अनेक भजन, श्लोक, कविताएं उसे कंठाग्र करा के उच्चारण शुद्धि करा ली जाए और नाना प्रकार के साहित्य बच्चों को कंठस्थ करा जाए। गांधी जी का यही मानना था कि ज्ञान का मूल स्रोत पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन, अनुभव, विचार शक्ति में है और इसके भूल जाने से हम पुस्तक के ज्ञानी को बहुत महत्व देते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब भारती आज के भक्ति संगीत की, आज की आराधना की।

भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से प्रभु के प्रति समर्पण। असली भक्ति शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और विचारों की शुद्धता से झलकती है।

जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो वही जीवन का सच्चा आधार बन जाता है। और जब हमारा हर छोटा प्रयास निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, वही असली भक्ति बन जाती है।

जो कुछ सत्य है वही चिर स्थायी है। भगवान के प्रति अपनी आस्था कभी ना खोएं, इसी से आपको जीवन में प्रकाश दिखाई देगा।

ईश्वर भक्त सदा नम्र रहते हैं और किसी से अभिमान नहीं करते। भक्ति एक ऐसा दीपक है जो भीतर के सभी अंधकारों को मिटा देती है और मन को शांत और निर्मल बना देती है।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें। इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं पर संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 220। आज इसके अंतर्गत आपको सुनाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें चित्रकूट की सभा में भरत के अनुनय विनय से श्री राम की प्रसन्नता और देवताओं की योजनाओं के कारण भरत का विचार बदलने का प्रसंग आता है।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं सुबह के 6:55 होने वाले हैं और ये समय है संस्कृत समाचारों का। तो आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालां आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। 75 दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति।

0: आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बात सेहत की।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसे अक्सर हम हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके भीतर सेहत से जुड़ी इतनी खूबियां छिपी हैं कि अगर हम जान लें तो इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाना शुरू कर देंगे। हम बात कर रहे हैं करौंदे की। ये छोटा सा हरे से गुलाबी और फिर लाल रंग में पकने वाला खट्टा फल सिर्फ अचार और चटनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक औषधीय रत्न है जो कई बीमारियों से लड़ने की ताकत भी रखता है। करौंदा मुख्य रूप से भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। गर्मी और बरसात के बीच इसका मौसम आता है और ये झाड़ियों में उगता है। ये फल अपने तीखे खट्टेपन और हल्की कसैली मिठास के लिए जाना जाता है। अक्सर इसे कच्चा तोड़ा जाता है और अचार, मुरब्बा या चटनी के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका औषधीय गुण है जो न केवल पाचन से लेकर रक्त की शुद्धता तक असर डालता है बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत भी बनाता है। करौंदा आयरन और विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। जिन लोगों को अक्सर खून की कमी रहती है, विशेष रूप से महिलाओं और किशोरियों में, उनके लिए करौंदा एक स्वादिष्ट और असरदार उपाय बन सकता है। ये शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को संतुलित करता है, और विटामिन सी की उपस्थिति से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाता है। यही कारण है कि पुराने जमाने में जब विटामिन की गोलियां नहीं हुआ करती थीं, तब लोग मौसमी करौंदे खाकर शरीर को मजबूत बनाते थे। ये फल पाचन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। करौंदे में प्राकृतिक एंजाइम्स होते हैं जो अपच, गैस, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत दिलाते हैं। जब किसी को भूख न लग रही हो या फिर जी मिचला रहा हो, तब करौंदे की चटनी या नमक नींबू मिलाकर खाया गया करौंदा स्वाद को जगाने और पाचन को सुधारने का काम करता है। बच्चों को जब बार बार पेट में दर्द की शिकायत होती है, तब दादी नानी अक्सर करौंदे का टुकड़ा नमक के साथ देती थीं। ये नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है। करौंदा एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर होता है। ये शरीर में जमे विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है और समय से पहले झुर्रियां आने की संभावना बेहद कम हो जाती हैं। खास तौर पर गर्मी के मौसम में जब लू लगने, फोड़े फुंसियां या शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या होती है, तब करौंदे का सेवन शरीर को ठंडक प्रदान करता है। एक और रोचक पहलू ये है कि करौंदा हृदय के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक होती है। आज जब युवाओं में भी उच्च रक्तचाप की समस्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में करौंदे जैसे देसी फल एक प्राकृतिक विकल्प बन सकते हैं जो दवाओं के बिना शरीर को संतुलन में रखें। करौंदे का सेवन करने के कई आसान और स्वादिष्ट तरीके हैं। इसे नमक और मिर्च के साथ सादा खाया जा सकता है या फिर इसका अचार बनाया जा सकता है जो साल भर चलता है। करौंदे की चटनी दाल, चावल या पराठों के साथ स्वाद को बढ़ाने का काम करती है। वहीं इसका मुरब्बा बच्चों के लिए टिफिन में एक सेहतमंद मिठास की तरह है। कुछ जगहों पर करौंदे का शरबत भी बनाया जाता है जो शरीर को ठंडक देने वाला होता है और गर्मियों में लू से बचाव करता है। करौंदे की खासियत ये भी है कि ये बहुत ही टिकाऊ फल है, न जल्दी खराब होता है, न ही इसकी देखभाल में बहुत ज्यादा खर्च आता है। यही कारण है कि इसे आंगन या बगीचों में लगाना बेहद आसान है और इसकी झाड़ी भी एक प्राकृतिक बाड़ का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी हमारे गाँवों में अब भी करौंदे की झाड़ियों के आसपास बच्चों की टोली देखने को मिल जाती है जो पके करौंदों को तोड़कर खाते हैं और चटखारे लेते हैं। ये केवल स्वाद ही नहीं, एक परंपरा है और एक परंपरा जो सेहत से जुड़ी हुई है। आज के इस तेज रफ्तार जीवन में जब हम महंगे फल और विदेशी सुपरफूड्स की ओर भागते हैं, तब

करौंदे जैसे फल हमें ये याद दिलाते हैं कि असली पोषण तो हमारे खेतों, बगीचों और झाड़ियों में ही छिपा है। ये फल न केवल किफायती है बल्कि स्थानीय है, मौसमी है और पूरी तरह से प्राकृतिक है। यही कारण है कि इसे हमें अपने आहार में जगह देनी चाहिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और खुद के लिए भी। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और देसी फल, सब्जी या औषधीय पौधे के साथ, जो आपकी थाली को स्वाद भी देगा और शरीर को ताकत भी। तब तक करौंदे की खटास को अपनाइए और जीवन में मिठास लाइए। सेहत से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार। लखनऊ में अब वक्त हो गया है कि आपको आज की अपनी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में केपीएल वर्मा की वार्ता सुनिएगा भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पी पीवी नरसिम्हा राव। शाम 7:30 पर इंग्लिश प्रोग्राम के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी जेएनपीजी कॉलेज लखनऊ विल टेल अबाउट द थारू कल्चर इन उत्तर प्रदेश। शी विल बी इन टॉक्स विद डॉक्टर शिबा राकेश। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। इसमें हमारे मेहमान के तहत मेहमान होंगी शायरा शबीना अदीब, प्रेजेंटर शमसुल आरफीन और पेशकश आसिफ इकबाल की। अब से थोड़ी देर में यानी 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आज का विषय है आओ लगाएं एक वृक्ष ताकि धरा मुस्कुराए।

दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता। इसमें डॉक्टर प्रतिभा सिंह सिक्की की भेंटवार्ता सुनिएगा। बढ़ता प्लास्टिक पॉल्यूशन, मिलकर खोजे सोल्यूशन, आपसे भेंट करेंगी ममता उपाध्याय। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर अमरीश सिंह यादव सिक्की की भेंटवार्ता सुनिएगा। खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक, आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत संतोष कुमार मिश्र की वार्ता सुनेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से गांव में बदलाव। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी प्रसारित की जाएगी। आलेख एवं वाचन अभिषेक कुमार सिंह का और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा शहनाई वादन, कलाकार होंगे श्यामलाल, और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही आज सुनिएगा पंडित किशन महाराज का तबला वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात

दस मिनट पर सुनिएगा जाफर हुसैन खां का नात और कव्वाली और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। आज सुनिएगा डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाए कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब से थोड़ी देर में सुनिए आज की विविधता।

आओ लगाएं एक वृक्ष ताकि धरा मुस्कुराए। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर इस धरती पर पेड़ ही ना रहे तो क्या होगा? ना ठंडी हवा होगी, ना पक्षियों का मधुर संगीत, ना बारिश की फुहारे, ना बच्चों के खेलने की छाव। चारों ओर सिर्फ तपती धूप, धूल और सन्नाटा। क्या हम अपने आने वाले कल को ऐसा देखना चाहते हैं? दोस्तों, पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, वे जीवन है। वे हमारी सांस है, हमारी उम्मीद है और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। एक वृक्ष अपने जीवन काल में हजारों लोगों को ऑक्सीजन देता है, मिट्टी को बचाता है, जल को संजोता है और असंख्य जीवों का घर बनता है। लेकिन अफसोस, विकास की दौड़ में हमने जंगलों को पीछे छोड़ दिया। आज बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश, सूखती नदियां और प्रदूषण हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। इसी चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में हर वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी ताकि हर नागरिक वृक्षारोपण को अपना कर्तव्य समझे। इस वर्ष भी देश भर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, वन विभागों, सामाजिक संस्थाओं और लाखों नागरिकों द्वारा पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। कई राज्यों में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोगों से केवल पौधे लगाने ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया जा रहा है। एक बात याद रखिए, पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसे बड़ा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और यही एक सच्ची सेवा भी है। जिस पौधे को आप आज अपने हाथों से लगाएंगे वही कल किसी राहगीर को छाया देगा, किसी बच्चे को स्वच्छ हवा देगा और किसी प्यारे पक्षी का आशियाना बनेगा। हम अक्सर अपने बच्चों के लिए धन, जमीन और मकान छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यदि उनके हिस्से में स्वच्छ हवा ही नहीं बचेगी तो वे इन सब का क्या करेंगे? इसीलिए इस वन महोत्सव पर केवल तस्वीरें ना खिंचवाएं बल्कि एक ऐसा पौधा लगाएं जो आने वाले वर्षों तक जीवित रहे। अपने जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, अपने माता पिता की स्मृति में या किसी शुभ अवसर पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। यदि जगह कम है तो गमलों में, छत पर या अपने मोहल्ले के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्थानीय प्रशासन की अनुमति से पौधे लगाएं।

आज यदि देश का हर नागरिक केवल एक वृक्ष भी लगा दे और उसकी देखभाल करे तो आने वाले वर्षों में भारत फिर से हरियाली की नई मिसाल बन सकता है।

आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें, मैं केवल वृक्ष नहीं लगाऊंगा बल्कि उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी पानी बचेगा, पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा, और जीवन बचेगा तभी हमारी धरा मुस्कुराएगी।

तो आओ लगाएं एक वृक्ष ताकि धरा मुस्कुराए, क्योंकि जब धरा मुस्कुराएगी, ये धरती मुस्कुराएगी, तभी हमारा भविष्य भी मुस्कुराएगा।

तो दोस्तों आज की इस विविधा में बस इतना ही, फिर कभी विविधा के एक और अंक में आपसे पुनः भेंट होगी एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए SIT दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VVG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर SIT की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। ADA के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ADA की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
4: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार

0: तो भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: विकसित भारत बनाए। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाए। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी राष्ट्रीय के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत बड़ी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित राज्यसभा बने।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा ग्रामीण भारत में श्रम को

मान और गांव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत, मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। तो आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं श्याम लाल। सबसे पहले सुनिए आपका शहनाई पे बजाया राग रामकली। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं ठाकुर प्रसाद मिश्र।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं श्याम लाल। अभी आपने सुना आपका शहनाई पे बजाया राग रामकली, और अब आइए आपको सुनवाते हैं आप ही का शहनाई पर बजाया राग जौनपुरी। तबले पर आपका साथ दे रहे हैं ठाकुर प्रसाद मिश्र।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे शहनाई वादन, कलाकार थे श्यामलाल। आज आपने सुना शहनाई पर आपका बजाया राग रामकली और राग जौनपुरी। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे ठाकुर प्रसाद मिश्र। इसी के साथ अब आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का नमस्कार लखनऊ भी यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से

0: संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: हमारी जी और टीबी की हाल।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
3: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलो

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी।

0: और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंस।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और

0: रिपोर्ट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्दमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4 से 9 जुलाई तक साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पाबित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आखिरी रसूम में उनकी मौजूदगी तहजीबी राबतों की अहमियत को उजागर करती है, जो अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के माबैन सियासी और इकतसादी राबतों को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज कोलकाता में मगरबी बंगाल असेंबली के नए मुंतखब अरकान के लिए दो रोजा तरबती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद नए मुंतखब अरकान को कमेटी निजाम, माली निगरानी, पार्लिमानी मुराद और कानून साजी में उभरते हुए डिजिटल पहलुओं समेत पार्लिमानी और कानून साजी के कामकाज के मुख्तलिफ उमूर से रूशनास कराना है। पंचायती राज की वजारत आज नई दिल्ली में पंचायती राज की रियासती वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी ताकि 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस वर्कशॉप की सदारत पंचायती राज महकमे के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे, जबकि इसमें रियासती वजीर ममलकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है, जो 57 दिन तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा के इस सफर में शामिल होंगे। अकीदतमंद तकरीबन 3,888 मीटर की बुलंदी पर वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फितरी तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि आज सुबह खवातीन और बच्चों समेत 4,800 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
2: बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के बीच आज सुबह हजारों की तादाद में यात्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गार की तरफ रवाना हो गए। 57 रोजा इस यात्रा के दौरान लाखों यात्री नुनवन पहलगाम और बालतल के रास्तों से सफर करके बाबा बर्फानी के यहाँ अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर हुक्काम ने तिब्बी कैंपों, आरामगाहों, लंगर खानों, पीने के पानी की सहूलियात जैसे जामिया इंतजाम किए हैं। दरियासना यात्रियों का दूसरा काफिला आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज से पहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसान की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। थाईलैंड में शुमाल मशरकी मुगदहन सूबे में 11 साल के एक लड़के ने एक पिकअप ट्रक यात्रा के लिए जाने वाले राहिबों के एक ग्रुप से टकरा दिया। इस वाकये में 9 राहिबों की मौत हो गई, 13 दीगर जख्मी।

मीडियम एफ 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम में श्रोताओं आप अपने मेल्स भेजिए, उसमें अपनी फरमाइश लिख भेजिए कि आपको कौन सा फिल्मी नगमा सुनना है और हम आपको आपके मनपसंद गीत सुनवाएंगे। आप जल्दी से हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो बस फटाफट लिख डालिए, भेज दीजिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक पाती और हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पत्रों का, आपकी फरमाइश का। तो लीजिए शुरुआत कर रहे हैं। ये फरमाइश हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से प्रणिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, लाडला टुक टुक गवाड़कर, आकाश हाइट्स बहादुरा।

नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर परी, आप सबने कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है दतरंगी भाटापारा से सोनम बेलदार, फातिमा बेलदार, आसमा बेलदार, सरफुद्दीन फकीर, वलीउल्ला फकीर और डब्लू वली फकीर की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा और विमला अनेजा, आपकी फरमाइश हमारे पास आई है। आपने आकाशवाणी लखनऊ के लिए बेशुमार मोहब्बतें भेजी हैं, आपने उद्गार व्यक्त किए हैं और इसके लिए हम आपके बहुत हृदय से आभारी हैं। आप सभी हमारे श्रोता बहुत प्रेम भेजते हैं, बहुत सराहते हैं हमारे कार्यक्रमों को, सुनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है हिंदुस्तानी रेडियो मित्र बन्नो बुज़ुर्ग पैलेस टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की ये फरमाइश हमारे पास आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है, ये फरमाइश हमें भेजी है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, आप सब ने अपनी फरमाइश भेजी है। और इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है, बहुत ढेर सारे मेल हमारे पास आ रहे हैं लगातार। सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण गुजराती की ये फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म चालाक का ये गीत।

और श्रोताओं, आपके मेल्स लगातार हमें मिल रहे हैं। अगली फरमाइश हमारे पास भेजी है बस स्टैंड लखनऊ से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर ने। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमें मेल भेजा है जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े की फरमाइश आई है। जिला लाइब्रेरी बलेरी गांव पहाड़ीपुर से राम राज, राजू भानु, राम शंकर पत्रकार, बहाई वाले, रक्षा मौर्या, राम सागर शाहू, रसूलपुर वाले मिर्जा, आप सब ने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। और हमारे पास फरमाइश आई है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। और हमारे पास फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश आई है। अगला मेल हमारे पास आया है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी की फरमाइश हमारे पास आई है। एक पत्र और जल्दी से, एक मेल और जल्दी से पढ़ देते हैं। ये मेल हमें भेजा है अशोक कुमार कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मशाल का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा के साथ। और भारी संख्या में आपके लगातार हमें मेल्स प्राप्त हो रहे हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की आप सबने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है मैनपाट से सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा और आसमा थापा की। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश भेजी है ग्राम जसवाड़ी, ज़िला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से आप सब ने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है अगली ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान की ये फरमाइश आई है।

और हमारे पास मेल किया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहालकर, निर्मला नहालकर, विशाल नहालकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुहेरकर ने अपना फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। और हमारे पास फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर की। और अगला मेल आया है हमारे पास ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामण शिंदे की। और एक मेल और जल्दी से पढ़ देते हैं, यह बलिया उत्तर प्रदेश से फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, अस्मा वली बेलदार और डब्लू वली बेलदार की। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत।

और आइए अब आपको अगली फरमाइश के बारे में बताते हैं। फरमाइश हमें की है, ये जो मेल आया है हमारे पास मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर कुमकुम सुरलकर की ये फरमाइश हमारे पास आई है, इनका मेल हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री की जामा मस्जिद रोड गोगावा से, हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी की फरमाइश हमारे पास आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह की ये फरमाइश हमारे पास आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है अगले जो हमारे श्रोता हैं वो है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाज़ार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी की ये फरमाइश हमारे पास आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और मैंडी शर्मा की फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा की बीड शहर महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम ममना ज़िला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की ये फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश आई है नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे की, खंडवा से श्यामा बाई रायकवार, आप सब ने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। और एक मेल और जल्दी से पढ़ दे, ये हमें भेजा है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह की। आप सब सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सावन भादो का ये गीत।

और श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की गाय फिल्म सावन भादो के इस गीत के साथ ही अब हमारा आज का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: मीडियम एफ 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 613 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के

0: तहसील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प हुआ है और सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने का आह्वान किया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि पहले दंगे और पलायन जैसी घटनाएं आम थी, जबकि अब प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का CCTV वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच समिति गठित की। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1.31 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। SPCT व्योम बिंदल ने इसे जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। वहीं फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला भी सामने आया। विभागीय जांच में दस्तावेज फर्जी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सड़क सुरक्षा, साइबर सेवाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में पोलियो बूथ पर एक छोटे बच्चे को ड्रॉप्स पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,09,306 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार शक्ति दिखाई है। कार्य में लापरवाही मिलने पर नकुर थाने की अम्बेटा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा साइबर अपराध, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नियमित चेकिंग अभियान को तेज किया गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने मंडल स्तरीय बैठकों में विकास कार्यों, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की।
2: अभी मंडली समीक्षा में हमने विकास कार्यों की जो कुछ कार्य हैं पर्यटन विभाग के वो इनकम्प्लीट हैं और UP CNDS इसमें कार्यदायी संस्था है, तो उनको हमने पुलअप किया कि इसको समय पे पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा अभी आने वाला जो मानसून सीजन है इसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को।
1: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जल भराव, बाढ़ जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बाइट मंडलायुक्त रूपेश कुमार। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सर्वाधिक कर देने वाले 10 व्यापारियों और उद्यमियों को DM अरविंद चौहान व नगर विधायक राजीव गुम्बर ने शील्ड, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। में लगभग पूरे महीना भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। कई बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि इन दिनों मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, गरज चमक और मानसून की आगमन की संभावना जताई। सामाजिक और खेल गतिविधियों में भी जिला सक्रिय रहा। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, Under-12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल, जिला साइकिलिंग संघ की कार्यकारिणी का विस्तार तथा CIS द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिगलानी की अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आयोजित सौहार्द कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे। हरविंदर सिंह लार्ड की अध्यक्षता में UP सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गुरप्रीत सिंह बग्गा को नवाब कपूर सिंह सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सिख समाज की एकजुटता, धार्मिक मर्यादा और युवाओं के लिए मुफ्त UPSC कोचिंग की घोषणा की गई। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ करते हुए शातिर आरोपी गणेशपुर निवासी रोहित और बाबा को गिरफ्तार किया। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक नदी के डूब क्षेत्र में कमरे में छापा मारकर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए।
3: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय श्रीवास्तव का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर के धनघटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत कबीर नगर को 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बाबा तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, मघर के सुंदरीकरण और बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। संत कबीर नगर के कले

0: कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जन प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने पर विशेष जोर दिया। जन प्रतिनिधियों ने मेहंदावल धनघटा मार्ग को 4 लेन बनाने, जर्जर बिजली तारों को बदलने, नगरीय आवासों के निष्पक्ष आवंटन तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग उठाई। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कार्यों में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी निर्देशों का 100% पालन कराने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर में कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और जिलाधिकारी तथा जन प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक विवेक मिश्रा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। संत कबीर नगर जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरकों, अस्पताल, भोजनालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कारागार में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न हो, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कारागार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संत कबीर नगर की महुली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अशोक चौहान, शिव कुमार उर्फ नकुल चौहान और राजन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और पुलिस टीम पर हमला किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। संत कबीर नगर के नाथनगर विकास क्षेत्र में पुत्सर में बिना मान्यता के संचालित स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई IGRS पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में जारी नोटिस के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का प्रवेश निकटवर्ती सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया कि जिले में 3,11,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 858 बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश का अंत।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाए सामीन। हमारे मेहमान की एक नए एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। सामीन, हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे मेहमान में शिरकत करने वाली मशहूर शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा हैं।

0: नई नई है,
1: खामोश
0: लब है। और इस गजल का मकता जो शायद आपने मालूम नहीं सुना
1: नहीं,
0: है कि नहीं सुना,
1: लेकिन मैं कहने ही वाला था कि आप पेश करना चाहती हूँ
0: जी बिल्कुल, कि अभी

0: अभी हुकूमत
1: क्या बात है, क्या खूबसूरत लगता है भाई।
0: मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है।
1: अच्छा एक चीज और, मैंने ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक मुशायरा दुबई का, शायद आपका मुशायरा था, आपने इसके बाद वाला शेर पढ़ा था कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये
2: सारे लोग आगे की कुर्सी खाली
1: करके भैया हम नहीं है ऐसा, उसके बारे में।
2: अब मैं एक वाकया और सुनाती हूँ। जब ये वीडियो क्लिप लोगों तक पहुंची तो एक उदयपुर का एक सिंघानिया परिवार है जिनको शायरी से कोई लेना देना नहीं, कोई शौक नहीं, और जब इस गजल को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने बेटे की शादी में बाकायदा एक फंक्शन रखा और ये कहा कि भाई हमें शबीना अदीब को बुलाना है। तो एक भाटी साहब है वहाँ पर, गजल सिंगर हैं, जाहिर सी बात है मेरा नंबर तलाश करना है वो, तो किसी तरह से उन्होंने मेरा नंबर तलाश किया। फिर उन्होंने मुझे वाकया सुनाया, कहने लगे एक भाटी साहब हैं, वो अपने बेटे की शादी में एक फंक्शन करना चाहते हैं जिसमें आपका सोलो एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं ऐसा करो, इसमें एक दो शोरा को और मधु कर लो तो एक अच्छी सी नशिस्त हो जाएगी, महफिल हो जाएगी शायरी की। जब मैंने ये शेर पढ़ा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सब में, अब जाहिर सी बात है उन्होंने एक मजाक भी किया थोड़ा अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई वो होता है ना शादी के माहौल में एक जो एक मजाक का जो एक, एक मतलब उस तरह का माहौल होता है, लोग इंजॉय करते हैं खुशी के माहौल में। तो वो जैसे ही मैंने वो शेर पढ़ा तो वो उन्होंने जैसे दुबई का जो क्लिप वायरल हुआ था रेहान सिद्दीकी साहब वाला, तो वो अंदाजे बयां और उनका एक वो वीडियो जो इतना वायरल हुआ कि वो लोग उसी तरह से नकल करने लगे बाकायदा। तो वो जितने आके किस सफ में लोग बैठे हुए थे वो सारे खड़े होके जाकर पीछे बैठ गए और फिर बोले अब इसको पढ़ते रहिए, आगे के सोफे में कोई नजर नहीं आया। तो जब से ये गजल हमारी मकबूल हुई है तो मैंने ऐसे मनाजिर बहुत सी महफिलों में देखे।
1: ये जो आपने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, इसका पस मंजर अभी आप बताना चाह रहे थे तो पस मंजर जरूर बताएं आप।
2: हाँ देखिए अक्सर मतलब ऐसा देखा जाता है, हम अपने ही खानदान में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि अपने जब कोई चीज लाते हैं तो वो चीजों की मतलब बाकायदा उसके रेट भी बताने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसकी ये हैसियत नहीं है कि वो सोफा खरीद पाए, हालांकि ठीक है सब अपने मेहनत से वहां तक पहुंचते हैं
1: लिहाज
2: से, लेकिन मुझे लगता है कि शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: शबीना अदीब इस नाम से तो फेमस हो गई, लेकिन ये हकीकी नाम है या आपका तखल्लुस है, इसके बारे में जरूर बताएं।
2: हमारा तखल्लुस भी यही है और हकीकी नाम भी यही है। बचपन का नाम तो बस ऐसा ही था जो घर में साल दो साल तक लिया गया, उसके बाद नाम मेरा एक्चुअल में नाम यही है शबीना, और ये नाम भी मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब ने रखा।
1: आपकी शायरी की दुनिया फैन है, लेकिन आप खुद किस शायर को पसंद करती हैं, किसका कलाम आपको बहुत ज्यादा अच्छा
2: लगता है? हमारे तमाम असातिज़ा, तमाम मोहतरम शुरा जैसे फिराक साहब भी हैं, बशीर बद साहब भी हैं, वसीम साहब भी हैं, और मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि मैंने मजरू साहब के साथ भी मुशायरे पढ़े हैं, मैंने कैब भोपाली साहब के साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं, मैंने खुमार साहब और अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आजमी साहब ने तो मुझे खुद एक मुशायरे में मदऊ किया जब उन्होंने मुझे उन्नाव में सुना, और मेरे

ताज से कहा कि भाई इस बच्ची को फेरिस्त मुकम्मल हो गई है, अदीब साहब तो मैं आपको तो नहीं मदऊ कर पाऊंगा, लेकिन आप इस बच्ची को भेज दीजिएगा उस मुशायरे में। आजमगढ़ का मेरी जिंदगी का पहला वो बड़ा मुशायरा था आजमगढ़ का, और उस वक्त मैं शायरा वायरा क्या थी, बस ये है कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंची थी, तो लोग एक इंतजार में थे कि एक बच्ची जिसको कैफी साहब ने खुद कहा है, तो एक इंतजार था लोगों को कि भाई एक मकनपुर से एक शायरा आई है, अब शायरा हो तो दिखाई दे, अब एक 9 साल की बच्ची वो दुबकी हुई बैठी हुई है डरी सी सहमी सी, तो वो नजर कैसे आएगी। बहरहाल जब हमने वहाँ पढ़ना शुरू किया तो मेरी जिंदगी का वो एक मुशायरा ऐसा था कि उसने मुझे

0: अब एक 9 साल की बच्ची वो दुबकी हुई बैठी हुई है डरी सी सहमी सी, तो वो नजर कैसे आएगी। बहरहाल जब हमने वहाँ पढ़ना शुरू किया तो मेरी जिंदगी का वो एक मुशायरा ऐसा था कि उसने मुझे दुनिया के वो कोने कोने तक पहुँचा दिया। मेरी शादी जौहर कानपुरी साहब से हुई, तो मुझे जो एक सपोर्ट मिला, मुझे लगता है कि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा मैंने अपने शौहर को खुश देखा है, और शायद ये उनकी खुशी मुझे यहाँ तक लेकर आई। मैंने जो महसूस किया तो वो मेरी कामयाबी पर इतना खुश होते थे, और उन्होंने आज जो मुझे मकबूलियत हासिल है, जो मुझे शोहरत हासिल है, और जो मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो भी मैंने सूबे, जो भी मैंने शहर, जो भी मैंने मुल्क देखे हैं, वो शायद मैंने जौहर साहब के सपोर्ट की वजह से देखे।
1: अच्छा, कहा जाता है कि एक ही प्रोफेशन के लोग जब एक छत के नीचे रहते हैं तो अक्सर रिएक्शन रहता है। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप दिखाते कि देखिए आज मैंने ये शेयर मौजू क्या कैसा है, तो जौहर साहब क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसमें कुछ और कमी है, ऐसा कौन?
0: हाँ नहीं, ऐसा होता है कि जब हम शेर कहते हैं तो हम सबसे पहले, जाहिर सी बात है आज तो मेरे उस्ताद भी वही हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को सुनाते हैं, तो वो डांटते भी हैं, फिर हमसे कहते हैं यहाँ पर ये तुमने गलती की है, इसको सही करो। तो शायद ये उसी की देन है।
1: कभी आपको भी ऐसा लगा कि नहीं नहीं आपका भी शेर ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा इसमें?
0: हाँ, तो मैं उनको भी टोक देती हूँ, उनको भी कहती हूँ कि नहीं इसमें तो आप, मैं तो ये कहती हूँ कि आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी शायरी करते हैं, आप इससे अच्छा भी कह सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने सही मशवरा दिया, तो वो मेरे मशवरे को भी,
1: ये भी अच्छी बात है, मशवरे में खैर है। मोहतरमा, शायरी के अलावा आपके शौक और क्या क्या हैं?
0: सिंगिंग का बहुत शौक है, इतना शौक है कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब मैंने 1986 में अपने ही शहर कानपुर का एक हिंदी का कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, उसमें रामानंद सागर जी मुझे मिले, तो उन्होंने मेरे अब्बू से ये कहा कि भाई आप तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हैं, और ये शायरी वायरी छोड़िए, आप आ जाइए बॉम्बे, मैं आपका पूरा खर्चा, आपको रहने का, आपकी फैमिली को पूरा खर्चा दूंगा, और आप एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन सकती हैं, बहुत बड़ी फनकारा हैं, आप खुद नहीं समझ पा रही हैं अपने आप को। हमने अनसुना सा घर वालों ने कर दिया, क्योंकि घर वालों को इतना अंदाजा ही नहीं था कि भाई इसको इतना शौक है कि ये शायरी की दुनिया में भी आगे निकल जाएगी। तो उसके लिए मैंने ये वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मुझे शौक था। और सिंगिंग का मुझे अभी तक बहुत शौक है, मुझे बहुत गाने के ऑफर हुए, अभी कुछ साल पहले भी आज जब मेरा बॉम्बे एक मुशायरे में जाना हुआ तो एक कंपनी के एक साहब थे शफी नियाजी साहब, जौहर साहब ने मेरी आवाज सुनवाई, सुन लीजिए एक शायरा है यहाँ आई है बॉम्बे के मुशायरे में, उन्होंने मुझे जैसे ही सुना तो उन्होंने बुला लिया कि आप स्टूडियो लेकर आ जाइए। मैं स्टूडियो में गई तो मैंने फौरन जैसे एक भजन सुनाया था, एक राधा एक मेरा, सोनू निगम की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो सोनू निगम साहब अपने स्टूडियो से बाहर निकल के आए, कहने लगे अरे ये आवाज तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे आप ये लीजिए मेरा कार्ड, और आप तो बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं, आप क्यों नहीं इसमें ट्राई करती हैं, और शायरी भी करती रहिएगा और सिंगिंग भी करती रहिए। लेकिन हमें उसके लिए, क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली। लेकिन बाद में थोड़ा सा मैंने कोशिश की भी और मुझे कुछ गाने दिए गए, तो शफी नियाजी साहब उनको एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था, वो जब लंदन गए और उसके बाद आए तो उनकी डेथ हो गई।
1: जी जी,
0: तो जो गाने मुझे मिले थे उन गानों की भी डेथ हो गई मेरे साथ, और फिर वो सिंगिंग की भी डेथ हो गई, ये समझ लीजिए। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, तो बहरहाल सिंगिंग का बहुत शौक।
1: एक पुरानी कहावत है कि जब दिल टूटता है तब शायरी निकलती है, लेकिन आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं?
0: ये तो सच है कि हाँ दिल टूटता है तो शायरी निकलती है, अच्छे शेर होते हैं, लेकिन मेरा दिल वैसे अभी टूटा नहीं है, बगैर टूटे हुए मेरी शायरी हो गई, क्योंकि दुनिया के दिल जब टूटे, कुछ अपने इर्द गिर्द लोगों के दिल टूटे, जो उसको मैंने जब महसूस किया तो मैंने उसको पिरोया।
1: वो आप
0: जरूरी नहीं कि वो खुद की आपकी अपनी बात हो, क्योंकि शायर या शायरा समाज का एक आईना है।
1: जी जी,
0: तो उस आईने में जब आप देखते हैं खुद को भी तो वही लोग आपको नजर आते हैं।
1: तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप शायरा ना होती तो क्या होती?
0: मुझे लगता कि मैं हाउसवाइफ ही होती, क्योंकि जिस कस्बे से मेरा ताल्लुक था, जहाँ पर इतनी पाबंदियां हो कि 15-16 साल की बच्ची पर्दे में निकलती हो, बुरके में निकलती हो, जिस वक्त मेरी 9-10 साल की उम्र थी, उस वक्त जब लोगों ने इतना एहतजाज किया कि नहीं साहब हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं, हमारे यहाँ बच्चियां जो है वो ऐसे नहीं जाती है मुशायरे शायरे में, तो फिर मैं आपको मैं बताऊँ शायरी की वजह से मुझे कानपुर शिफ्ट होना पड़ा, अपना गाँव छोड़कर, अपना कस्बा छोड़ के मैं कानपुर शिफ्ट हुई। तो मुझे लगता मैं हाउस वाइफ ही होती या फिर जॉब कर रही होती, क्योंकि मुझे उस दरमियान मुझे उर्दू टीचिंग की जॉब भी मिल रही थी।
1: बहुत अच्छी बात,
0: वो मैंने
1: कुछ नहीं कर पाई। हमारे सामने को
0: जी मैं चंद शेर एक गजल के पेश करती हूँ।
1: जी अता करें मत।

0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब,
1: शुक्रिया। कि अब किसी को
0: हमारे बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं,
1: किसी का भी बहुत शुक्रिया इंतजार नहीं। और ये शेर बतौर खास
0: जी अता करें मोहतरमा।
1: गजल में फूल नहीं दिल के जख्म टाकूंगी।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात,
1: शेर देखें
0: जी जी।
1: गजल

0: बहुत खूब।
1: और ये भी शेर बतौर खास, करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों पर,
0: वाह, करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों पर,
1: करेंगे

0: भाई
1: तुम्हारी जीत तो है ये हमारी हार नहीं।
0: मोहतरमा, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया
2: कि आपने मुझे याद किया।
0: सामिन, ये थी हमारी मेहमान खुसूसी मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जिनसे अभी आप लुत्फ अंदोज हो रहे थे। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
3: उर्दू कार्यक्रम खत्म हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाए अवधि लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत है आपकी आवाज़ में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाए अवधि लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे आपकी आवाज़ में ये देवी गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं आप ही की आवाज़ में ये सोहर।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाये अवधि लोकगीत। इसी के साथ आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ और आपको एक बार याद दिला दें कि लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर आप एक बार पुनः डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाये अवधि लोकगीत सुन सकेंगे।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ

0: क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दिया आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: आइए आपको सुनवाते हैं सलिल चौधरी की धुन पर शैलेंद्र के बोलो को। गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है मधुमती।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की आवाज़ों में फिल्म मधुमति का ये गीत।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण सुनवाने के लिए आइए अब हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के

0: खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: और आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सखलीन अख्तर के पास।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, AI, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: The leaders reflected on the very strong foundation.
4: दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि तथा स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया है। ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।
3: In the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। इससे पहले बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने अमरीका को कड़ी चेतावनी दी। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई इसराइल के निशाने पर हैं। श्री अराकची ने कहा कि ईरानी नेतृत्व के खिलाफ किसी भी धमकी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बयान कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच बातचीत के बाद आए। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की

0: राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए। हमले में 30 स्थानों पर मुख्य रूप से आवासीय भवन और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों से जारी हमलों का जवाब बताया। इन हमलों में मुख्य रूप से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इस कारण यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के 4 साल से अधिक समय बाद रूस में ईंधन संकट पैदा हो गया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से। कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मी तराने। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य के बोलो को प्रीतम की धुन पर। गीत को स्वर दिया है दर्शन लावल और भूमि त्रिवेदी ने और फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दावते इश्क से। गीत को स्वर दिया है सोनू निगम, श्रेया घोषाल और कीर्ति ने, संगीत दिया है साजिद वाजिद ने और शब्द रचना है कौसर मुनीर की।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नए फिल्मी तराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे स्वर दिया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने, शब्द रचना है इरशाद कामिल की, और फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं संजय लीला भंसाली की धुन पर श्रेया घोषाल और गणेश की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा के बोलों को। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत। आइए अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम उदित नारायण सोनू निगम शंकर महादेवन की आवाजों में शंकर एहसान लॉय की धुन पर जावेद अख्तर के बोलों को। फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: किस्सा सुनो,
1: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
5: श्रोताओ, कार्यक्रम के अंत में आइए अब आपको सुनाते हैं कौसर मुनीर के बोलों को विशाल शेखर की धुन पर। गीत को स्वर दिया है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने और फिल्म का नाम है तशन।

0: good looking. I may not be too quick. I know I laugh funnily. In fact, I am a bit of a dick.
1: अभी आप सुन रहे थे टशन फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। समय हो गया है 11 बज चुके हैं और अब हमारे श्रोताओं का इंतजार करते हैं समाप्त और शुरू करते हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमसे जुड़ते हैं फोन कॉल के माध्यम से और अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनते हैं। उसके लिए उन्हें करना होता है हमारा ये नंबर डायल 0522-2238-825। तो जल्दी से कीजिए हमें कॉल और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कॉल उनकी लग गई है और जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? अपना नाम बताइए। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, आप थोड़ा सा रेडियो सेट से अपने दूर हो जाइए क्योंकि आवाज़ जो इको हो रही है।
1: जी
0: जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: सीहोर से बोल रहे हैं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आवाज़ कम आ रही है?
0: आवाज़ कम आ रही है, अभी आ रही है
1: जी। हाँ अब आई।
0: अच्छा चलिए, तो आप रमेश

0: क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी, मैं सिलाई का काम करता हूँ, मेरी दुकान है, मैं काम करता हूँ, सिलाई करता हूँ, कपड़े सिलता हूँ। तो कपड़े सिलते सिलते याद आ गई क्योंकि कम से कम 20-22 दिन हो गया जब से मेरा फोन नहीं लगा था।
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा आज वो लगना चाहिए, तो आज पहला फोन लग गया मेरा।
0: जी, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई, पहली बार आप?
1: बहुत खुशी है
0: क्योंकि जब
1: लगा मेरा फोन।
0: जी जी, ये बिल्कुल, ये खुशी कुछ अलग सी होती है ना, जब हमारे आप साथ पहले कॉलर के रूप में जुड़ जाते हैं तो वो खुशी कुछ और होती है।
1: जी जी जी,
0: आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे रमेश जी?
1: वो कबूतर जा जा जा ऐसा गाना है।
0: अच्छा अच्छा, मैंने प्यार किया फिल्म का गीत है ये।
1: मैंने प्यार किया फिल्म
0: जी
1: का।
0: चलिए तो सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी
0: ठीक है, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ लगातार हमारे श्रोता जुड़ते जा रहे हैं। और जान लेते हैं आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं। हेलो
1: पूनम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते प्रेम सिसोदिया जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से
0: जी।
1: और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने नाम से संबोधित किया।
0: जी बिल्कुल, हमारे जो रेगुलर लिसनर है ना, वो जैसे वो हमें आवाज से पहचान जाते हैं, हम लोग भी उन्हें आवाज से ही पहचान जाते हैं।
1: जी पूनम जी, बताना चाहेंगे आवाज का ही हमारा नाता बना हुआ है आकाशवाणी लखनऊ से जी, क्योंकि एक दूसरे के देखे बिना इतना लगाव हो जाना, आकाशवाणी सुनते रहते हैं और बातचीत होती रहती है, तो हमारा ऐसा घनिष्ठ मित्र वाला रिश्ता बन चुका है आकाशवाणी से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने प्रेम जी। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी पूनम जी, गीत सुना है आप, उनसे पहले मैं बताना चाहूंगा मैं आकाशवाणी लखनऊ का नियमित होता हूँ, कार्यक्रम सुनता हूँ, पूरा कार्यक्रम सुनता हूँ, और अपने खेत में अभी सोयाबीन की फसल भी लगाई है हमने।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: बरसात भी हो चुकी है हमारे यहाँ पर
0: मौसम, इसका मतलब है आपकी तरफ भी मौसम अच्छा हो गया है बारिश की वजह से।
1: अच्छा हो गया, लेकिन थोड़ी सी वो जरूरत है पानी की, थोड़ा सा पानी और गिर जाता है ना
0: जी,
1: तो सभी मतलब फसल बाहर आ जाएगी मतलब उग कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, फसल में और थोड़ा सा मौसम में भी ठंडक, जो गर्मी से हम लोग सभी इस समय परेशान है, थोड़ी राहत मिलेगी हम सभी को।
1: जी बिल्कुल, तो पूनम जी मैं बता दूं, फिल्म का नाम है बोल रहा था बोल, और गाने के बोले यही वाला सुनवा दीजिएगा आप।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कहना चाहते हैं हमारे अगले लिसनर, जान लेते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? जिला इटावा पोस्ट कर रही ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। दीदी जी,
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, कैसे हैं आप? कैसा मौसम है?
1: जी बढ़िया है, लेकिन जन्म से दिखाई नहीं देता और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: और इससे मेरा टाइम भी अच्छा कटता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको मिलती रहती हैं इसके माध्यम से।
1: जी दीदी, संध्या सन 2001 से रेडियो सुन रहा हूँ, तब से मुझे बहुत कुछ मिला है रेडियो से।
0: जी बिल्कुल। और तो आज के कार्यक्रम में राहुल जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी गाने के बोले हैं, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं बड़े हूँ नदिया किनारे, और मेरे कुछ मित्र हैं उनको याद कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल, जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: जी मेरे मिंटू भाई साहब जी हो गए, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी हो गए
0: जी, अभी उन्होंने कॉल की थी,
1: सतीश भाई साहब हो गए, और मांगेलाल चंदेल भाई साहब हो गए
0: जी,
1: फूलचंद पाल भाई साहब हो गए
0: जी,
1: और दिनकर सिंह जी हो गए, मांगेलाल चंदेल भाई साहब जी हो गए,
0: सभी के लिए
1: और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए।
0: जी बिल्कुल, सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम करने के लिए कॉल, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और अब जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से जुड़ गए हैं। हेलो हेलो
1: हेलो पूनम जी, राधे राधे।
0: राधे राधे। फूलचंद जी कैसे हैं आप
1: जी? मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ मनकारी से, छतरपुर जिले से, मध्य प्रदेश से।
0: जी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका मनकारी से।
1: पूनम जी थोड़ा और तेज बोलिए आप।
0: हाँ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ आ रही है आपको?
1: हाँ अब आ रही, बढ़िया है। बहुत जब बिल्कुल नहीं आ रही थी आवाज़।
0: जी जी जी, तो कैसे हैं आप? कैसा मौसम है आपकी तरफ? पानी वगैरह आज बारिश हुई कि नहीं?
1: जी जी पूनम जी, हमारे यहाँ कल परसों से झमाझम बारिश हो रही है। कल भी हुई थी, परसों भी हुई है, आज भी हो रही है।
0: अच्छा, यानी मौसम सुहावना हो गया है।
1: जी जी बिल्कुल, मौसम सुहावना है और हमारे किसान भाई जो है बुवाई में लग गए हैं, तो बुवाई चल रही है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, छतरपुर जिले में।
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान साथियों को भाई बारिश का तो इंतज़ार रहता ही है, और इधर गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो उससे भी थोड़ी राहत मिल गई सभी को।
1: जी पूनम जी, बहुत ज्यादा बहुत तेज गर्मी थी हमारे यहाँ, हमारा छतरपुर जिला का पूरा भारत गर्म था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और अभी जो है बारिश हुई है तो काफी ठंडक है, लेकिन कुछ भी उस भरी गर्मी तो अभी भी चल रही है।
0: हाँ, जहाँ जो थोड़ी तो राहत मिल गई ना गर्मी से, धीरे धीरे हाँ, और हाँ, थोड़ी राहत मिली,
1: कुछ राहत मिली है, हवा में ठंडक आ गई है और बहुत कुछ राहत है।
0: जी, तो चलिए आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: पूनम जी, जैसा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है, काले काले बादल भी छाए हुए हैं और रिमझिम बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में एक गीत याद आ रहा है।
0: जी,
1: फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी।
0: जी,
1: और गीत के बोले कि तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई जी बरसातों में, ये वाला गीत सुनना है। और ये गीत जो है पूनम जी आपको डेडिकेट रहेगा।
0: धन्यवाद।
1: और हमारे मांगीलाल चंदेल, दिनकर सिंह जी हैं, बेटा सिंह यादव, मनीराम पाल, जितेंद्र पाल कानपुर से, पूनम सिंह जी हैं और राहुल कुमार जी हैं, और जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। जयपाल सिंह यादव जी हैं।
0: जी जी, सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, हमारे साथ आप स्वाति जुड़ गई हैं गोंडा से। कैसी हैं आप?
1: हेलो मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी होंगी।
1: जी मैम, बिल्कुल, हम बहुत अच्छे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे तो और भी अच्छे हो गए।
0: बिल्कुल। तो स्वाति, आप क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
1: जी मैम, हम तो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और मैम हम घर पे रहते हैं, घर का काम भी करते हैं और साथ साथ में मैम मैं आईटीआई का कोर्स भी कर रही हूँ
0: बहुत
1: और
0: अच्छी
1: मेरे
0: बात है।
1: एग्जाम भी होने वाले हैं, 15 जुलाई के बाद से स्टार्ट है मैम। और जी

0: बहुत
1: तैयारी भी करें एग्जाम
0: बिल्कुल
1: की।
0: बिल्कुल। देखिए पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, घर के काम काज सब कुछ
1: जी
0: हर
1: मैम,
0: किसी को
1: बहुत जरूरी
0: सीखना
1: है लाइफ
0: चाहिए।
1: के लिए में।
0: जी, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का नाम रोए का भरोसा, और गाने के बोल हैं वो दिल कहाँ से ला दूं तेरी याद जो बुला दे।
0: जी, तो चलिए आपकी पसंद का
1: हाँ
0: गीत सुनवा दें, आपकी पसंद का ये गीत सुनवा दें।
1: जी मैम सुनवा दीजिए, बस आपकी आवाज इतनी शीलो आ रही है मैम, कुछ कंट्रा मुझको हो नहीं रहा है क्या आप बोल रही
0: हाँ, कुछ
1: हैं।
0: आपकी आपकी भी आवाज़ बहुत हल्की आ रही थी और कट कट के मुझे सुनाई पड़ रही थी।
1: जी मैम थोड़ा नेटवर्क इशू होता रहता है ना, जब से बारिश हो गया है तब
0: जी
1: से फोन
0: जी
1: में मेरे कुछ डिस्टर्बिंग आ गया है।
0: जी जी तो चलिए आप ये देर नहीं करते हैं, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा
1: मैम कुछ
0: देते
1: दोस्त हैं, दो तीन दोस्त हैं जिनका
0: जल्दी से।
1: नाम ले ले फटाफट से।
0: बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से लीजिए।
1: मैम आकाशवाणी अयोध्या के सीनियर अनाउंसर अमरजीत सिंह हैं, और भगवान सिंह परमान जी हैं, और मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी ज्योति सिंह, खुशबू सिंह और सुधा सिंह हैं, और जितने भी श्रोता लाइव सुन रहे हैं सभी को गाना
0: सभी के
1: डेडिकेट रहेगा, और सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका भी धन्यवाद।

0: हैं, कहाँ से हैं? हेलो,
1: जी मैडम नमस्ते। जी
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं।
0: अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी बताइए।
1: यूपी अयोध्या से मेरा नाम है रमेश। जी
0: जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैडम, डाक दिसार का कोई सा भी। जी
0: चलिए तो सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: ये गीत आपको और जितने भी सुनने वाले लोग हैं सभी को।
0: जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि सभी के लिए, जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए ये गीत, आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए धन्यवाद।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारे वो श्रोता जो अभी जुड़े हैं, हम उन्हें नंबर एक बार पुनः बता देते हैं जिससे वो भी अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। हमारा नंबर है 0522-2238-825। तो आप भी मिला सकते हैं ये नंबर और सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, जान

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुकी हैं। जान लेते हैं वो कौन हैं और कहां से बात कर रही हैं। हेलो।
1: फूल खिले हैं गुलशन में, मैं उठी है फिजाएं।
0: जी?
1: फूल खिले हैं गुलशन में, मैं उठी है फिजाएं। आवाज तुम्हारी इस दिल में उतर गई, आवाज तुम्हारी इस दिल में उतर गई, चलने लगी हैं ये हवाएं। हाय मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं?
0: गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। अपना नाम बताइए।
1: जी मैम, आप भी पूनम मैम बोल रही हूँ और मैं भी पूनम बोल रही हूँ कानपुर से।
0: बहुत अच्छा लगता है जब एक ही नाम के लोग बात कर रहे हो ना, है ना?
1: जी,
0: तो बताइए।
1: बहुत अच्छा लगता है और आपसे बात करने के लिए हम बहुत देर से काम भी कर रही थी। मैं सोची कि चलो फ्री हो जाते हैं, जल्दी से काम निपटा के कॉल करती हूँ, और जैसे ही फ्री हुई काम वर्क से कॉल लग गया आपका, बस डायल करते ही नंबर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे आपने याद किया वैसे आपकी बात भी हो गई। और
1: कहते हैं मैम, दिल से दिल का कनेक्शन होता है,
0: जी,
1: तो आप कितनी भी दूर रहो लेकिन याद करेंगे तो जरूर हम पहुंच ही जाते हैं।
0: सही बात कहा आपने। और ये बताइए कैसा मौसम है आपकी तरफ भी, क्या बारिश वगैरह हुई?
1: मैम बारिश तो आज सुबह में हुई है, सुबह 6 बजे बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। लेकिन मैम बारिश होती है लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बारिश होती है, क्योंकि बारिश हो जाने के बाद उमस हो जाती है बहुत ज्यादा, तो लगता ही नहीं कि बारिश हुई है, क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा प्यासी है और कुछ बूंदे जमीन पर पड़ती है
0: तो वो
1: सूख जाता है पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, जब बारिश हो रही है तो थोड़ा तापमान तो गिरेगा ही गिरेगा, और हम सभी को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिलनी चाहिए, है ना? और तो चलिए पूनम जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया है तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिलहाल तो मैम मुझे गीत सुनाइएगा, या 3 फिल्म से गीत है, और गीत है एक तेरे सिवा कुछ ना आए नजर, गीत सुना दीजिएगा ये। और मेरी दोस्त पिंकी पिंकी जी हैं, कुंजन तिवारी जी, अनु पांडे जी हैं, और साथ साथ अविनाश जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, फुलचंद पाल जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं,
0: सभी
1: और राजेंद्र गंगवार जी हैं, और जितने भी श्रोता लाइव सुन रहे हैं सभी को सुनाना चाहिए।
0: सभी के लिए कार्यक्रम में कॉल करने के लिए पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। जान लेते हैं कहां से हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मैम, मैं फतेहपुर जिला से जितेंद्र पाल बात कर रहा हूं। मैम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जितेंद्र पाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप
1: जी? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी हम तो किराने की दुकान करते हैं और आपके कार्यक्रम को सुनते रहते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप अपना काम भी करते रहते हैं और मनोरंजन भी करते रहते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें भी सुनते रहते हैं।
1: जी जी हमारी दुकान पर तो रेडियो चलता ही रहता है कंटिन्यू।
0: बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम जी मूवी रहेगी मिस्टर आजाद, और गाने के बोल रहेंगे दिए दिए के दिया दिल तुझको दिया, ऐसे करके गाने के बोल हैं।
0: जी जी तो सुनवा
1: और
0: दिया।
1: मैम जी कुछ नाम लेना चाहते हैं?
0: जल्दी से ले लीजिए।
1: सबसे पहले तो आप रहेंगी
0: जी। धन्यवाद।
1: और हमारे दादाजी हैं धर्मराज पाल जी हैं, और बेटा सिंह यादव जी हैं, रोहित भाई हैं, ओमकार भाई हैं, मलकाई सत्यचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं, दिनेश पाल जी हैं, मिंटू तिवारी जी हैं, और मैम जी जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों के लिए गाने वे विशेष रहेगा।
0: चलिए, बिल्कुल आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहा
1: जी
0: है।
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और आज के कार्यक्रम के आखिरी श्रोता जान लेते हैं कहां से हैं। हेलो
1: जी।
0: हेलो
1: हाँ
0: जी, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं।
1: मेरा नाम है प्रेमराज सिंह, ग्राम उसेरगढ़
0: जी,
1: जिला बाराबंकी।
0: चलिए, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो बढ़िया हैं सर।
0: चलिए, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और समय बहुत कम है, तो गाना जल्दी से बता दीजिए।
1: गाना कोई भी आप सुना दीजिए।
0: चलिए, तो आज आप हमारी पसंद का ये गीत सुनिए कार्यक्रम में।
1: कॉल
0: जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए प्रेमराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें से दीजिए अनुमति पूनम शर्मा को नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।

0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर, यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भलाई

0: कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
1: हाँ, 2000 साल पहले।
2: नानी माँ?
3: हाँ निधि।
2: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
3: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
2: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
3: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
1: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
3: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
2: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
3: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
1: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
3: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
3: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
3: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है, है ना?
1: मामा जी, मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष?
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
4: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
4: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
4: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
4: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
4: शाबाश निधि।

0: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
0: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुद या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे

0: छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह,
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।

0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी

0: तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
1: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
4: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। जहाँ सुरों की मिठास दिलों को जोड़ती है और गीतों के संदेश रिश्तों में अपनापन खोलते हैं।

वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं, लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बना लेती हैं।

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। उनकी धुनें वक्त के साथ और भी खूबसूरत होती जाती हैं।

पुराने गीतों की बात कुछ और ही होती है, इनमें सादगी है, मिठास है और ढेर सारी भावनाएं भी।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, युद्ध का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, कभी कोई गीत पुरानी यादों का दरवाजा खोल देता है तो कभी नई उम्मीदों की किरण को जगा लेता है। यही तो है सदाबहार नगमे का जादू।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समाचार आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। राजू सरोज ने हमें थाना गोपीगंज जनपद भदोही से सूचित किया है कि मीना देवी, जिनकी उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है, सामान्य शरीर है, ये दिनांक 13 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9277030739। ममता देवी ने हमें थाना कोयरौना जनपद भदोही से सूचित किया है कि बेबी, जिनकी उम्र 14 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल और औसत शरीर है, ये दिनांक 26 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9967240446। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9967240446। राम धनी ने हमें थाना भदोही जनपद भदोही से सूचित किया है कि कुमारी नैना, जिनकी उम्र 16 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है, दोहरा शरीर है, ये दिनांक 21 मई 2026 से लापता हैं। घटना के इनका कोई भी इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9682050135। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9682050135। हरिश्चंद्र मौर्य ने हमें थाना औरई जनपद भदोही से सूचित किया है कि आर्यन मौर्य, जिनकी उम्र 16 वर्ष है, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, इकहरा शरीर है, इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8115769691। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा

0: है फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जदीद इंतज़ामी तरबियत के लिए 464 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 22 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर बनाए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एकेडमी के जदीद तरीन नए कैंपस का अफ्तिताह किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने नवें उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2026 का अफ्तिताह किया और उसका सोवेनियर जारी किया। इसके अलावा उन्होंने तरक्की पसंद बागबानों को एजाज से भी नवाजा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने शेल्टर होम्स और ट्रेनिंग सेंटर और हाफ वे होम्स में रहने वालों की देखभाल के लिए ग्रांट की रकम 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए माहाना करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
2: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
1: देही तरक्की, ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 का आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यह एक्ट मुल्क में रोज़गार को यकीनी बनाने, देही माश को मजबूत करने और देहात की तरक्की को तेज़ करने की सिमत में एक अहम कदम है। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में एक्ट के आगाज़ के लिए मुनक्किद प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मजदूरों को इज्जत देने, गरीबों की मदद करने और देही हिंदुस्तान में देहातों की पायदार तरक्की को तेज़ करने का एक ताकतवर जरिया बनेगी। SIT की टीम श्रीराम मंदिर चंदे के गबन के इल्ज़ाम की जाँच के सिलसिले में कल एक बार फिर अयोध्या पहुँची। टीम अपनी तहकीकात जारी रखते हुए मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र से तहकीकात कर रही है। तफ्तीश की मुद्दत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दरियासना अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीराम मंदिर चंदे के गबन केस के एक मुलजिम लव कुश मिश्रा से जुड़ी एक जेर तामीर जायदाद को नोटिस जारी किया है। सेक्रेटरी ADA ने बताया कि नोटिस बिल्डिंग रेगुलेशंस की मुश्तबे खिलाफ वर्जियों की वजह से जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ADA की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्ना सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।

0: उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज लखनऊ के मुख्तलिफ मराकज़ पर दूसरे दिन भी मुनक्किद हो रहा है। कल 4 जुलाई तक होने वाले इम्तिहान के लिए रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों और दूसरी रियासतों से भी लोग लखनऊ आए हैं। इंतज़ामिया ने इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इंतज़ाम किए हैं। बायोमेट्रिक के बगैर किसी उम्मीदवार को सेंटर में दाखिल नहीं किया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 29 जून से लागू हो गई है। नई स्कीम ने 1952 की एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम की जगह ली है। इस स्कीम का मकसद डिजिटल तामील को मजबूत करना, इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाना, अकाउंट की मुंतकली को आसान बनाना और लेबर प्रोविडेंट फंड के नए ढांचे के साथ हम आहंग करना है। नई स्कीम के तहत लाजमी EPF का हिस्सा मुलाजिम और आजिर दोनों के लिए तनख्वाह के 12% पर रहेगा। 10% की मौजूदा शरह मरकजी हुकूमत के ज़रिए मुतला करदा इदारों पर लागू रहेगी। स्कीम में जुजवी रकम निकालने के कवानीन को भी अपडेट किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज से अगले 3 दिन तक रियासत के मशरक़ी और मगरबी डिवीज़नों में बारिश की पेशगोई की है। दरियासना रियासत में मानसून की आमद से लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई अज़ला में लोगों को अब भी नमी का सामना है। जुनूब मगरबी मानसून मंगल से सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात ने कई अज़ला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

0: कार्यक्रम अपराजिता में आप सभी सखियों का स्वागत है। मैं हूँ आपकी सखी इरम।
1: और मैं आभा। सखियों
0: नमस्कार।
1: इरम, क्या बात है, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हूँ।
0: हाँ, खुश तो हूँ, और इसका कारण बताऊँ तुम्हें?
1: बिल्कुल बताओ।
0: कारण यह है कि मैंने अपने घर के गेट पर बुगनविलिया का एक पौधा लगाया था। आजकल गुलाबी फूलों से ऐसा लदा पदा है कि पत्तियां तो दिखाई नहीं देती हैं।
1: अच्छा,
0: उसे देखते ही मन बड़ा खुश रहता है।
1: समझ गई। जब भी तुम बाहर निकलती होगी तो नजर पड़ती होगी उन फूलों पर, है ना?
0: सच कहा अभा। पेड़ों पर जब फूल आते हैं तो लगता है जैसे वे मुस्कुरा कर हेलो बोल रहे हों।
1: हाँ, और जब फल आते हैं तो लगता है कि गिफ्ट लेकर खड़े हैं हमें देने के लिए।
0: लेकिन ध्यान रहे आभा, पेड़ अगर बेल या नारियल का हो तो वो गिफ्ट जरा दूर से लेना होगा तुम्हें, वरना फल गिरने से चोट लग सकती है तुम्हें।
1: इरम, प्रोग्राम के बाद आज तुम्हारे घर चलूंगी।
0: क्यों भला, कोई काम है क्या तुम्हें?
1: काम तो है। वो जो बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है ना तुम्हारे घर में, उसी की कलम चाहिए मुझे। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो पेड़ पनप जाएगा। एक्चुअली मैं अपने लॉन में उसे एक गेट जैसा बनवाऊंगी।
0: एक बात तो है, तुमने अपना लॉन बहुत सुंदर सजाया है। कितने कीमती कीमती गमले और पॉट्स रखे हैं तुमने।
1: कीमती? मैंने उन्हें मुफ्त में लिया है।
0: अरे वो कैसे?
1: ओहो, अरे देखो, खा गई ना धोखा। सब पुराने डिब्बे, बाल्टी और प्लास्टिक के बोरे हैं जिन्हें रंग पोत कर मैंने सुंदर बना दिया है।
0: अच्छा, वो जो झूले में प्लांटर है जो अपने पैर लटकाए बैठा है, क्या वो भी खरीदा है तुमने?
1: मैडम जी, वो चाय के मग हैं जिनका हैंडल टूट गया था।
0: अरे वाह, वो जो खाली डिब्बे, कूड़े, कचरे और जो पोल्यूशन बिखर जाते हैं, तुमने उन्हें नया रूप देकर न सिर्फ हरियाली बढ़ाई बल्कि भूमि प्रदूषण की कमी उसको तुमने पूरा कर दिया।

0: किया है, काम कर दिया है, मान गई ना तुम मेरा लोहा। तुम्हें पता है रब, मेरे नाना जी जो थे ना, वो जब भी फल खाते थे तो बीज को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकते थे।
1: अच्छा।
0: उनका कहना था इनमें जीवन होता है, हमेशा खाली जगह पर डालते थे।
1: बात तो सही है।
0: हाँ, और हो सके तो बकायदा रोप देते थे, क्या पता इनमें से कोई पेड़ बनकर लोगों को फल और छाया दे।
1: अब समझी, पेड़ पौधे से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? अगर हम सभी तुम्हारे नाना जी की तरह छोटे छोटे कदम हरियाली को बढ़ाने की तरफ लें और वृक्षारोपण करें तो हमारी धरती कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इन सब बातों को याद दिलाने के लिए ये तो हम लोग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं।
0: सचिरम, पेड़ पौधों से प्रेम करना तो नाना जी से ही सीखा है मैंने, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, कि वेस्ट को यूज करना, वो तो मेरी क्रिएटिविटी है भाई।
1: क्या तुम और आइडियाज जानना चाहोगी वेस्ट जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनको रिसाइकल और रीयूज करने के लिए?
0: हाँ हाँ, मैं ही क्यों, हमारी सखियाँ भी उत्सुक हो रही होंगी जानने के लिए। और आज तो देखो अवसर भी है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी तो है।
1: तो आओ फिर इस अवसर पर सुनते हैं भेंटवार्ता, बढ़ता प्लास्टिक पॉल्यूशन, मिलकर खोजे सॉल्यूशन। डॉक्टर प्रतिभा सिंह के साथ बातचीत कर रही है हमारी ममता उपाध्याय दी।
2: सखियो, धरती का हरा भरा आंचल हम सबको सुख देता है। पेड़ पौधे, फूल पत्ती, घास, पशु पक्षी, उसके श्रृंगार हैं, आभूषण हैं। लेकिन आजकल इन प्राकृतिक आभूषणों को नजर लग जा रही है, किसकी, हम सब जानते हैं पर उसे नजरअंदाज करते हैं, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक खासकर वो जिसे हम एक बार उपयोग में लाकर फेंक देते हैं, यानी थैली, पन्नी और बहुत सारे रैपर्स। ये प्लास्टिक प्रदूषण है वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी को, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, समाज सेवी हैं, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी हुई हैं, और आपने एमटेक और पीएचडी किया हुआ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंसेज में। आपने किताबें भी कई सारी लिखी है। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आज हमने आपको आमंत्रित किया है प्लास्टिक प्रदूषण पर बात करने के लिए, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने का विचार आपके मन में कैसे आया, ये हमारे सखियों को बताइए।
3: विचार के लिए सबसे पहले जो मेरी एडुकेशन, अभी आपने बताई कि एमटेक और पीएचडी भी मेरा इसी क्षेत्र में रहा है, तो एक पर्यावरण के प्रति जो मेरा प्रेम कह सकते हैं आप, दूसरा मानवता के लिए मेरी अपनी जिम्मेदारियां, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अपने आप ये विचार आया कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं।
2: साथ ही विषय चुनने का भी विचार कैसे आया आपको?
3: ये विषय जब मैंने चुना तो बहुत छोटी थी मैं, लेकिन हाँ। मेरा जो लगाव था वो पर्यावरण से बचपन से ही रहा है।
2: वही मैं जानना चाहती थी, बीज कहाँ से था?
3: बीज तो डेफिनेटली पेरेंट्स की देन है। मेरा स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से है, तो वहाँ मेरे पिताजी जब मिलने आते थे, स्पेशल ओकेजन, मेरा बर्थडे या कुछ ऐसा खास जो ओकेजन होता था, बहुत सारे प्लांटेशन हमने किए हैं पिताजी के साथ, जो वहाँ हमारी अपनी फ्रेटर्निटी थी नवोदयंस के साथ, वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ में, जो पौधे आज के समय में बहुत बड़े वृक्ष बने हुए हैं। तो ये जो देन है ये कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की और साथ ही साथ जो गुरुजनों की, आप कह सकते हैं कि उनका एफर्ट है जो आज का ये रिजल्ट है।
2: जी प्रतिभा जी, वही जानना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि हम जो बड़े हैं, खासकर माँ हैं, वो भी बच्चों में बचपन से ही ये बीज बो दें, जैसे आपके पिताजी ने बोया, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, यदि बच्चों को पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बचपन से डाल दें उनके मन में, तो शायद जैसा आप आज काम कर रही हैं, हमारे जो आने वाले भविष्य में जो बच्चे बड़े होंगे वो भी इसके प्रति अपना झुकाव दिखाएंगे, कुछ काम करेंगे। तो ये बताइए, जो आप काम कर रही हैं पर्यावरण के लिए, खासकर जो हम प्लास्टिक प्रदूषण की बात करते हैं, तो जो प्लास्टिक है वो किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, प्लास्टिक भी कितने तरह के होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन से जा तो सकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं उपयोग में आता ही आता है, तो आप ये बताइए कि कौन सा प्लास्टिक जो है हमारे लिए खासकर नुकसानदेह है।
3: सबसे पहले तो हमें उसको समझना पड़ेगा प्लास्टिक है क्या। प्लास्टिक एक कृत्रिम या मानव निर्मित पदार्थ आप कह सकते हैं, इसको नेचर ने नहीं, हमने बनाया है। और इसके साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, चूंकि ये नेचुरल नहीं है तो इसका जो डिकम्पोजिशन है वो भी नेचुरल नहीं है, ये अपने आप जल्दी खत्म होने वालों में नहीं है, हम 5 मिनट अगर सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि थैला या कुछ प्रयोग करते हैं तो उसको हम 500 साल के लिए या आप कह सकते हैं 1000 वर्षों के लिए इस पर्यावरण या इस धरती को गिफ्ट कर देते हैं। फिर वो किस तरीके से एक लिटर बनके, एक गंदगी बनके और कहां कहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली ये हमारी ओशंस या ऐसे जो हमारे रिजर्वॉयर्स हैं इसमें जा करके मोर देन 90% जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो वहां पे पहुंचता है, जा करके वहां प्लास्टिक इकट्ठी होती है और जो हमारे मैरीन जीव जंतु हैं उनके लिए भी वही खतरा। और साथ ही साथ जब ये माइक्रोप्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट होती है तो हमारे ब्लड में, हमारे लंग्स में, हमारे जो टिश्यूज हैं बॉडी के, इन सब में आज के समय में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। इसके लिए जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है जो लेना चाहिए और उसके साथ साथ फुल ऑफ एफर्ट जो भी आप कर सकते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल या कम्युनिटी लेवल पे या आप प्रोफेशनली जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए।
2: आपने कहा कि हम प्लास्टिक को गिफ्ट करते हैं धरती को, जबकि हमें धरती को प्लास्टिक तो गिफ्ट करना नहीं है क्योंकि वो गिफ्ट, वो उपहार उसके लिए घातक है, सिर्फ उसके लिए नहीं हम सबके लिए घातक है। और हम जो एक प्लास्टिक की पन्नी या कोई प्लास्टिक से बना सामान ऐसे ही फेंक देते हैं सड़क के किनारे या अपने घर के कचरे में और वो वापस आकर हमें भी नुकसान पहुंचाए, कभी हमारे मन में विचार ही नहीं आता है। तो अब ये बताइए कि प्लास्टिक जो थैली है, पन्नी है, खासकर जो हम सामान मंगवाते हैं बाहर से वो भी सब रैप होते हैं उसी में, अब जो सामान बाहर से आ रहा है रैप उसे तो हम शायद नहीं चेंज कर सकते। पर हम क्या करें?
3: मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा था कि थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी इसलिए जरूरी है कि प्लास्टिक क्या है सबसे पहले वो जानिए, फिर कितने तरीके की है प्लास्टिक, 7 कैटेगरीज प्लास्टिक की बनी हुई है और वो हमको जानना है
2: जी।
3: उन 7 कैटेगरीज में कौन सी रिसाइकलेबल है इजिली, कौन सी नहीं है, दैट वी शुड नो। अगर हम वो जानेंगे तो हमारा प्रयोग फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा वहीं अपने आप। जो रिसाइकलेबल नहीं है इजिली उसको हम प्रयोग भी कम करना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ जो प्लास्टिक रिसाइक्लेबल नहीं है उसको हम रिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। तो जो हमारा अपना स्टेप होता है उसमें सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस क्या करना है? कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक, उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमें नॉलेज की जरूरत है, उसकी कैटेगराइजेशन की जरूरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जाता है रीयूज। अगर हमने प्लास्टिक किसी कारण हो, जैसे आपने कहा कि हम सब कुछ अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कुछ पैकेट्स हमारे यहाँ आ जाते हैं तो अगर वो आ जाते हैं उनको हम रीयूज कितना कर सकते हैं वो हमें समझना होगा। तीसरा हमारा स्टेप है रिफ्यूज। हम आज बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक की, तो सिंगल यूज प्लास्टिक एब्सोल्युटली रिफ्यूज ही करना चाहिए जो मुझे समझ में आता है। इस बार का इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को जो ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो इस बार का थीम है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा, एक टिकाऊ भविष्य की ओर। तो टिकाऊ भविष्य की ओर हमको अगर बढ़ना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा लेना ही लेना है। छुटकारा मतलब रिफ्यूज करना है, 100% रिफ्यूजल की तरफ जाना है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। चौथा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? जो प्लास्टिक ऑलरेडी हमने यूज किया अगर हम उसको MRF सेंटर्स या उन जगहों पे पहुंचा सकें जहां वो रिसाइकिल होकर के फिर से हमारे यूज में आ सकते हैं तो अपने आप जो फ्रेश प्लास्टिक की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो हमारा पहला स्टेप था रिड्यूस, वो अपने आप ही इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा अगर हम रिसाइकलिंग की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा स्टेप हमारा रिमूवल है। रिमूवल का सेंस है कि हम देखें कि कहाँ उसकी जरूरत है, कहाँ नहीं है, तो 100% रिमूव करें
2: जी।
3: और सिक्स जो आर है हमारे इस मैनेजमेंट में जो हम कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने के लिए, वो है रिमेम्बर ऑल दीज 5 आर्स। मतलब 6 आर्स के अप्रोच से हम प्लास्टिक फ्री लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। और बहने आपसे तो शुरुआत है, आप अपने घरों को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन्स डिक्लेयर करें, उसमें जैसे किचन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री किचन डेवलप करें, आपका वॉशरूम बाथरूम सुबह की शुरुआत ही आपकी सुबह की मुलाकात ही आपकी अगर प्लास्टिक से हो रही है उसको भी आप प्लास्टिक फ्री जोन में कन्वर्ट कर दें।
2: तो कुछ बताते चलिए साथ में उदाहरणों के साथ हमारे,
3: जैसे कि आप अगर मॉर्निंग में वॉशरूम में घुसते हैं तो आप टूथब्रश उठाते हैं प्लास्टिक, ब्रशेस भी प्लास्टिक की होती है, इवन आपने जो टूथपेस्ट उठाया उसमें भी प्लास्टिक होता है, माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। आप कोशिश करें कि इनमें आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, वुडन टूथब्रश आ चुके हैं और इजिली अवेलेबल हैं। उसके साथ ही साथ आपके जो हर्बल पेस्ट हैं या फिर पाउडर्ड फॉर्म में आते हैं क्लीनिंग के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक का इनटेक मॉर्निंग का रहता है उसको आप अवॉइड कर देंगे, जो पहला बाइट ही आपका जाता है वो भी अगर प्लास्टिक का जाता है तो आप खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट अपने किचन की तरफ जाते हैं, योर ब्रेकफास्ट लंच डिनर इन सबको एब्सोल्यूट प्लास्टिक फ्री करने की तरफ बढ़े।
2: आपने कहा कि प्लास्टिक फ्री किचन एरिया है,
3: राइट,
2: तो कैसे करें उसको?
3: जैसे पैकेट्स की बात आपने की है, अगर हम पैकेट्स लेके आते हैं तो हमारे जो भी जिप्ड पैकेट्स होते हैं उनको हम रीयूज करें। दूसरा, अगर हमने कोई पैकेट कट किया है तो हम कभी भी उसको डिटैच नहीं करें। कट करते समय ये ध्यान रखें कि उसका जो कटिंग पोर्शन है वो दूसरी तरफ न जाए या फेंका न जाए, वो लिटर क्रिएटिंग पार्ट न बने, वो भी रिसाइकलिंग का पार्ट बने। इसके लिए उसको उस बड़ी वाली पैकेट के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जब भी आप उसको थ्रो करेंगी तो वो होल पैकेट होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे

0: अच्छा, हम काट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं
1: वो उसके? जो आप छोड़ देते हैं फिर वही आगे जा करके लेटर क्रिएट करते हैं और फिर यही मैनेजमेंट में प्रॉब्लम करते हैं। ये सिर्फ 1% होते हैं लेकिन ये 1% इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि फिर उनका सोल्यूशन हमको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: आपने कहा था ना कि जो 5 मिनट हम यूज करते हैं सिंगल प्लास्टिक को और वो 500 साल तक हमारे बीच में राक्षस की तरह बनके
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पैदा रहता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता रहता है। तो जो छोटा सा उसका अंश है पार्ट है वो भी
1: इतना भयावह हो सकता है और ये सिर्फ हमारी अपनी हैबिट्स की वजह से।
0: और जैसे प्लास्टिक के आजकल जैसे हम किचन में कुछ सामान रखने के लिए रखते हैं तो उसकी जगह भी हम लकड़ी या स्टील या जो इस तरह के जो बर्तन यूज कर रहे हैं
1: हाँ,
0: वो भी रखें।
1: बिल्कुल, जैसे अपने डाइट के लिए अपने लंच बॉक्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। आप स्टील के यूज कर सकते हैं, आप कांच के यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप वाटर बॉटल हमेशा मेटल के यूज करिए, कभी भी आप प्लास्टिक वाटर बॉटल नहीं यूज करें। बचपन से बच्चों को टिफिन दें तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों को प्लास्टिक से दूर रखें। आपने घर में जो जोन्स क्रिएट किए हैं उनमें स्पेशली किड्स जोन्स हैं, उनको प्लास्टिक फ्री कर दीजिए।
0: प्लास्टिक फ्री जोन करने के लिए आप बच्चों के लिए कैसे करती हैं?
1: जो हैबिट्स बच्चों में आपको डालना है वो आप स्वयं में अपने आप में रखें और 100% उसको ऑप्ट करें। देयर इज नो ग्रे जोन। बच्चों को कभी ये मत सिखाइए यहाँ पे हम सिंगल प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। रिफ्यूज मीन्स रिफ्यूज, इफ यू कैन नॉट रीयूज यू हैव टू रिफ्यूज। एक रिफ्यूजल ही ऑप्शन है और सिंगल प्लास्टिक के लिए रिफ्यूजल ही अल्टीमेट ऑप्शन है। तो बच्चों को हम कभी ग्रे जोन में जाने से बचाएं। हमारा बच्चा कहता है हमको गर्म खाना चाहिए, तो गर्म खाना कतई हम ऐसे इंसुलेटेड टिफिन में ना दें जो डायरेक्ट लिंक्ड हो उस इंग्रेडिएंट से जो हमारा बच्चा इनटेक करने वाला। हम अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि हम भी ठंडा खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: या हम गर्म अगर लेते हैं तो वो इतने ही टाइम तक बना रहेगा क्योंकि वो इस टाइप की पैकेजिंग है हमारी। तो थोड़ी थोड़ी बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट, बच्चा हमको देख रहा है। इवन ये चीज शेयर करना चाहूंगी, कुछ घरों में मैंने ये चीज भी देखी कि बच्चा पेरेंट्स को सिखा रहा है आज के समय में।
0: बिल्कुल सही कह रही है,
1: क्योंकि बच्चा ज्यादा अवेयर है। वो कहता है अगर आपने कैरी बैग लिया और घर में लेके आया तो 10 रुपए मेरे गुल्लक में आप डाल दीजिए।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो पिनेटिव एक्शन ले रहा है, मतलब पेरेंट्स को समझाने के लिए बच्चा एक्शन ले रहा है, तो दे आर मोर अवेयर देन अस। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे अपने लेवल पे हम गिफ्ट करते हैं लोगों को बहुत सारी चीजें, हमारे जो गिफ्ट आर्टिकल्स होते हैं उनमें प्लास्टिक रैपिंग अवॉइड करें। आपके पास न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर से सुंदर सुंदर रैपिंग करके कर सकते हैं, या आपके अपने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप वो ऑप्शंस ले सकते हैं। मैं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि वी आर द मेकर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, और डेस्टिनी के साथ साथ हम अपनी फैमिली को भी बना रहे हैं। फैमिली के साथ साथ हम अपने नेशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्ल्ड के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो एक्चुअल मेकर के तौर पे हम उभर के आएंगे। सोचेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस लिए, मैंने मल्टी पॉकेट बैग्स डिजाइन करवाए।
0: अब ऑप्शंस जो आप बता रही थी विस्तार से बताई सखियों, क्योंकि आपने जो किए हैं शायद हमारी सखियों को उससे कुछ प्रेरणा मिले। जैसे आपने मल्टी पॉकेट बैग्स की बात की, तो वो कैसे होते हुए?
1: मैंने ही कॉन्सेप्ट डेवलप किया। जब हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं या किसी परचेजिंग के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो कैरी बैग्स जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं वो उस पर्पज के लिए यूज होता है। सब्जियां हम कहते हैं अदरक इसमें और प्याज इसमें और मिर्चा इसमें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम प्लास्टिक के बैग्स लेके चले आते हैं घर में। बजाय वो लाने के हम मल्टी पॉकेट बैग्स, एक शीतल प्रथम आहार सोसाइटी है और उसी में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन का है उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है एंड दे आर फॉलोइंग। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मल्टी पॉकेट बैग्स को डेवलप कर रहे हैं। एक बैग कम से कम 7 पॉकेट वाला होता है और उसमें करीब 13 से 14 किलोग्राम वेजिटेबल्स आप कैरी कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, एक तो पहली बात है कि हम बैग लेकर थैला लेकर निकलते ही नहीं घर से, तो पहले ये हैबिट कैसे डालें?
1: ठीक वैसे ही जैसे हम 1, 2, 3, 4 मोबाइल लेके चल जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर हैबिट्स। और अगर हम ये सोच लेंगे कि जो आज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें आज, अगर आप देखते हैं प्लास्टिक क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि प्लास्टिक का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जब भी प्लास्टिक रेजिन से कोई ऐसी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर पे प्लास्टिक कहीं इन्वॉल्व होती है किसी लिक्विड के साथ में और डिजोल्व होते हैं, जब वो केमिकल्स वो हमारी बॉडी में जाते हैं, अगर वो कार्सिनोजेनिक है तो फिर वो कैंसर क्रिएटिंग होते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो घर आपको दिखेगा उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए हमको ये नहीं पता है कि कैंसर का अल्टीमेट रीजन यही है, लेकिन हाँ समहाउ इतनी जानकारी जरूर है कि अगर वो कार्सिनोजेनिक है तो इट मे क्रिएट कैंसर, उसको हम बचा सकते हैं। हम क्यों ऐसे सिचुएशन आने दे, इसलिए हम प्लास्टिक को अपनी लाइफ से दूर करें। और इस टाइप में जो मल्टी पॉकेट बैग्स का कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसलिए है, आप बार बार यूज करते हैं आप रिड्यूस भी कर रहे हैं प्लास्टिक कैरी बैग्स को, रीयूज भी करेंगे उस बैग को।
0: तो आपका एक है कि मल्टी पॉकेट
1: बैग, चाहे वो टोटी बैग के फॉर्म में लेके चलें, चाहे वो आप ग्रोसरी बैग के फॉर्म में लेके चलें, मल्टी पॉकेट बैग। दूसरा मल्टी पर्पज स्लिंग बैग, वो भी मैं बनवाती हूँ और गिफ्टिंग पर्पज के लिए। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको जब भी मुझे गिफ्ट देना होता है मैं यही चीजें देती हूँ, पता

0: क्या है, जैसे मोबाइल या किसी और चीजों के लिए आपकी हैबिट बनते बनते बनी है,
1: हाँ।
0: वैसे ही मेरा अपना जो ये कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है हर घर में पहुंचेगा, तो वो हैबिट के रूप में धीरे धीरे बनते बनते जब आप यूज करेंगे फिर आप उसका बेनिफिट देखेंगे। तो मैं गिफ्टिंग पर्पज के लिए यही चीजें यूज करती हूँ।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि पहले तो हमें अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। आपने कहा ना कि नॉलेज रखना बहुत जरूरी है कि कितना नुकसानदायक है प्लास्टिक हम सबके जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदायक है।
0: मैं अब आपको ये बताना चाहूंगी छोटी छोटी टिप्स जो मैंने अपनी लाइफ में भी ली और आप भी सोचिए। पहला, कैलकुलेट कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप एक दिन में एवरेज 2 सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग अगर आप यूज कर रहे हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट द 8 बिलियन पॉपुलेशन, 8 बिलियन पॉपुलेशन है आज के डेट में। अगर वो सिंपल ये कह दें या फिर एक स्ट्रॉ यूज कर, इट जस्ट स्ट्रॉ अगर आप इग्नोर करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉ आपके लिए 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए 8 बिलियन स्ट्रॉ आपने एनवायरमेंट में डिस्पोजल किया। तो जिस दिन आपने 8 बिलियन डाला, वो सिर्फ सिंगल डे की कैलकुलेशन है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए 30 डेज, देन 1 ईयर, फिर आप इसको कम से कम 70 साल की उम्र अगर आप सोचते हैं अपने लिए, तो 70 से मल्टीप्लाई करिए। एक कैलकुलेशन तैयार होगी आपकी, और जब ये कैलकुलेशन तैयार होगी उसको 8 बिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
1: अच्छा, मतलब
0: फिर आप देखेंगे कि आपका सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो पहाड़ कैसे बनता है।
1: बिल्कुल, हम जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं कचरों का ढेर देखते हैं, उसमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक की पन्नियां दिखती हैं, पेड़ पौधों में प्लास्टिक प्लास्टिक लटके हुए में दिखते हैं, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक जो पन्नी थैलियां। आपने कहा कि रिफ्यूज हमने किया, अब रीयूज भी कैसे कर सकते हैं हम?
0: रीयूज मैंने आपसे बताया जैसे जिप प्लास्टिक लेके आते हैं, तो हम उसको एक बार यूज करके थ्रो करने के बजाय रीयूज कर लें, या फिर हमारे घर में कौन सी प्लास्टिक आ रही है उसका नॉलेज हो। जैसे आज के टाइम में कैरी बैग्स जो आएंगे वो लेस देन 120 माइक्रोन नहीं होनी चाहिए, तो इसका नॉलेज हमको होना चाहिए। और ये चीजें हमारी जो प्लास्टिक कैरी बैग है उस पर ऑलरेडी लेवल फॉर्म में मेंशन होगी, वो देख के ही हम उस चीज को लें। और वो इसलिए मेंशन नहीं होती है कि वो फिर एलिजिबल है और आप उसका लॉट एंड लॉट यूज करें, वो सिर्फ इसलिए होती है कि जितने ही हम माइक्रोन जितनी थिकनेस बढ़ाते जाते हैं उतने उसका प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। उस हिसाब से हम डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चेन होती है ना, उसमें एक इक्विलिब्रियम वाला जो स्टेज है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स या पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। बैन, एब्सोल्यूट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो हमको समझना है।
1: लेकिन हम उसको बैन कहां
0: वो कर वो रहे? जो बैन है वो शायद मुझे जो लगता है कि अभी भी कुछ गैप रह जा रहा है, वो गैप जो है वो ब्रीज आउट शायद हमारे पर्सनल एफर्ट से होगा जो मुझे लग रहा है। और उसमें छोटे छोटे टिप्स जो आपको लेना है, अगर आपको पता है कि ये रिफ्यूज करना ही करना है, तो फिर उसके लिए आपको फॉर्म होना पड़ेगा। थोड़ा हमको इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ कम्युनिटी लेवल पे भी बढ़ना है। स्प्रेड योर वर्ड्स, चीजों को आप बढ़ाई, जैसे आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक तरीके से ये अवेयरनेस ही है कि 4 लोगों में ये बातें पहुंचेंगी। तो आप लोगों का एफर्ट सराहनीय है। इसमें एक और चीज कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई चीज जो है वो बहुत डिफरेंट नहीं होती। जैसे शिव खेड़ा जी का एक जो कोटेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो डिफरेंट थिंग्स नहीं करते हैं बल्कि उसी थिंग्स को वो डिफरेंटली करते हैं, मतलब करने का मैनर जो है वो तरीका जो है वो अलग होता है। तो आप भी सोचिए कि कैसे आप डिफरेंटली इसको रीयूज कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंटली इसको रिफ्यूज कर सकते हैं, कैसे डिफरेंटली इसको रिसाइक्लिंग के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो इट्स योर एफर्ट, और ये अपनों के लिए है, आपके लिए है, आपके समाज के लिए है।
1: जी जी जी बिल्कुल, आप जो कह रही हैं कि हम ये जो काम करेंगे या कर रहे हैं वो हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपने अपने परिवार, बच्चे, अपने समाज, देश और पूरी प्रकृति के लिए, पूरे विश्व के लिए काम होना चाहिए। आगे आप इस दिशा में हमारी सखियों को क्या और टिप्स देना चाहेंगी?
0: टिप्स तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही देना चाहूंगी कि अगर आज आप इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम एक स्टेप के लिए, जैसे मिशन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन विद 1 थॉट सोल्यूशन, एक अपना कोई आइडिया डेवलप करें जिससे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें इस बीटिंग ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान में। कैसे दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। जैसे एक मेरा पर्सनल एफर्ट रहता है, क्योंकि मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काफी काम करती हूँ और सखियों की सहायता से भी करती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आपके घर में बॉटल्स आ रही है, लाइक फिनाइल आता है घरों में क्लीनिंग के लिए, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बॉटल में आ रहा है, तो आप फिर उसको फर्दर मोर रीयूज कैसे करेंगे। मैं क्या करती हूँ कि आगे चल के इसको इको एंजाइम या बायो एंजाइम, जितने भी आपके घरों में आप फ्रूट्स यूज कर रहे हैं या वेजिटेबल्स यूज करते हैं, उसको पील आउट करके, जो उसकी पीलिंग्स होती हैं, छिलके होते हैं, उन सबको आप चर्न करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके या फिर पेस्ट के फॉर्म में बना करके और इन बॉटल्स में भर के

0: प्रॉपर एक लिक्विड बनाते हैं। ये 2 months का प्रोसेस होता है और ये 2 महीने में आपका लिक्विड प्रॉपर तैयार हो जाता है। वो लिक्विड इतना क्लियर होता है कि आप उससे फ्लोर क्लीनिंग का भी काम कर सकते हैं, बचा हुआ पेस्ट जो है वो फर्टिलाइजर के लिए यूज हो सकता है, और आपकी जो बॉटल्स हैं वो घर में ही कंज्यूम हो रही हैं, बाहर आप उसको थ्रो नहीं कर रहे हैं। कोई प्लास्टिक गलती से अगर घर में आ भी रही है, गलती मतलब कि आप इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके और वो डायरेक्टली आप कंज्यूम ना कर रहे हैं, इसका पूरा ख्याल रखना। और
1: दूसरी चीज, डेकोरेटिव पीसेस बनाए लग गए हैं,
0: और बहुत सारी चीजों के साथ में एक चीज और ध्यान रखें, प्लास्टिक जो भी आप तक पहुंच रही है, एक टर्म है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने उसको जनरेट किया है ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी रिसाइकलिंग हो जाए, अल्टीमेटली रिसाइकलिंग हो जाए, कंजम्पशन उस लेवल पे हो कि वो एनवायरमेंट में थ्रू ना हो, लेकिन वो हम आप शायद नहीं समझते हैं, इसलिए उस लेवल तक वो प्लास्टिक वापस पहुंचती
1: ही नहीं, वापस जाता ही
0: तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताती है जिसने प्रोड्यूस किया है और जो उसके लेबलर हैं, जिसने लेबलिंग की है या ओनर है, उन सबकी ये ड्यूटीज होती है, जस्ट टेक बैक ऑल द प्लास्टिक्स, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो वापस उन तक पहुंचे। अब उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मीडियम है, उसके लिए आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 स्पेशली, इसको एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ें, बहने आप भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसी का अल्टीमेट इम्पैक्ट आपके बच्चे, आपकी फैमिली सब पे पड़ेगा। तो थोड़ा सा ज्ञान और बहुत सारा एफर्ट, इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और ये जो इस बार का थीम है उसको सार्थक कर सकते हैं।
1: यानी लखनऊ में यदि हम जाना चाहें आपसे, कि हमारी बहनें यदि आपकी बात सुन के प्रेरित हो जाएं कि हम प्लास्टिक को पहले तो अपने घर में नहीं लाएंगे,
0: जी
1: यदि प्लास्टिक आता है भी सामान के तौर पे, रैपर के तौर पे, या जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे सामान हम लाते हैं जिसमें रहता ही रहता है प्लास्टिक है, तो उसको मैक्सिमम बार बार यूज करेंगे जिससे कि वो थ्रो ना हो बाहर, हमारे घर में बार बार रीयूज होता रहे। लेकिन मान लीजिए कि उस प्लास्टिक का यूज अब खत्म हो गया, आपने कहा रिसाइकलिंग में भेजना पड़ता है, तो हम कहाँ जाए, लखनऊ में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे हम जाके दे सकते हैं क्या ऐसा?
0: हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक तो रूलिंग्स भी पढ़नी है और अवेयर भी रहना है। आप डेली न्यूज़पेपर के टच में अगर रहते हैं, या फिर आप लोगों का जो माध्यम है आकाशवाणी FM, बहुत सारी ऐसी जानकारी रोज उस पे दी जाती है। देखिए बहुत सारे MRF सेंटर बनाए गए हैं, MRF सेंटर होता है, मटेरियल रिकवरी सेंटर्स होते हैं,
1: उसमें रिकवरी सेंटर,
0: हाँ, फैसिलिटीज डेवलप की जाती हैं।
1: अच्छा,
0: आपके लखनऊ में भी हैं ऐसी फैसिलिटीज, जिसमें स्पेशली एक तो गोमती नगर में ही है और वहाँ पे हमने देखा भी है, मैंने विजिट भी किया है वहाँ पे जाकर के। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक रैपर्स हैं, इन सबको आप पहले इकट्ठा करिए, फिर वहाँ पे ले जाकर के आप उनको देंगे, और देने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आप उनको बेच सकते हैं, मतलब उससे भी अर्न कर सकते हैं, आप प्लास्टिक से अर्न भी कर सकते हैं। तो जब आप अर्न करेंगे तो एक इंसेंटिव की तरह वो भी आपको अच्छा लगेगा, आपने इतना एफोर्ड किया है, उसको इकट्ठा किया है, रखा है, अब साथ ही साथ कुछ आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, तो इट विल बी अ बेटर स्टेप अगर आप फॉलो करें। तो MRF सेंटर्स को विजिट करें, वहां देखें आप कैसे कर सकते हैं, वहां उन लोगों से बातचीत करें, क्योंकि मुझे याद है 2022 में एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था रेस में, RACE, R फॉर रिड्यूस करना था हमको प्लास्टिक कंजम्पशन को, A फॉर अवेयरनेस एंड C फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी यही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप प्लास्टिक से भी अर्न कर सकते हैं, आप वेस्ट से भी अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे माध्यम है, एक मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, आपका माध्यम है उससे आप ज्ञान ले सकते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में E फॉर मास एंगेजमेंट, जो चीजें आप करें कम्युनिटी लेवल पे करते करते धीरे धीरे फिर वो काफी अच्छा ग्रुप तैयार आपका होगा और शायद हम इससे निजात पा सकते हैं जिसको हम प्लास्टिक दानों के रूप में आज देख रहे हैं।
1: जी, तो जो आपने 6R की बात हमसे बताई थी, एक बार आप क्विकली उसको रिमेम्बर करा दीजिए हमारी सखियों को, फिर हम अपने कार्यक्रम को एक अच्छे से मोड पे इसको समापन की ओर ले जाते हैं।
0: 6 R's आर रिड्यूस मीन्स रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक कंजम्पशन, रीयूज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको दोबारा यूज करें, रिफ्यूज इफ यू कैन नॉट रीयूज देन रिफ्यूज इट, रिसाइकल जो भी हम यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं उसको रिसाइकलिंग तक पहुंचाएं, और नहीं करना है तो कहां कहां नहीं करना है उसको 100% रिमूव करें, जो हमारा किड्स जोन या जो भी प्लास्टिक फ्री जोन है डेवलप करें, और 6 R जो हमारा है वो रिमेम्बर ऑल दीज 5 R's,
1: जी
0: उसको कभी ना भूलें।
1: जी, तो हम कभी ना भूलें इन बातों को सखियों, जो डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी ने आज में बताई है, और ये जो 6 R है हमने इसे अपने कार्यक्रम में दोहरवाया कि आप इसे याद रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि हम इसको अपने जीवन में अमल में लाएं, और कोशिश

0: आज से ही, अभी से ही शुरू करें। और जैसा कि प्रतिभा जी ने कहा कि अवेयरनेस यानी ज्ञान का, जानकारी का होना भी बहुत जरूरी है। जब हम जानेंगे इसकी भयावहता को तभी हम इसके प्रति जागरूक होंगे। और जैसे कि आपने नो प्लास्टिक जोन की बात की, अक्सर अपने शहर के किसी इलाके में या देश के किसी जगह पे होता है कि भाई वहां जा रहे हैं तो प्लास्टिक नहीं ले जाना है। ऐसा ही काम हम अपने घर से शुरुआत करके करें। शुरुआत किचन से ही कर सकते हैं या बच्चों के कमरे से कर सकती हैं आप। तो भाई ये शुरुआत, ये कोशिश आज से ही होगी। और डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने जो प्लास्टिक फ्री जोन या जो सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें या उसे बिल्कुल अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें, इस दिशा में हमारी सखियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए।
1: सखियों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता, बढ़ता प्लास्टिक पॉल्यूशन, मिलकर खोजे सॉल्यूशन, डॉक्टर प्रतिभा सिंह के साथ। और भेंट करता थी ममता उपाध्याय जी। बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, मिलते हैं अंतराल के बाद।
2: QR कोड स्कैन करो,

0: आने के
1: थैंक
0: लिए।
1: यू
2: सखियों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता, बढ़ता प्लास्टिक पॉल्यूशन, मिलकर खोजें सॉल्यूशन, डॉक्टर प्रतिभा सिंह के साथ, और भेंट करता थी ममता उपाध्याय जी। बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, मिलते हैं अंतराल के बाद।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कि अंतराल से पहले जो भेंटवार्ता हम सुन रहे थे इरम, उसमें कितने सुंदर तरीके से प्रतिभा जी ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के तरीके बताए।
6: बिल्कुल आभा, ये जरूरी है कि धरा पर प्लास्टिक कम हो और पेड़ों की वृद्धि हो, क्योंकि पेड़ हैं तो बादल है, और बादल हैं तो बारिश है, और बारिश है तो
2: जीवन है।
6: जीवन है।

0: इरम, मैं बड़ा नर्वस हो रही हूँ भाई।
1: क्यों भला?
0: एक्चुअली मैंने बेटे का एडमिशन करवाया है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो अपने स्कूल के पहले दिन।
1: आबा हर बच्चे के जीवन में पहली बार कई तजुर्बों लेकर आता है, लेकिन जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो बच्चे के साथ माँ का दिल भी बड़ी तेजी से धड़कता है।
0: इसी बात का तो डर है मुझे इरम, कि जब पहली बार मैं उसका नन्हा हाथ स्कूल के गेट पर छोड़ूंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, हंसते मुस्कुराते हुए स्कूल में प्रवेश करेगा या रोने लगेगा।
1: ये तो
0: वैसे
1: है।
0: वैसे मैंने ना उसके पसंद की पेंसिल, वाटर बॉटल, बॉक्स, बैग सब खरीद लिया है जिससे कि उसका मन स्कूल में लगे।
1: तुमने उसे स्कूल भी घुमाया है? नहीं,
0: हाँ हाँ घुमाया है भाई।
1: ताकि वो रिलैक्स होकर स्कूल में अपने आप को सहज तरीके से रख सके।
0: स्कूल मैंने उसे घुमा दिया है, लेकिन अब समय हो रहा है अपनी सखियों से विदा लेने।

0: रहेगा।
1: सखियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अपने विचार हमसे जरूर साझा करिएगा। दीजिए इरम को
0: और आभा को
1: इजाजत। सखियों
0: नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज गीतों का ये सफर आप तय करेंगे मेरे यानी पूनम शर्मा के संग।

महेश की थी। और इसी के साथ ही औरंगाबाद से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप पाटिल, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, इन सभी ने इसी गीत को सुनना चाहा था। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आरजू फिल्म का ये गीत अलका याग्निक, कुमार सानू की युगल स्वरों में।

आरजू फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा था आलमबाग लखनऊ से उमेश दुबे, माधुरी दुबे, उत्कर्ष दुबे, प्राची दुबे, सोनू मोनू और श्याम जी ने, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी ग्राम टिकौली पोस्ट अतरिया सिधौली सीतापुर से पूनम गुप्ता, मोनिका गुप्ता, यशी गुप्ता और आश्वी गुप्ता की। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और नलिन दवे की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है प्रेम। इस गीत को सुनना चाहा है वृंदावन योजना लखनऊ से आनंद दोहरे, अनुप्रिया सिंह, अनुशील, अविशा, रतिका कश्यप, ठाकुरगंज लखनऊ से।

कार्यक्रम में इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। इन्हीं के साथ रोशन लाल, हेमंत कुमार, राखी और निशा, इन सभी ने इसी गीत को सुनना चाहा था। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है मियांगंज जिला उन्नाव से संदीप राठौर, रोहन, हिमांशु, रेखा, रोली और नरहरपुर सफीपुर जिला उन्नाव से कुलदीप तिवारी, किरण, लक्ष्मी, राहुल, मोहिनी, सार्थक और उनके पूरे परिवार ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था तेरे नाम और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी पोस्ट पूरे चंद्रमन हैदरगढ़ ज़िला बाराबंकी से राहुल कुमार, राकेश कुमारी, शिव कुमारी, विजय कुमारी, पिंकी, सन्नू और आर्यनगर कोका बिलाई से छत्तीसगढ़ से उत्तम जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल की। और इसी के साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए अनुमति पूनम शर्मा को। नमस्कार, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वो खूबी बहुत

0: अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक शाह।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीति

0: राजनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है।

0: ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अम्बरीश सिंह यादव से की गई भेंटवार्ता। विषय है खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में मक्का उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अम्बरीश सिंह यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ में जहां मक्का की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: नमस्कार किसान भाइयों, मक्का उत्पादन के लिए किसी विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हमको ऐसे खेतों का चुनाव करना है जहां पर जल भराव की समस्या ना रहती हो, और यदि भूमि लवणीय या क्षारीय है तो उसमें हम मक्का की खेती नहीं कर सकते हैं। खेत की तैयारी के संबंध में किसान भाइयों को एक बार जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 2 से 3 जुताइयां कल्टीवेटर या रोटावेटर से कर लें और भूमि को जो है समतल कर लें। हर जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, जिससे कि नमी का संरक्षण खेत में बना रहे।
1: डॉक्टर साहब, प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी?
2: हमारे प्रदेश के लिए जो संचित प्रजातियां हैं उसमें मुख्य रूप से उनको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि कम समय में पक जाती हैं, 75 दिन में लगभग तैयार हो जाती हैं। उसमें विशेष रूप से विवेक शंकर मक्का 5, विवेक शंकर मक्का 17, विवेक शंकर मक्का 27, PNH2 यार संकल अगर इसमें ले रहे हैं तो दायरा नाम की प्रजाति है, उसका हम चयन कर सकते हैं। इसके बाद शीघ्र पकने वाली प्रजाति आती है जो कि लगभग 85 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसमें जो प्रजातियां हैं उसमें प्रकाश JH3459, DHM107 या MH133 प्रजाति मुख्य रूप से है।

0: संकुल प्रजातियों में पूसा संकुल मक्का 4, मेघा, गौरव, सूर्या, कंचन प्रजातियों का चयन किसान भाई कर सकते हैं। इसके बाद मध्यम समय से तैयार होती हैं, जो कि लगभग 95 दिन का समय लेती हैं। उन प्रजातियों में मालवी संकर मक्का 2, HM4, बायो 9637, DK701 प्रजाति का चयन कर सकते हैं किसान भाई। संकल प्रजातियों में नवजोत, नवीन, श्वेता, शक्ति का चयन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाई बहन वैल्यू एडिशन के तहत जैसे पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न पैदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है?
0: हमारे प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का।
1: शहर के आसपास के जो गांव हैं
0: जी, वहां पर इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इससे जो है उनको अधिक मुनाफा हो जाएगा और ये फसलें सामान्य मक्का से जल्दी तैयार हो जाती हैं। इनकी जो प्रजातियां हैं बेबी कॉर्न में LM4, BL बेबी कॉर्न आजाद कमल और BL बेबी कॉर्न 1 का चयन कर सकते हैं किसान भाई। इसी तरह से यदि पॉपकॉर्न, जो कि सिनेमा घरों में लोग किसान भाई जानते होंगे, देखते होंगे, खाते होंगे, तो वहां पर उस पर को हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका खेती कर सकते हैं। और उनकी जो प्रजातियां BL पॉपकॉर्न, अंबर पॉपकॉर्न, पर्ल पॉपकॉर्न या जवाहर और प्रभाव, ये प्रजाति चयन कर सकते हैं। इसी तरह से स्वीट कॉर्न, जिसको कि मीठी मक्का कहते हैं, उसमें माधुरी, प्रिया, विन ऑरेंज, HSC1, अल्मोड़ा।
1: डॉक्टर साहब, बीज दर प्रति एकड़ कितना लगेगी और बुआई के पहले भूमि शोधन और बीज शोधन भी करना होगा?
0: जी हाँ, ट्राइकोडर्मा फफूंदी नाशक है, 2% WP की 1 किलोग्राम मात्रा को 25 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद में ले लें और उसमें उस पाउडर का बुरकाव कर दें। यदि दीमक, सूत्रकृमि या जड़ की सुंडी या कटवर्म, कटुआ कीट का खेत में प्रकोप हो रहा है, सफेद गिटार है, इससे भी बचाव के लिए हम ब्यूवेरिया बैशियाना 1% WP की 1 किलोग्राम मात्रा को 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई अच्छी से गोबर की खाद में मिला करके इसका हम प्रयोग कर सकते हैं।
1: और बीज शोधन में?
0: बीज शोधन के लिए हमको थीरम है या 22-T है, इसकी 2 ग्राम दवा को लेकर के प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित कर लेंगे।
1: बीज दर डॉक्टर साहब कितना लगेगा, अंतरण कितना होगा और बुआई का समय उपयुक्त क्या है?
0: इस समय बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, 15 जुलाई तक हम जो है बुआई कर सकते हैं, जो भी हमने अभी जिक्र किया है जिन मक्का के बारे में। और बीज की जो मात्रा है, सामान्य रूप से हम 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखते हैं। अगर हम क्वालिटी प्रोटीन मेज का अगर चयन कर रहे हैं तो उसमें 8 किलोग्राम का लेना है। पॉपकॉर्न का अगर हम करने जा रहे हैं बुआई, तो उसमें 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार स्वीट कॉर्न अगर हम बो रहे हैं मीठी मक्का, तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की हमको आवश्यकता होगी। चारा के लिए अगर हम फसल बो रहे हैं किसान भाई कोई
1: मक्के
0: भी
1: की।
0: मक्के की, तो उसके लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता होगी बीज की। इसके बाद पंख से पंख की दूरी में सामान्य तौर पर 60 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। चारा वाला मक्का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे पंख से पंख की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी संतुलित की गई है। जबकि अगर हम फसल चारा वाली रहे हैं तो वहां पर पंत से पंत की दूरी 10 सेंटीमीटर रखेंगे।
1: डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक का प्रबंधन कितना हो, कब कब हो, कैसे हो?
0: सामान्य तौर पर मृदा के अनुसार ही हमको प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मृदा की जांच बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पा रहे हैं तो सामान्य दशा में 5 से 6 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए,
1: यानी 50 से 60 कुंतल।
0: जी जी, जहाँ तक उर्वरक की बात है तो उसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश मुख्य रूप से आवश्यक हैं। इसके लिए देर से पकने वाली जो संकर प्रजातियां हैं और संकुल प्रजातियां हैं, उसको 50 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। यदि शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का हमने चयन किया हुआ है तो वहाँ पर 40 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश की प्रति किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे। इसी तरह से यदि स्वीट कॉर्न और पॉप कॉर्न का हम प्रयोग कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश प्रति एकड़ प्रयोग करेंगे। पॉप कॉर्न के लिए 30 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ का प्रयोग करेंगे। देसी प्रजातियां कोई किसान भाई लगा रहे हैं तो उस दशा में 30 किलोग्राम नत्रजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम ही पोटाश का प्रयोग प्रति एकड़ करेंगे। बुआई के समय ही नत्रजन की आपको 1/4 मात्रा प्रयोग करनी है, जबकि फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग करना है। नत्रजन की शेष बची मात्रा को 3 भागों में हम बांट लेंगे और उसको बराबर बराबर मात्रा में टॉप ड्रेसिंग के रूप में, जो कि खड़ी फसल में देना है,
1: यानी स्प्लिट डोज होगी।
0: जी हाँ।
1: कब कब डॉक्टर साहब?
0: इसकी पहली जो टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे वो निराई गुड़ाई के जो हम कर रहे हैं उसके 25 से 30 दिन बाद दे देना है।

0: बुआई के 25 से 30 दिन,
1: बुआई के 25 से 30 दिन बाद। दूसरी जो प्रयोग करना है उसके लिए नर मंजरी जब निकलती है मक्का में उस समय प्रयोग करना है, और तीसरी जब परागण हल्का सा झड़ने लगे उस अवस्था में करना है। यह अवस्था जो आती है वो संकर मक्का में बुआई के 50 से 60 दिन बाद आती है और संकुल मक्का में लगभग 40 से 60 दिन के अंतर पर आती है। यदि किन्हीं भूमि में जिंक की कमी है तो वहाँ पर किसान भाई जिंक सल्फेट की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जुताई के अंतिम समय पर ही दी जानी है।
0: डॉक्टर साहब, खरपतवारों का प्रबंधन कैसे हो?
1: मक्का में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों रूप के खरपतवार उगते हैं। किसान भाइयों को सुझाव है कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद समय के अनुसार आप निराई गुड़ाई कर दें। दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद कर दें। हम रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए मुख्य रूप से एट्राजिन या ट्रेफाजिन दवाई की 50% WP की 800 ग्राम की मात्रा को प्रति एकड़ में, जो कि भारी मृदा है वहाँ पर संतुलित किया जाता है। यदि हल्की मृदा है, बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट है, तो वहाँ पर इसकी जो है 50 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं और इसको 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें। बुआई के तुरंत बाद या खरपतवार के जमने से पूर्व, मतलब 2 दिन पूर्व आप कर सकते हैं,
0: यानी जमाव के पहले।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में मक्का उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 7007840421 7007840421 7084401।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में मक्का उत्पादन के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: विशेष रूप से मक्का की बुवाई मेड़ों पर बेड प्लांटर से करें। विरणीकरण बहुत आवश्यक है जिससे कि पौधों की निर्धारित दूरी सुनिश्चित कर लें और मृदा परीक्षण के आधार पर ही पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग किया जाए। यदि भूमि में जिंक की कमी हो तो 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट की प्रति एकड़ की मात्रा प्रयोग करें।
0: डॉक्टर अमरेश सिंह यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में मक्का उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर डॉक्टर अम्बरीश सिंह यादव से की गई भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। रामधनी ने थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से सूचित किया है कि सुशील कुमार, जिनकी उम्र 17 वर्ष 10 माह, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा, सामान्य शरीर है, ये दिनांक 25 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9929149545। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9929149545। विशाल गिरी ने थाना कोयरौना जनपद भदोही से सूचित किया है कि ज्योति गिरी, जिनकी उम्र 17 वर्ष, रंग गेहुआ, इकहरा शरीर है, दिनांक 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के इनके विषय में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7384750028। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7318475028। महेंद्र उपाध्याय ने थाना सूर्यावा जनपद भदोही से सूचित किया है कि रामकृष्ण, जिनकी उम्र 16 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, सामान्य शरीर है, ये दिनांक 28 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7068014279।

नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7068014279। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
4: सुनो ना।
5: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रंजना अग्रहर के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं पूर्वी।

0: तो ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रंजना अग्रहर के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं पूर्वी।

लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर रंजना अग्रहर के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं निर्गुण।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर रंजना अग्रहर की गाय अवधि लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोहर।

लोकमादरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना अग्रहर के गाय अवधि लोकगीत। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं। अब मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास

0: परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से नरेश वाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप से आपके स्मार्टफोन और डीटीएच पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज की सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

इन उत्तर प्रदेश इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी देंगी डॉक्टर नीलम अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी JNMPG कॉलेज लखनऊ से, और भेंटकर्ता होंगी डॉक्टर शिवा राकेश। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर, जिसमें आज आप आनंद लेंगे पंडित किशन महाराज का तबला वादन का। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रात 8:10 पर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे जाफर हुसैन खां, इनकी गाई नात व कवालियों का आनंद आप ले सकेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर सुनेगा कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर होगा कार्यक्रम नई उड़ान, और शाम 6:30 और 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी। श्रोताओं, ये था विवरण आज की इस सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा केपीएल वर्मा की वार्ता, भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पी पीवी नरसिम्हा राव। शाम 7:31 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे द थारू कल्चर।

कल रात 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें कल आप सुनेंगे पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण, इसका समय होगा कल सुबह 10:10। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर फरमाइएगा लखनऊ की जबान, इसकी पेशकश होगी आसिफ इकबाल की। जिले की हलचल लेकर हाजिर हो जाएंगे सुबह 9:15 पर। हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8 बजे सुनिएगा डॉक्टर ललित मोहन जोशी की वार्ता, सहकारिता से सह अस्तित्व। साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान जगत का समय होगा शाम 7:31। इस कार्यक्रम में कल फुटबॉल का विज्ञान, मैदान पर जादू या फिजिक्स का खेल, इस विषय पर की गई वार्ता आपको सुनवाएंगे। वार्ताकार होंगे विज्ञान संचारक विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दीपक कोहली। बहने अपना कार्यक्रम घर आंगन सुन सकेंगी कल दिन में 1:15 पर। कृषि कार्यक्रमों के अंतर्गत सुबह 6:05 पर सुनिएगा तिल की उन्नत कृषि तकनीक के विषय में, और दिन में विज्ञान और किसान, इस कार्यक्रम का समय होगा दिन में 2:30, जिसमें कल भिंडी की उन्नत कृषि तकनीक के विषय में आप भेंटवार्ता सुन सकेंगे। जानकारी देंगे धर्मेंद्रनाथ पांडे और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी का समय होगा सुबह 9:50 और दिन में 2:45। कल इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे राजेश त्रिपाठी, इनके गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात 8:10 पर सुनिएगा कमाल अहमद खां का गायन। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुबह 7 बजे नीना सोनकर जानकारी देंगी खट्टी मीठी गुणकारी इमली के विषय में आज सुबह, इस कार्यक्रम का समय होगा कल सुबह 7:31। श्रोताओं, इसके अलावा दिन में समय समय पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। आपको बता दें कि कल शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाएंगे। कल शाम 5:45 पर समय होगा कार्यक्रम नई उड़ान का, और कल शाम 6:30 और शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा लोकायतन और खेती किसानी। श्रोताओं, ये था विवरण आज की सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में, और मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि।

0: और मैं हूँ आयुषी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी धरती से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है हमारे भविष्य से। क्योंकि साथियों, आज हमारा कार्यक्रम एक खास संदेश लेकर आया है।
1: क्या खास संदेश? मतलब वो क्या है
0: सुरभि? आज हम अपने दोस्तों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो और आने वाला भविष्य भी।
1: आयुषी, ये तो सच में बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि साथियों, आजकल की भयंकर गर्मी और दिन ब दिन बढ़ता तापमान, इससे बचने के लिए तो कोई मजबूत और टिकाऊ उपाय ही होना चाहिए। और वो मजबूत और टिकाऊ उपाय है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे।
0: और दोस्तों, सिर्फ पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, हमें उन पौधों की देखभाल करनी होगी ताकि वो हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सके। क्योंकि जैसे जैसे हम विकास की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें जलवायु संकट, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो आयुषी, और मुझे तो लगता है कि हमें विकास की एक महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत है स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ जलवायु। और अगर हम इसकी समीक्षा करें तो इसका कारण भी ये है कि हमने एक तरफा विकास की ओर ध्यान दिया, यानी कि जंगल काटकर शहर बसा लिए लेकिन वन संरक्षित नहीं कर सके, और इसी तरीके से पेड़ काटकर मकान बना लिया लेकिन आंगन या दरवाजे पर एक पेड़ लगाना भूल गए।
0: सही कह रही हो सुरभि, मुझे आज भी याद है कि मेरे दादा दादी के घर के आंगन में भी एक पुराना आम का पेड़ था। बचपन में हम लोग सभी उस पेड़ के नीचे खेलते थे और पत्थर मार कर हम आम तोड़ने की कोशिश करते थे।
1: अच्छा, तो मिलते थे आम?
0: अरे, तुम एक आम की बात कर रही हो, आंधी चलती थी तो ढेरों आम गिरते थे और ठंडी हवा तो 12 महीने मिलती थी।
1: वाह आयुषी, तो इस बार जब दादी के घर जाना तो भाई सुरभि का ख्याल जरूर रखना और मेरे लिए आम लेती आना।
0: यही तो दिक्कत हो गई है सुरभि।
1: क्या?
0: पिछले साल जब घर में निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उस पेड़ को काट दिया गया था।
1: ओ,
0: अब पूरा आंगन सूना सा लगता है और गर्मी भी पहले से ज्यादा लगती है।
1: ये तो बहुत गलत हुआ।
0: दोस्तों,
1: इसी तरह हमारे आंगन से, हमारे दरीचे से, आसपास से पेड़ गायब होते जा रहे हैं। पक्की सड़कें, सीमेंट कंक्रीट की इमारतें, इन सब से धूप तेज हो गई है, तापमान बढ़ रहा है। दोस्तों, जानते हैं, मैंने कल ही पढ़ा था अखबार में कि शहरों में पिछले 10 सालों में हरियाली लगभग 30% घट गई है, और इसीलिए अब गर्मी पहले से ज़्यादा हो गई है और समस्याएं पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं।
0: हाँ दोस्तों, गर्मी और बढ़ता तापमान दिन ब दिन अपना भयावह रूप ले रहा है। अभी अभी यूरोप में भीषण हीट वेव आई है। फ्रांस, इटली, स्पेन, इन सब जगहों का तापमान ने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस, जो कि अपने सुहावने मौसम के लिए जाना जाता था, वहाँ का पारा 41 डिग्री के पार पहुँच गया है। सोचिए दोस्तों, 41 डिग्री तापमान में जीवन कितना मुश्किल है।
1: अरे, बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर अभी से हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो भविष्य में हालात और भी बदतर होंगे। साथियों, ज़रूरत है कि हम अब एक्शन लें। पेड़ ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तापमान को कम रखते हैं।

0: समस्या नहीं है दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है।
1: जी दोस्तों, ये चेतावनी है कि अगर हमने अभी से पेड़ पौधे नहीं लगाए तो आने वाले सालों में हालात काफ़ी गंभीर होंगे। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएं, आगे आएं। तो प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा बहुत भयानक हो सकता है साथियों। तो आइए आज ही संकल्प लेते हैं कि एक पौधा हर युवा लगाएगा। कोई ऐसे अवसर पे, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन का अवसर हो, तो उसमें भी आप पौधा लगा सकते हैं और उसकी रक्षा उसी तरह करिए जैसे आप अपने घर में किसी पेट की रक्षा करते हैं। और फिर देखिए, वो पौधा एक दिन पेड़ बन जाएगा और जिस दिन से पौधा लगेगा उस दिन से वो एनवायरनमेंट में अपना योगदान देगा।
0: तो इसी के साथ दोस्तों, अब कार्यक्रम में थोड़ा सा संगीत का रंग घोलते हैं। लोक संस्कृति की सुगंध से सराबोर अपनी मधुर और सशक्त गायकी से देश विदेश में पहचान बनाने वाली सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी की आवाज़ में सुनते हैं एक बेहद लोकप्रिय लोकगीत, सैया मिले लड़कियां।

0: दोस्तों, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव, जो हमें बताता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारी धरती के लिए कितने ज़रूरी हैं। इसी उपलक्ष्य में वन महोत्सव विषय पर आइए सुनते हैं ये वार्ता। वार्ताकार हैं सुश्री शिक्षा बहल जी।
1: भारतीय संस्कृति के अधिकतर उत्सव हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े हैं, चाहे वो संस्कृति हो या धार्मिक, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और उत्सवों के द्वारा हम अपने कृतज्ञ भाव अभिव्यक्त करते हैं। आज हम एक ऐसे ही उत्सव की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन महोत्सव। वन महोत्सव यानी पेड़ों का त्यौहार। हमारे जीवन में वनों का काफ़ी महत्व है। वन हमें प्राण वायु, फल फूल और छाया देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते। साथ साथ पेड़ हमें जीवन में नैतिकता, परोपकार और विनम्रता जैसे गुण सिखाते हैं। उनका यही एहसान हम वन महोत्सव के जरिए अभिव्यक्त करते हैं। भारत देश में वन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सन 1950 में कृषि मंत्री डॉ. कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी द्वारा वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। यह उत्सव प्रतिवर्ष 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 सप्ताह तक चलता है। यह एक राष्ट्रीय महोत्सव है। कृषि मंत्री डॉ. कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने देखा भारत में पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है। इस विषय को लेकर वो काफ़ी चिंतित हुए। लोगों में वनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्होंने समूह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाने का सोचा, जिससे लोग जंगल संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण का महत्व समझ सकें। वन महोत्सव मनाने के लिए जुलाई महीने को ही चुना गया, क्योंकि जुलाई महीने में ही वर्षा की शुरुआत होती है। इस समय पर पेड़ लगाना काफ़ी फायदेमंद होता है। वैसे तो वन महोत्सव की शुरुआत साल 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा की गई थी, लेकिन साल 1950 में इसे कृषि मंत्री कन्हैया लाल मुंशी ने वन महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में घोषित किया। वन प्राकृतिक संपत्ति है। पेड़ों के साथ हमारे जीवन का गहरा रिश्ता है। मनुष्य विकास के नाम पर जितने पेड़ काट रहे हैं, उतने नए पेड़ों का रोपण नहीं कर रहे और यह एक गंभीर समस्या है। इसलिए भारत के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में यह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ताकि बचपन से ही बच्चों में वनों के प्रति जागरूकता पैदा हो। सरकारी दफ्तरों, कई संगठनों और संस्था के द्वारा भी समूह में पौधे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति का भी वनों के साथ काफी गहरा नाता है। हमारे ऋषि मुनि भी शांति और एकांत की तलाश में वन में रहते थे। हमारे प्राचीन परंपरा से हमें वृक्षों की पूजा करना, व्रत रखना और जल चढ़ाना सिखाया जाता है। प्राचीन समय में गुरुकुल भी जंगल में ही हुआ करते थे, क्योंकि शिक्षा लेते समय मन को एकाग्रता और शुद्ध वातावरण प्राप्त हो। हिंदू संस्कृति में भी वृक्षों को भगवान का दर्जा दिया गया है। आपको तुलसी का पौधा हर एक घर में देखने को मिलेगा। वनों के अनगिनत लाभ हैं। इससे अहम लाभ तो वो हमारे जीवन के लिए प्राण वायु देता है, शुद्ध और स्वच्छ वातावरण देता है। उनकी हरियाली देखकर हमारी आँखों की थकान दूर होती है और मन को शांति मिलती है। वन अनेक प्राणी और पक्षी का आशियाना भी है। वनों से हमें लकड़ियाँ, फल फूल, दवाइयाँ, कागज, चंदन की लकड़ियाँ जैसी कई मूल्यवान जीवन जरूरी सामग्री प्राप्त होती है। गर्मी में ठंडक देना और वर्षा ऋतु में बारिश लाने का काम भी वनों का ही है। वन धरती के कटाव को रोकता है, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी नष्ट नहीं होती। देश की आबादी बढ़ने पर सबसे पहला प्रश्न रहने और खाने का है, जिसके कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। हमारे देश में सिर्फ 20% वन ही बचे हैं, जो एक गंभीर प्रश्न है। वनों की कटाई के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग विश्व के लिए एक चुनौती बन गई है। वनों के कटने के कारण बारिश कम हो रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है। वन नहीं होंगे तो हमें कोई अमूल्य सामग्री प्राप्त नहीं होगी। सबसे अहम बात, वर्षा नहीं होगी तो जल की समस्या होगी और सूखा पड़ेगा। हर साल मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं को बुलावा देता है, इसलिए सरकार वनों को बचाने के लिए यह मुहिम चला रही है, वन महोत्सव मना रही है। सभी लोगों को अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और एक दूसरे को सचेत करने की जरूरत है। वन महोत्सव के उस हफ्ते में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, मगर कुछ ही पेड़ बच पाते हैं। लोग पेड़ तो लगा लेते हैं पर उनकी देखभाल नहीं करते। पेड़ लगाने के साथ ही उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना पानी और देखभाल के पौधे जीवित नहीं रहते, इसलिए हमें पौधों की अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। वनों में अनगिनत वृक्ष होते हैं, वहाँ की हवा शुद्ध होती है। वन सिर्फ मानव के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वनों से प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता वनों से कई गुना बढ़ जाती है। वन प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे वातावरण में मौजूद गहरीली गैसों को सोख लेते हैं और वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगर वन होंगे तो प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी। वनों को सुरक्षित रहना हर मानव का कर्तव्य है। वनों और पेड़ों की अधिक कटाई के कारण आज गर्मियों की अवधि में वृद्धि और सर्दियों का समय बेहद कम हो गया है। कुछ राज्यों में गर्मी 47 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच गई है। इतनी गर्मी में मनुष्य की मौत हो सकती है। वनों के लगातार कटने से पशु पक्षियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई प्रजातियां समाप्त हो रही हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ गया है, जिससे कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं। सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सड़कों पर लगातार गाड़ियां वायु को प्रदूषित कर रही हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हमें प्रदूषण की समस्या को दूर करना चाहिए। वन नीति के मुताबिक धरती के कुछ क्षेत्रफल में 33% भाग में वन होने चाहिए, मगर हमारे देश में मात्र 20% ही वन रह गए हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भी लोग वनों को काट रहे हैं ताकि घर बन सकें। 2017 में वनों में सिर्फ 1% की ही वृद्धि हुई, और जो बहुत कम है। सरकार अपनी तरफ से वनों को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। हम सबको भी मिलकर वनों को सुरक्षित रखना होगा। वनों को बचाना बेहद आवश्यक है। हमारा अस्तित्व वनों पर निर्भर करता है। वनों को काटने से पृथ्वी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कई जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं।

0: पृथ्वी और पर्यावरण पर भयानक असर पड़ रहा है। समय रहते हम सभी को सचेत हो जाना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी अपना विकराल रूप धारण कर लेगी। हमें सरकार का साथ देते हुए वन महोत्सव को मनाना चाहिए और कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह हमें हर साल करना चाहिए। जब इस देश का हर एक व्यक्ति साल में एक पेड़ लगाएगा तो सोचिए कितने पेड़ लग जाएंगे। मत काटो इन पेड़ों को, इनमें होती है जान। बिन पेड़ों के हो जाएगा हम सब का जीवन सुनसान।
1: जी दोस्तों, बिन पेड़ों के हम सब का जीवन सुनसान हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह युवा तरंग सुनसान हो जाता है बिना संगीत के। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है एक प्यारे से गीत का। आइए सुनते हैं गीत और मिलते हैं गीत के उस पार।

0: दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस हिस्से की ओर जिसका इंतजार हर छात्र हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा को रहता है, और वो हिस्सा है हमारे कार्यक्रम का रोजगार सूचनाएं। दोस्तों, हम इस मंच के माध्यम से आपको अलग अलग भर्तियों की जानकारी देते हैं ताकि आप जान सकें कि रोजगार के लिए अवसर कहाँ हैं, कौन आवेदन कर सकता है और किस दिशा में तैयारी करनी है।
1: तो दोस्तों, सबसे पहली सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड RRB से है। रेलवे ने नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्यता की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के संबंधित विषय में BTech या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10th पास के साथ ITI या मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 29 जुलाई है। इच्छुक अभ्यर्थी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
0: और दोस्तों, दूसरी एक बड़ी पोस्ट निकली है, वो पोस्ट है IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती की। जी दोस्तों, अगर बैंकिंग के क्षेत्र में आप इच्छुक हैं करियर बनाने के लिए, तो ऐसे युवाओं के लिए ये एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसने प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6715 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और योग्यता क्या है? तो दोस्तों, इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हों, आयु सीमा आपकी होनी चाहिए 20 से 30 वर्ष, और चयन प्रक्रिया साथियों इसमें 3 चरणों में होती है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री, दूसरा मेंस मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। और दोस्तों, इसके आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो
1: दोस्तों, तीसरी बड़ी सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। UPPSC ने संयुक्त राज और प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, कर अधिकारी और ऐसे ही कई जरूरी पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। इन पदों के लिए भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 27 जुलाई है यानी 27 जुलाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोजगार सूचनाएं। किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल वेबसाइट की जरूरी डिटेल्स पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें।
0: तो दोस्तों, देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को थोड़ा और तेज़ी से शुरू कर दीजिए और इन्हीं शानदार अवसरों का पूरा फ़ायदा उठाइए। वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक गीत का, तो सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज के युवा तरंग कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, सहकारिता। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंटवार्ता, जिसका विषय है माटी कलाकारों को मिलने वाली सुविधाएं। इस विषय पर हमारे साथ होंगे श्री कृष्ण प्रताप सिंह। तो सुनना ना भूलिएगा युवा तरंग का अगला अंक कल इसी समय और इसी जगह पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी
1: और सुरभि को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान। आज की नई उड़ान समर्पित है प्रकृति, हरियाली और हमारे उज्जवल भविष्य को। इन दिनों पूरे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह केवल पौधे लगाने का अवसर नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को याद करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बनाने का

और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान। आज की नई उड़ान समर्पित है प्रकृति, हरियाली और हमारे उज्जवल भविष्य को। इन दिनों पूरे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह केवल पौधे लगाने का अवसर नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को याद करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बनाने का अभियान है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है, शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ वातावरण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों की सबसे बड़ी सुरक्षा कौन करता है? इसका उत्तर है पेड़। पेड़ धरती के सच्चे प्रहरी हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं, वर्षा के चक्र को संतुलित करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और असंख्य जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। आज तेजी से बढ़ता शहरीकरण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। गर्मियों में बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, जल संकट और प्रदूषण हमें लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अब समय केवल चिंता करने का नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का है। ऐसे समय में वन महोत्सव सप्ताह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। प्रिय श्रोताओं, अक्सर लोग पौधे तो लगा देते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। याद रखिए, केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे समय समय पर पानी देना, पशुओं से बचाना, उसकी सुरक्षा करना और उसे पेड़ बनने तक संभालना भी उतना ही आवश्यक है। एक पौधा तभी सफल होता है जब उसके साथ हमारा अपनापन जुड़ता है। अगर हमारे मोहल्ले का हर परिवार एक एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी भी ले तो कुछ ही वर्षों में पूरा इलाका हरा भरा हो सकता है। कल्पना कीजिए, सड़क के किनारे छायादार पेड़ हो, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे, बच्चों को स्वच्छ हवा मिले और गर्मियों की तपिश कुछ कम महसूस हो। ये सपना असंभव नहीं है, बस शुरुआत हम सबको मिलकर करनी होगी। गर्मियों की तपती दोपहर में सड़क किनारे खड़ा एक विशाल वृक्ष कितने लोगों को राहत देता है। कोई राहगीर उसकी छाया में कुछ पल आराम करता है, कोई पक्षी उसकी शाखाओं पर अपना घोंसला बनाता है और कोई बच्चा उसके नीचे खेलते हुए प्रकृति से जुड़ना सीखता है। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में बिना किसी स्वार्थ के अनगिनत लोगों की सेवा करता है। शायद यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। पीपल, बरगद, नीम, आंवला और तुलसी जैसे पौधों का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते थे। आज जरूरत है कि हम उसी सोच को आधुनिक जीवन शैली के साथ फिर से अपनाएं। वन महोत्सव सप्ताह हमें केवल पौधे लगाने का संदेश नहीं देता बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, प्लास्टिक के कम उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल की प्रेरणा भी देता है। यदि हम छोटी छोटी आदतें बदल लें, जैसे पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग, कागज़ की बर्बादी रोकना और हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना, तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। बढ़ता तापमान, पिघलते हिमखंड, प्रदूषित हवा और घटता भूजल स्तर हमें लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि यदि अभी भी हमने प्रकृति की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे समय में वन महोत्सव सप्ताह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का उत्सव बन जाता है। बच्चों और युवाओं की भागीदारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। यदि बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जाए तो वो बड़े होकर भी प्रकृति की रक्षा को अपना कर्तव्य समझेंगे। जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ या किसी विशेष अवसर पर एक पौधा लगाने की परंपरा शुरू की जा सकती है। ये परंपरा न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगी बल्कि समाज में एक सौहार्द भी खोलेंगे, क्योंकि जब चारों ओर हरियाली होगी, चारों ओर लोग खुश होंगे तो माहौल अपने आप सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल एक गीत है कि हमको रुकना नहीं है, चलते रहना है, तो आइए सुनते हैं पहले गीत।

0: का आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंट वार्ता, समग्र मानव विकास का मूल मंत्र शांति पथ। वार्ताकार हैं अवध किशोर सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। आइए सुनते हैं।
1: साथियों, नई उड़ान कार्यक्रम में हम अनेक प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको लाते हैं और अलग अलग सेगमेंट में हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। और नई उड़ान कार्यक्रम का एक ही मकसद है, समग्र विकास। और समग्र विकास के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें सरकार की योजनाओं से ही केवल विकास हो या जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक है। समग्र विकास का मतलब है कि आपका चौमुखी विकास हो और इसके लिए आपका मानसिक विकास, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपका बौद्धिक विकास और नैतिकता, ये सारी चीजें जब आपके सामने होंगी तभी आप समग्र विकास कर सकते हैं। और जब आपका मानवचित्त जो है प्रसन्न होगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा, तभी आप देश के विकास में योगदान दे सकते हैं और हमारा जो विकसित भारत का सपना है पूरा कर सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी श्रृंखला में श्री अवध किशोर सिंह जी हैं, जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं आप, और इन्होंने अध्यात्म के माध्यम से, शांति के माध्यम से विकास किस तरीके से किया जा सकता है और समाज में और हमारे विकास में किस तरीके से शांति की जरूरत है और शांति से विकास की कल्पना कैसे की गई, इसका मूल मंत्र क्या है, इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सिंह साहब, आपका नमस्कार है, आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे कि लोग ये कहते हैं कि विकास के लिए पैसा चाहिए और पैसा प्राप्त करने के लिए शिक्षा चाहिए केवल, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ लीजिए, अच्छी डिग्री ले लीजिए और नौकरी कर लीजिए और पैसा मिले तो विकास हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या यही विकास है कि कुछ और परिभाषा है?
2: विकास का मूल मंत्र है विश्वास, क्योंकि ये संसार विश्वास पर ही टिका है। विश्वास, विश्वास नहीं तो विष। अगर हमारा समाज से विश्वास हट जाए तो हमारे लिए संसार विष के समान हो जाएगा,
1: जहर के समान हो गया।
2: हाँ, जैसे और हमारी सरकार भी रुपए पर ये गारंटी देती है, विश्वास देती है कि मैं धारक को इतना अमाउंट इतना में दूंगा, उसी विश्वास के बल पर ये हमारा जो है अर्थव्यवस्था चल रही है। समाज में भी हम एक दूसरे पर विश्वास देते और लेते हैं, उस विश्वास की अवधारणा हमारे यहाँ ईश्वर से भी रखी गई। विश्वास से मतलब हमारे समाज में प्राचीन काल से ही ईश्वर में विश्वास। ईश्वर जो है वो हमारा स्वर, गीता में भी कहा गया है ईश्वर स्वरभूतेषु हृदये तिष्ठति, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो ईश्वर हमारे ही पास है, हमारे हृदय में, लेकिन 2 मिनट भी उस ईश्वर के पास ठहर नहीं पाते हैं जी। और जिस दिन हम 2 मिनट भी ठहरने लगेंगे उस दिन हमको शांति प्राप्त होने लगेगी। और एक दूसरे मनुष्य के प्रति, क्योंकि हम प्राणी हैं और प्राण ही है मुख्य, यदि हमारे माँ में हमारे बाप में प्राण न होता है तो उनको ले जाकर हम जला देते हैं
1: जी।
2: और प्राण ही हमारा बंधु बांधव है
1: जी। जी,
2: प्राण के नाते सारे नाते हैं, इस विश्व के जितने भी संबंध हैं उस प्राण के नाते हैं
1: जी। जी,
2: और उसी से हम प्राणी कहलाते हैं। मानवता का मूल, जब तक इस पृथ्वी पर मानवता की स्थापना नहीं होगी हम मनुष्य ही नहीं बन पाए। कहने के तो हम हैं मनुष्य, हम अपने को कहते हैं, लेकिन मानवता नहीं हमारे अंदर है, हमारे समाज से मानवता
1: तो, जैसे कि आप ये कहते हैं हमेशा हर जगह, इस समग्र मानव विकास का मूल जो मंत्र है वो शांति पथ है। आपके कहने का आशय ये है कि जब तक शांति का रास्ता हम नहीं अपनाएंगे और हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं, आर्थिक विकास भी नहीं कर पाएंगे और मानसिक विकास भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए केवल एक ही मार्ग है, शांति। इसको थोड़ा समझाएं हमारे युवाओं को खासतौर से।
2: शांति तभी आएगा जब हम कुछ समय कर, अभी जो मैं कहा कि ईश्वर, ईश्वर जो ईश्वर जो हमारा चल रहा है अभी अभी, ईश्वर पर जब हम 2 मिनट भी रुकते हैं या उस पर ध्यान देते हैं, वो रुके न रुके देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हम वर्तमान में हो जाते हैं। और वर्तमान में होने से हमको शांति प्राप्त होती है। हम या तो भूत में जीते हैं या तो भविष्य में, हमेशा चिंतन करते हैं। तो ईश्वर की पूजा की अवधारणा हर धर्म में यही दिया गया कि भाई तुम ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर माने अपने आप पर विश्वास करो।
1: ईश्वर मतलब अपने आप,
2: अपने आप पर विश्वास करो। अपने पर जब तुम विश्वास करोगे और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही तुम दूसरों के साथ अनुभव करोगे। यदि तुम्हें कोई मारता है, कष्ट होता है, तो तुम दूसरे को मारते हो तो उसको भी कष्ट होगा। प्रकारांतर में हम जब दूसरे का अहित करते हैं तो हमारा ही अहित होता है
1: जी।
2: युवाओं को

0: ये जानना चाहिए आज कि अगर हम कोई को मार रहे हैं या कष्ट दे रहे हैं तो हम भी उसी चेतना को, परम चेतना जो सर्वव्यापक है, हम सभी उसी परम चेतना से आबद्ध हैं, परम चेतना का एक अंश हैं। और एक भी जैसे समुद्र में या कहीं पानी में एक कण अगर फेंकते हैं तो पूरा तरंगे जो है फैल जाती हैं। हम अगर किसी व्यक्ति को कष्ट देते हैं तो फिर वो लौट कर मैं, क्योंकि मैं भी उसी तरंग का एक हिस्सा हूँ।
1: तो अब सिंह साहब एक सवाल यहाँ उठता है कि हर आदमी इतना ज्ञानी नहीं है, तो अगर आपने कहा कि अपने विश्वास कीजिए और हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, हम गलत रास्ते पर हैं, और अपने विश्वास में अगर करते हैं कि हम ही सही हैं, तो इसके बारे में अंतर्द्वंद है, ये कैसे?
0: उसका अंतर्द्वंद ये है कि उसी निमित्त या ईश्वर की उपासना की धारणा हमारे समाज में दिया गया। जब आप ईश्वर की अवधारणा से 2 मिनट 1 मिनट 4 मिनट जब अपने प्राण पर स्थिर होंगे, क्योंकि जब आप केवल सोच रहे हैं तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, जब आपका सोचना कुछ देर के लिए ठहरेगा तो अच्छे भाव भी आपके मन में पैदा हो सकते हैं।
1: क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ सोचिए नहीं, शून्य में जाइए, ये कहना चाह रहे हैं?
0: शून्य में मतलब सब शून्य शब्द कहिए, या हम उसको ईश्वर शून्य भी है, वो तो शून्य तो महाविराट है, लेकिन शून्य हमारे ईश्वर, ये जो स्वर हमारा जो प्राण वायु है, इस प्राण वायु को हम सर्वत्र जब अनुभव करते हैं, हर प्राणी में अनुभव करते हैं, तो उसके प्रति हमारे अंदर दया, मैत्री और करुणा पैदा होता है। किसी प्राणी को दुखी देखकर हम तभी दुखी होते हैं जब हम जानते हैं कि वो भी प्राणी, मैं भी प्राणी।
1: बिल्कुल,
0: मनुष्य की एक ही जाति है,
1: कोई धर्म कोई जाति और नहीं,
0: कोई
1: है
0: मनुष्य
1: की एक ही जाति,
0: मनुष्य की एक ही जाति है मनुष्य। जैसे हम लोग कहते हैं पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, ये सब है ना, तो पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनकी एक ही जाति है, उनकी अन्य अन्य जातियां हैं नहीं। और जो कष्ट, वो कहीं का आदमी हो, किसी देश का आदमी हो, यदि उसको गाली दिया जाएगा, मारा जाएगा, तो कष्ट उसको होगा, और वो कष्ट प्रकारांतर में लौट के मेरे पास भी आएगा, मुझे भी कोई मारेगा। कहा नहीं गया हमारे यहाँ कि भाई तुम किसी को जो दोगे कहीं ना कहीं से रिबाउंड तुम्हारे पास आएगा,
1: एक्शन का रिएक्शन होगा।
0: हमारे यहाँ इसीलिए हम लोग याद है कि लोग दान करते थे कि हम देंगे तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा, ये हमारी प्राचीन काल की अवधारणा रही है। उसी तरह से यदि हम गुनाह करते हैं तो वो गुनाह भी मेरे पास लौट कर निश्चित आएगा, जिस रूप में भी आवे।
1: तो आप ये कह रहे हैं कि शांति पथ ही जो है सभी चीजों का एक मूल है, तो शांति पथ की स्थापना या शांति पथ पर चलना यही सबसे बड़ा त्याग और चैलेंज है, इसको कैसे?
0: शांति पथ पर चलने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा, तभी होगा। पहला तो प्राण की उपासना, प्राण की उपासना जिसको हम ईश्वर की उपासना भी कहते हैं, और जिसको हम हमारी विश्वास, किसी भी बाह्य रूप से भी हम प्राण की, जो हम देवी देवता को पूजते हैं, वस्तुतः वहाँ प्राण की स्थापना करते हैं,
1: प्राण की स्थापना,
0: और तब उनको स्थापित करके हम पूजते हैं, तो प्राण की उपासना बाह्य रूप से है। और वही जब हम अपने प्राण की, ईश्वर की जब उपासना करते हैं तो हम वास्तविक अर्थ में पहुँचते हैं कि ये जो है हमारा असली रूप है, और जब हम अपने में उसको पाते हैं तो आप में भी पाते हैं, तो हमारी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाएं जो समाज में फैल रही हैं, वो स्वतः धीरे धीरे कम, ये एक दिन की चीज नहीं है
1: जी, ये सतत
0: इस पर अगर चला जाएगा तो धीरे धीरे ये, और ये हर एक इंसान के लिए ये मूल्यवान है।
1: तो आपका कहने का अर्थ जो समझ पा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि जो आपको अप्रिय लगती है, अगर यही सोचते हैं दूसरों को भी लगेगी तो शायद आपका व्यवहार बदल जाएगा, ये कहना चाहिए?
0: ये सत्य है कि हमें जो अप्रिय लगती है वो दूसरे को भी अप्रिय होगी, निश्चित है। हम जिसे गाली हमको नहीं अच्छा लगता, वैसे दूसरे को नहीं अच्छा लगता है,
1: तो ये तो चैलेंज है बहुत बड़ा, मानव स्वभाव के विपरीत है। तो वो तो जो सोचता है कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है,
0: असल में यही तो प्राचीन काल से यात्रा 84 लाख योनियों की जो हमारे यहाँ अवधारणा है वो इसी पर है कि भिन्न भिन्न आयामों से गुजरते गुजरते हम जहाँ आए हैं, अभी उनके भी कुछ गुण धर्म हमारे में विराजमान होते हैं
1: जी।
0: मानव तन पाने के बाद धीरे धीरे उन सारे चीजों को हटा के अतवम पूर्णता की तरफ बनते हैं। मानव ही तो ईश्वर होता है ना
1: जी,
0: भगवान की जो अवधारणा हमारे यहाँ हुई है वो सभी मनुष्य हैं।
1: बिल्कुल,
0: पूरे पृथ्वी पर जो भी अवधारणा अब तक हुई है, चाहे हमारे देश में या कहीं भी, मनुष्य के रूप में ही उसकी अवधारणा हुई है। मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर।

0: सौर मंडल का कहिए या भूमंडल का,
1: ब्रह्मांड का, बिल्कुल
0: ब्रह्मांड का सबसे जो मूल है मानव तन है। मानव तन में ही आके हमको उस प्राण का अनुभव होता है, अन्य योनियों में वो प्राण का अनुभव नहीं कर पाते।
1: अब सबसे बड़ी समस्या ये तो एक बहुत बड़ी गूढ़ बात भी हो गई और एक हिसाब से बड़ा आसान भी है, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। वो पूजा में जाएगा, जल चढ़ाएगा, पूजा भी करेगा, कोई समस्या नहीं है, प्रवचन भी सुनेगा, साधु महात्मा के यहाँ भी जाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसके विकास का जो पैमाना ये है, अर्थतंत्र मजबूत होना चाहिए, पैसा किसी तरीके से प्राप्त किया जाए, चाहे सही रास्ते से गलत रास्ते से, और जब पैसा आएगा तो हर चीजें हमें उपलब्ध हो जाएंगी और फिर शांति का रास्ता उससे निकलेगा। ये कहाँ तक उचित है और यह उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: बता रहा हूँ, अब यहाँ बहुत ऊंची बात है कि जितना भी अब तक इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, तमाम राजा महाराजा चक्रवर्ती आए, तमाम चीजें आई, भौतिक कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, क्षणिक है वो। इसकी अवधारणा क्या, इसको हमको अनुभव करना होगा। हमारा शरीर भी अस्थाई नहीं है, हम पैदा होते हैं तब से लेकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, परिवर्तन से होते होते आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो भौतिक चीज कोई अस्थाई नहीं है, अस्थाई एक ही चीज है, आत्मा, प्राण। वो प्राण कभी मरता नहीं, वो एटम है ना, विनष्ट हो ही नहीं सकता है,
1: नहीं हो सकता।
0: अभी मैं कहा कि 2 मिनट 1 मिनट 4 मिनट जिसके पास जो समय, कोई भी स्त्री पुरुष अगर वो शांत होकर के केवल अपनी सांस को, जिसको ईश्वर, गीता हम लोग पढ़ते हैं, मार प्रवचन हो रहा है गीता पर, ये कहा होगा, अरे मूल चीज पकड़ो कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदये तिष्ठति, सब गीता छोड़ दीजिए, एक ही वाक्य को पकड़ लीजिए, तुम्हारे अंदर ही वो, चाहे उनको तुम राधा कहो, कृष्ण कहो, जो भी संज्ञा दो, वो तुम्हारे हृदय में है। और जब तुम उस ईश्वर की उपासना करते हो तो सबकी उपासना हो जाती है।
1: इसीलिए कहते हैं कि अपने को पहचानो।
0: जब तक मनुष्य अपने को नहीं जानेगा तब तक उसका सारा ज्ञान अधूरा है, कुछ नहीं जानता है वो, जो जानता है वो तो सब फालतू है, ये आज है ना, नहीं रहेगा। आज के 25-50-100 वर्ष पहले आकाशवाणी थी, लेकिन ये आकाशवाणी थी, ऋषि लोग शांत चित्त से अपने विचारों को संप्रेषित करते थे।
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा बहुत अनुभव है इसका, कि जब कहीं आप अपने भावों को शांत होकर के भेजते हैं,
1: उसका प्रभाव अलग है।
0: कालिदास ने उसमें लिखा है, जो अलकापुरी है, जहाँ की अप्सराएं या उनकी औरतें जो मेघ दूतम में मेघ को दूत बना करके वो अपने संप्रेषण का माध्यम से दे रही है, उसमें ये नहीं था, लेकिन वो था हमारे। तो ये सारी तरंगे पहले से थी, कोई नई नहीं है, हमने इसको खोजा है, और हमको मूल पर जब हम पहुंचेंगे तभी आनंद की प्राप्ति होगी और तब सारा काम हमारा हो जाएगा, हमारी भौतिक आवश्यकताएं बहुत कम हो जाएंगी। देखिए, भौतिक आवश्यकताओं का कोई अंत तो है नहीं।
1: तो हमारे युवाओं से आप चलते चलते क्या मंत्र देना चाहेंगे?
0: हम ये चाहेंगे,
1: भागम भाग दौड़ अशांत मन उसका,
0: हम
1: इस तरीके से
0: ये हम जरूर कहेंगे कि 2 मिनट वो अपने पास ठहरने की कोशिश करें, ऑफिस में है, कहीं भी बैठे हैं, अपने प्राण के प्रति वो 2 मिनट के लिए सचेत हो जाए, उस प्राणमयी भगवती, जिसको वो दुर्गा काली चंडी या जो भी कहते हैं, उस प्राणमयी भगवती उस प्राण में ही वास करती हैं। और जब हम उस प्राण में 2 मिनट भी बैठेंगे, केवल अपने सांस को 2-4 मिनट भी अगर हम देखेंगे, और यदि थोड़ा सा ठहराव हो जाए, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, उससे होता है कि हम इस पूरे इससे हम कट जाते हैं, क्योंकि प्राण वायु से ही हमारा सारा संबंध है। ये जिस दिन ये कट जाता है तो पूरा संसार समाप्त हो
1: जाता है। बात से थोड़ा दूर हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये कहना चाह रहे हैं कि अपने को पहचाने,
0: अपने में जब आ
1: और
0: जाएंगे।
1: कोई भी कार्य करें, अगर विकास तभी होगा जब शांति के लिए आप कार्य करेंगे।
0: बिल्कुल, शांत चित्त से ही तो आप, अशांत चित्त तो कहा गया कि उसका मन हमेशा भटकता है।
1: युद्ध से कभी भी शांति नहीं आई है,
0: युद्ध से तो कभी आई नहीं सकती, कभी ना आई है न कभी होगा, ये असंभव।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने इस कार्यक्रम में आज हम उस बात की बात कर रहे हैं जो हमारे समग्र विकास के लिए जरूरी है, और शांत की स्थापना के लिए अपने को पहचाना जाए, यही किशोर जी का कहना था। और आप अपने विचारों से हमें अवगत कराइएगा जरूर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, समग्र मानव विकास का मूल मंत्र शांति पथ। वार्ताकार थे अवध किशोर सिंह जी और भेंट करता थे डॉक्टर उमा शंकर सिंह। अब आइए जल्दी से आपको बताते हैं आज के विकास समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मानसिक मंदित्व निराश्रित दिव्यांगजन के लिए बड़ी राहत दे

0: हुए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों की भरण पोषण अनुदान राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे दिव्यांग पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें पौष्टिक भोजन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। गुरुवार को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में नियमित रूप से दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जिसमें आम की 800 दुर्लभ प्रजातियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के 900 से अधिक बागवान भाग लेंगे, जिससे उत्पादकों को नए बाजार और निर्यात के अवसर मिलेंगे। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों की 800 प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच 4 जुलाई को जनभवन में आम के क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिससे उत्पादकों को नए बाजार और निर्यात के अवसर मिलेंगे। तो अच्छा, तो अब हम चले? नहीं, ये गीत है, तो चलिए पहले गीत सुनते हैं, फिर चलेंगे।
1: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:15 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना। आज की पहली सूचना है ज्योति बिंद की। धर्मराज हमें सूचित करते हैं कि ज्योति बिंद की उम्र 15 वर्ष है, इनका कद 5 फिट है, इनका रंग गोरा है और इनका शारीरिक बनावट सामान्य किस्म की है।

0: ये 18 अप्रैल सन 2026 से पूरे दीवान मठिया थाना गोपीगंज जनपद भदोही से कहीं लापता हैं। जब ये लापता हुई थीं तब इन्होंने जीन्स टॉप पहन रखी थी। इनके विषय में यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संबंधित व्यक्ति के विषय में सूचित करें। 8853389020 यानी 8853389020। इसके अलावा चौकी प्रभारी गोपीगंज, यहाँ भी आप संबंधित विलुप्त व्यक्ति के विषय में सूचित कर सकते हैं। कृपया नोट कर लें, 8080033315 यानी 8080033315। प्रदीप कुमार विश्वकर्मा सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री अंशिका 20 मई सन 2026 से रात के 11:30 से ग्राम नवधन थाना भदोही से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 16 वर्ष है। इनका कद 4 फीट 8 इंच है। इनका रंग गोरा है और इनका चेहरा गोल है। इनकी शारीरिक बनावट औसत किस्म की है। जब ये लापता हुई थी तब इन्होंने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। इनके विषय में यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। ग्राम नवधन थाना अर्चय जनपद भदोही। मिथिलेश हमें सूचित करते हैं कि प्रियांशु यादव, जिनकी उम्र 17 वर्ष है, वे 13 मई सन 2026 से दिन में 3 बजे से उमापुर से कहीं लापता हैं। इनका रंग आपको बता दें सांवला है। इनकी शारीरिक बनावट दोहरे किस्म की है। इनका चेहरा गोल है और इनके बालों का रंग काला है। जब ये लापता हुए थे तब इन्होंने पैंट और शर्ट पहन रखे थे। इनके विषय में यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया थाना औराई जनपद भदोही संपर्क करें। खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522453020707 0522453020707।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हो गए हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशी अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्तादित्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता। विदेश मंत्रालयेन सामाजिक संजालीय तंत्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीय सेना क्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95,500+ संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तंत्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कनाडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलं आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजिस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलं स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: ओम प्रकाश भैया।
0: हाँ राजेश भैया,
1: देखो कत्ता मौसम अच्छा है इस समय।
0: बिल्कुल भैया, मौसम अच्छा है, इतनी तेज गर्मी पड़त रहा है भैया, एकदम आई सुमस हो, कुछ कहे नहीं। और कहूँ ऐसे जोन गर्मी होत रहा है वही मैं भैया बाहर निकल जाओ तो आइस लागे एकदम तवागिन है।
1: बिल्कुल भैया सही।
0: तो भैया जब देखो अब दो तीन दिन ते आइस करिया करिया बादल उठत है और झमाझम बरसो लागत है तो मौसम बड़ा नीक हो गया है भैया।
1: बिल्कुल भैया मौसम नीक हो गया है, कैसे

0: चारों तरफ पहले तो जैसे पेड़ पौधे रहे कोई मारे मुरझाए मुरझाए नजर रहे और अब अत्ते टाइम हरियर हरियर नजर आवे लगे हैं। हाँ। तो हरियर हरियर जब भाई आवा जब कोई चीज की अच्छी मतलब की कमी अगर ना ही होते कि पूर्ति हो जा रही तब और अच्छा।
1: हाँ भैया कमी पूर्ति हो जाता है, लेकिन देखो मौसम बदला है और जब मौसम बदलत है तो तना तना के भैया बीमारी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो बर्खा बूंदी हो रही है तो भैया कहूँ कहूँ का होते पानी भर जाते, और जब पानी भैया भर जाते तो बहुत तना के जो अंडा बच्चा दे वाले जैसे मसे हैं और जो छुआ छुआ ढूंगा होते हैं वे सब अंडा बच्चा देते हैं और वही के साथ साथ भैया बीमारी लेके आओ।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से तमाम तरह के मतलब कि कीट पतंगा इधर उधर इस समय काहे बारिश के बाद में घूमे लागत हैं, तो उनसे भी हमका मतलब अपन ख्याल रखे के और अपने आसपास के जो चीज़ें हैं अगर कुछ लगत है मतलब कि पानी यानी जहाँ भरा है वहाँ पे गड्ढा अगर है तो माटी डाल दो तो और बढ़िया रहा।
1: हाँ भैया गड्ढा डा बराबर करे रहो, काहे तरह ये सब जौन देखो ये सब हैं मसा हुआ चाहे भुनका है ये सब भैया जौन पानी भरा होते वही में अपन अंडा और बच्चा सब देते हैं, तो जब गड्ढा भर दो तो भैया पानी भरवे नहीं करी है और
0: है।
1: जो है भैया यह सब कोई समस्या नहीं हुई। वही के साथ साथ भैया देखो अपने आसपास साफ सफाई रखे के,
0: बिल्कुल भैया
1: साफ सफाई रखे हो तब वो भैया बीमार नहीं पड़ी हो। और देखो बीमारी एक कारण यह होते कि भैया जौन है पोषण की कमी हो जाते,
0: बिल्कुल भैया सही कहो,
1: और जब भैया पोषण की कमी हो जाते तो मन ही हो जाते बीमार।
0: बिल्कुल यानी कि मन ही बीमार हो जाता है या फिर मतलब शुरुआत में जो चीज की कमी रही तो इतने कुपोषित भी हो जाते भैया।
1: हाँ तो भैया यह चीज़ है, लेकिन देखो हर मने ये स्वाचत है कि भैया हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, हम हूँ स्वस्थ रही सुरक्षित रही, लेकिन बहुत जुगत लगाओ बाद्यो तना तना की चीज़ें खावत है, लेकिन भैया कबो कबो होत का है कि कुछ ऐसे समस्या हो जाती हैं है कि भैया हाँ आर्थिक तंगी जेब भैया
0: जेब मजबूत
1: नहीं
0: भाई
1: मजबूत
0: तो
1: है
0: बहुत
1: तो भैया जो है नहीं पोषण पूर्ति हो पावत है। लेकिन भैया देखो है क्या कि जब अपनी ती पूर्ति नहीं हो पावत है तो देखो जो अपन सरकार हुए वह भैया अपन बहुत ध्यान रखत है।
0: बिल्कुल भैया, तो यही लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे कार्यक्रम चलाओ थे।
1: हाँ राष्ट्रीय पोषण मिशन देखो अभियान चलाया सुबह के तहत कहा है कि देखो बहुत तना तरह अपन सहायता करते हैं कि जैसे बहुत जब गर्भवती महिला होती हैं तो उनका सबसे ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: भैया सही कहो, काहे से तभी अपने बच्चे का जो पोषण अच्छे से मिली है जब मतलब कि जो माताएं हैं वो अच्छे से खान पान अपना ध्यान रखें तब भैया। बिल्कुल
1: और देखो अपने गाँव में भैया आग बहुत तुम्हों सुना हुई हो भैया अपन पंचों भाई जानत हैं कि बताइए भैया इनके खून की कमी हुई है हैं। और भैया देखो बहुत जने क्या करते हैं पूछो तो काहे भैया टिकिया खा रहे हो गोली खा रहे हो तो
0: अच्छा, वो
1: बताइए
0: अंग्रेजी में बात कर रहे हैं आयरन की गोली बात कर रहे हैं।
1: तो कहिए भैया गोली खा रहे हैं खून बढ़ावे वाली, तो फिर अपनी बैठक में भैया सुना करे तो बताइए नहीं कि वह भैया आयरन वाली जो है वह दवा खा रहे हैं। तो देखो अपन सरकार जो है इतनी नीचे तना तरह सहायता करते है कि भैया जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है उसके तहत जो भैया अभी गोली है फ्री मिल जाती है भैया है, तो जेब पर वही क्यारो को प्रभाव नहीं पड़ते हैं।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से प्रभाव जब ना पड़े तो इसके लिए अपन खान पान चाहे देखो जो आंगनवाड़ी वाली बहनी रहती हैं वो पूरा पोषण देती हैं कि मतलब कि माँ अच्छे तरीके से उसका खाए के अपने बच्चे का पोषण अच्छे से मिल सके और फिर साथ में बच्चा को भी पोषण दिन जाते भैया तो जैसे उनका और अच्छा पोषण मिल सके।
1: हाँ और भैया देखो वह दलिया तो भूल ही गए भैया वह देखो दलिया पैकेटें मिलती हैं वही तेरो जो उन पोषण हवे वो सब सुरक्षित रहा थे। अब तना तना के भैया देखो अब और हमहू पंचन के देखो सरकार सहायता करते थे कौनो कार्यक्रम चलावत है कौनो योजना चलावत है सबसे जरूरी तब वह योजना सफल होते जब भैया अपनी तरफ से जागरूक रही हो। अब यूँ नहीं है भैया कि जाके जो है सरकार के भरोसे रही कि भैया जब टकिया मिली या जो वह दलिया मिली तब वे अपने घर इतन खवैबे या जो है घर वाले खवैबे, लेकिन भैया देखो अपनी तरफ तेरे भैया प्रयास करो कि ऐसी चीज़ें खवावा जाए और ऐसी चीज़ें का सेवन किया जाए कि जो है भैया कौन उतना तेरे पोषण की कमी ना हो।
0: बिल्कुल भैया सही कहे हो, काहे से अपन जो दोपहर में कार्यक्रम नहीं आवे थे नीना बहनी बतूती वही मैं भी बहुत अच्छी चीज़ें बताओ करती हैं, उससे भी अपन बैठकी से मतलब कि कहा जाए आकाशवाणी को उद्देश्य रहा था कि अच्छे से अच्छे जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से अपने पंचन की जानकारी मिल सके और उनसे बढ़िया से उनका फायदा ले सके।
1: हाँ तो भैया देखो फायदा तो तबहु मिलत है, देखो अकेले कौनो काम करियो भैया देखो अकेले काम करत करत मन ही हो चाहे जो को हो भैया अकेले बहुत बड़ा काम नहीं हो पावत है। तो हम पंचे कहा करे थन कि भैया जैसे अब अपने घर में है तो घर में ये सोचे थन कि जितने मनाई हैं अगर कह दे तेरे काम कर दे हैं भैया
0: तो
1: चाहे वो चाहे घर क्या काम हो चाहे क्या तक काम हो कौनो काम धंधा हो अगर सब जने मिल के करो तो वो पता ही नहीं चले थे कितनी जल्दी हो जाते।
0: बिल्कुल।

0: भैया सही कहो, कहे से कहा जाए कि एकता में संगठन जब होते है तब ही अच्छा रहते है, और तब अपन जो कहा जाए घर परिवार के काम है उनका अच्छे से किया जा सकता। और यही तरीके से कहा जाता है स्वयं सहायता समूह बनाए के, मतलब कि 6-7 लोग से बढ़ के 50 लोगों का भी अपन एक ग्रुप मतलब समूह बनाए के, तो वही ते भी अपन जो जिसमें जो बहनी है वो भी अच्छे से बढ़िया से मतलब इसका लाभ ले रही हैं और लोगों का जागरूक भी कर रही हैं भैया।
1: सही करो भैया। देखो राजेश भैया है का कि पहले देखो अपने यहाँ जोन घरे दिन लोग रहें या अपने घर के जोन माताएं बहनें रहें वे का करते रहें, कोशिश करते रहें कि भैया 10-20-50 रुपया जोन है वो भैया कहूँ लुकवाए देते रहें या बड़ा कोशिश करते रहें कि भैया का कहूँ बचाए कहीं रख लिन जाए, तो हो ही नहीं पावत रहे। लेकिन देखो अब का है कि जो है समूह बनाए के रे अपनी माता बहनें आए वे का करती हैं भैया पैसा जो है इकट्ठा करती हैं, और वही के साथ साथ भैया अब तो ब्याजों मिल बढ़िया पैसा मिल जाते हैं बड़े आसान ब्याज पर यहाँ आए, तो वो जो इकट्ठा पैसा मिलत है वो भैया अपने काम काज में लगा सकते हो। आए वही तो जो अपन काम फंसा है काम धंधा में लगा दो, कोनो चीज़ जो तुमका भैया फंस रही है वह ले सकते हो।
0: बिल्कुल भैया, यानी कि कौनों की अगर कमी लग रही कुछ चीज़ अपना वही का पूर्ति जो पैसा जमा कर रखे हो इतने अच्छा लाभ ले सको तो खरीद सको तो बहुत भैया जरूरी हो
1: तो
0: जाता।
1: ये सब चीज़ें देखो अपने गांव में बदलाव हो रहे हैं। अभी देखो अपने यहाँ अम्मा ना ये भैया वो जो धोती रहा है वही के खोटे मैया जो है रुपया बांधा करती रहे हैं, तो वे सब चीज़ें वैसे धीरे धीरे इकट्ठा करती रहें। लेकिन अब देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तेरे अपने गांव में कितना बदलाव हो गया है, जो अपनी महतारी बहनी है वे कितना ज़्यादा सशक्त हो गई हैं, और वही के साथ साथ कहा करें कि वे अपन जो है दशा बदल ली ने
0: बिल्कुल
1: है।
0: भैया,
1: तो भैया आज देखो वार्ता लेके आए हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से गांव में बदलाव, ऐके वार्ताकार हैं संतोष कुमार मिश्र भैया, तो आप सुना जाए पंचो भाई सुने और जानकारी लें।
0: बिल्कुल भैया।
2: विकसित भारत में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब कई योजनाओं पर काम कर रही है। NRLM योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया है। आज महिलाएं कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी मिटाने और विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित कर उन्हें स्थायी रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित और वित्त पोषित है। घर बैठे महिलाओं के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जिन्हें वे अपनी सुविधा अनुसार और कौशल के अनुसार चुन सकती हैं। इससे पारंपरिक व्यवसायों से अलग महिलाओं को उद्यमी बनाकर गाँव में बड़े बदलाव की नींव खड़ी कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने गाँव की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। इसके प्रभाव से गाँव में महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है, वे स्वरोजगार की ओर बढ़ी हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही उनके आत्मविश्वास में भारी वृद्धि हुई है। पहले ग्रामीण महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, लेकिन अब वे घरों से बाहर निकलकर बैठकों का संचालन करती हैं, बैठकों के साथ लेन देन करती हैं और अपने गांव के विकास में निर्णय लेती हैं। गांव में साहूकारों ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेने की मजबूरी कम हुई है। स्वयं सहायता समूहों को सीधे बैंकों से जोड़कर बहुत कम ब्याज पर रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा बैंक सखी घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं। ग्रामीण महिलाएं अब केवल पारंपरिक काम जैसे पापड़ आचार तक ही सीमित नहीं हैं। मिशन के तहत उन्हें कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, डिजिटल उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम के माध्यम से गांव में ही छोटी दुकानें और व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। समूहों के माध्यम से महिलाओं को जागरूकता बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्वच्छता अभियान, पोषण मिशन और बीमा योजनाओं जैसी अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में आसानी हो रही है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत विश्व बैंक के सहयोग से एक प्रमुख योजना के रूप में लॉन्च की गई थी, जो भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से संगठित करके उन्हें निरंतर कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर अस्थायी आजीविका और रोजगार से जोड़ना है। आज विकसित भारत में

0: महिलाएं कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। सरकार का लक्ष्य केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत लाखों महिलाओं को रोजगार देने का अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज महिलाओं के आत्मनिर्भर का सशक्त माध्यम बन चुका है। इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के द्वारा रोजगार से जोड़ा जाता है और उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाती है। यही वजह है कि आज प्रदेश में लाखों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। अब वह पारंपरिक रोजगार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीकी के जरिए अपनी आय बढ़ा रही हैं। ये मॉडल दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बना है। आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें लगभग 1 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर वित्तीय स्वतंत्रता, रोजगार और लखपत दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग बनाया जा रहा है, जिससे पलायन रुका है और स्थानीय स्तर पर नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से ग्रामीण लोगों को रोजगार और उसके अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सहायता भी दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिले में NRLM के तहत महिलाओं को लखपत दीदी बनाने के लिए विशेष रूप से चिन्हांकन और प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन विकसित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की जाती है। इसके अलावा बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी के माध्यम से महिलाओं की आय के अवसर दिए जा रहे हैं। एक समूह में आमतौर पर 10 से 20 महिलाएं होती हैं। समूह को शुरुआती खर्चों के लिए सीधे 10,000 से 15,000 रुपए तक का फंड दिया जाता है। समूह को अपनी आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बैंकों से बहुत कम ब्याज दर पर 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को सिलाई, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। त्योहारों और विशेष मौकों पर उन्नाव की महिला समूहों द्वारा गाय के गोबर से दिए और अन्य स्थानीय उत्पाद बनाकर बिक्री के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की गई है। जिले में अब तक 16,000 से अधिक समूहों का गठन करके अब तक 2 लाख से अधिक परिवार इससे जुड़ चुके हैं। विकासखंड नवाबगंज में प्राकृतिक खादी पेंट, विकासखंड सुमेरपुर में गोबर के लट्ठे, सेनेटरी पैड, आचार व पापड़ बनाने के लिए कई समूहों के अंतर्गत सैकड़ों महिलाएं कार्यरत हैं। इसी प्रकार तोड़न, दिया, मोमबत्ती, कैरी बैग, जरी, जरदोदी, फिनाइल, हैंडवाश, सिल्क उत्पाद, होली पर्व हेतु हर्बल गुलाल आदि बनाने में विभिन्न समूहों के द्वारा सैकड़ों महिलाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा विद्युत सखी, VC सखी के रूप में हजारों महिलाएं समूहों के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। यदि इसी तरह ग्रामीण महिलाएं समूहों के द्वारा रोजगार परक योजनाओं को अपनाएंगी तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारी गांव की महिलाएं और बेटियां अच्छा मुनाफा कमाकर घर व परिवार के खुशियां मनाएंगी और स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगी।
1: ओम प्रकाश भैया।
2: हाँ राजेश भैया,
1: देखो कितनी नीक जानकारी रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से गाँव में बदलाव, जिसका जो जानकारी दे रहे ना भैया वो संतोष कुमार मिश्र भैया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो इतने टाइम अपन कहा जाते हैं कि खेती पाती में काम चल ही रहा है बहुत।
2: हाँ खेती पाती में तो राजेश भैया देखो काम चल ही रहा है, और ई बेरा देखो तो जब तक पानी गिरा है तो भैया ऐसे धान लगौनी चल रही, कुछ कहे नहीं। और तुम पूछो भैया का हमका सत्य निकलागत है,
1: कहा निकलागत है
2: अब बताई का भैया। देखो जब धान के लिवारा, धान वाले ख्यात के लिवारा भैया चलत है, रोटावेटर आए और वही माँ जब भैया लिवारा मैया धान लागत हैं, वही के साथ साथ जब भैया गौनई गाती हैं, चाची हो रही हैं।
1: अरे कुछ पूछो ना अभी, देखो कल ही की बात बताए, अपने गाँव ही गए, हमारे प्रवीण भैया हैं, उनके घर गए थे नन्नू,

0: वही तगड़े से लेवारा ले रही रहे हैं, तो भैया ऐसे ना लो कि दूसरी चीजन का उनका मतलब नुकसान होना हो, अब फसलों पर यहाँ अपना बढ़िया अच्छा सा रौनक रहे।
1: तो भैया देखो, एक एक बांध जब लगाती हैं हैं, और हम पंचे खुद ही लगाए थे ना, तो भैया जब वही के साथ साथ जब गौनई गाय जाते है तो इतना नीक लागत है कि जैसे जैसे भैया धान लागत है और जैसे जैसे वही क्या बिरवा जो हरियर हो दे हैं, वैसे वैसे अपन समझ लो जू हरियर हो जाते हैं। तो भैया देखो, आग रोपनी गौनई लेके आया है ना, वो जो स्वर हवे वो देखो भैया श्रद्धा शुक्ला बहनी का है और उनके साथ हमें, और ये देखो मुस्कान तिवारी बहनी है,
0: बिल्कुल
1: और भैया देखो गाय रही है, तो आओ सुना जाए, पंचो
0: बिल्कुल
1: भाई सुनाए आनंद ले।
0: बिल्कुल भैया सुना जाए।

0: ओम प्रकाश भैया।
1: हाँ जेरा डोली डोली जाए है
0: बिल्कुल भैया,
1: भैया, जब म्याड़ परियां देखो चिड़ैया फुदकत है गौरैया फुदकत है तो फिर जेरा डोली ही डोल जाते हो, और इस गौने ही जब सुनक मिल जाते हो तो भैया
0: चारों तरफ का आनंद ही आनंद है।
1: हाँ भैया जेरा डोली ही जाते। और देखो भैया अपनी खेती पाती में जब हम पंचे काम करी थन तो सबसे जरूरी हो जाते कि जब अपन खेती में भैया फसल जब बढ़िया नीक होते तब हूँ मन प्रसन्न हो जाते है। लेकिन अगर मां जो है फसल नीक नहीं होते तब मन भैया बड़ा रुष्ट हो
0: उदास हो
1: जाते हैं
0: जाते।
1: उदास हो जाते हैं। तो यू हो कब का आग ना का भैया बताई बीए जब हमारे ख्यात में यहाँ भैया गलत पड़ेगा
0: हुँ।
1: तो भैया बड़ा नुकसान होगा। तो यू लागे कि वही माँ हो कागा कि भैया देखो एक तो समय का नुकसान होगा वही के साथ साथ जो है जो खाद पानी रहे वही क्या रो नुकसान होगा।
0: और जोताई खुदाई रहा है
1: हाँ
0: भैया।
1: और रुपया पैसा गवा वही की तो बातें छोड़ दो भैया।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से इन इन सब चीज़न से हमका बचे खें, काहे से ये चीज़ें ना होगी, पता चले तो बता दिए नुकसान होएगा, लागत पड़ोसी से ले लिए रहो।
1: हाँ पड़ोसी का भैया आप देखो दद्दू रहे हैं उनके दुकान रहे हैं तो वे कहें इनकी अरे हम भैया कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो तो हम कहें बिया ले जा रहे हैं। अला इतनी दूर कहाँ जइयो यहाँ हमरे यहाँ ले लो इतने नीक नीक बिया रखे थे तो हम हो कहा इतनी दूर कहाँ जेबे तो हम लेहन तो भैया चमकत तो खूब रहा है अब ले लेहन वे का बहू देहन बढ़िया खड़ी भिंडी। लेकिन भैया भिंडी वही माँ आपको नहीं लागी
0: यानी कि भैया कहा जाए कि इन चीज़ों से हमका बचे के तो लागत कबहू जात नहीं हो, वो कहा जाते कि जैसे कृषि विश्व

0: विश्वविद्यालय ही गए या
1: हाँ।
0: कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बहुत ऐसी जो कृषि रक्षा इकाई हैं या ब्लॉक स्तर पे, वहाँ से अपन बीज खरीदे के चाहिए।
1: हाँ तो भैया कहे मतलब यह है कि जो उन्नत बीज हो वही क्या चुनाव करो, जो बिया हो बिसार हो वही का बढ़िया तरह चुनाव करे है कि नीक बिया हो, और सबसे बड़ी चीज विश्वसनीय दुकान पर जाए का, और दुकान का भैया आसपास जो ना आपका कृषि विज्ञान केंद्र है हुमा जाओ और भैया वैज्ञानिक के सलाह लो। और सबसे जरूरी काम बताई भैया, सबसे जरूरी काम यू है कि अपन बैठ के सुनत रहो कार्यक्रम खेती किसानी। तो भैया हिमा पता चली तना तनक देखो भैया वैज्ञानिक भैया आवत हैं, विशेषज्ञ भैया आवत हैं, वे बतावत हैं कि कौन चीज इस्तेमाल करेक है, कौन दवा डारेक है, कैस बिया हो चाहिए। अरे हम बताइए आपका भैया हम सुने तो वहीमा बतावत हैं तना तनक बीज आवत भैया नीला, वहीमा बताएं कि भैया नीली पुर्ची लाग होते है,
0: नहीं बिल्कुल सही, हाँ
1: पीली पुर्ची लाग होते है। तो यूं सब भैया अपनी बैठकी तेरे पता चला, अब भैया पहले इतना नहीं जानकारी रहा
0: है भैया, कहे तब आप बताओ ना, तो हम जैसे कि जो किसान गोष्ठी होती है ना वहाँ पे भैया जावा करी थन, तो वहाँ पे जान का हुआ जो प्रमाणित बीज के बारे में बतावत रहे नीली पर्ची लागत है तो ब्लू कलर की, तो उससे भी पहचान हो जाते है कि हाँ ये भैया प्रमाणित बीज मतलब बीज है कि शुद्धता बहुत अच्छी, और भी बहुत चीजें लिखी होती हैं कि भैया उनका जांच परख के अगर बुआई करत हो तो कहा है अपन उत्पादन जो है प्रभावित ना हुई अच्छा ही, मतलब कि जो रिजल्ट कहा जाता है मतलब परिणाम जो है अच्छे भैया मिले।
1: हाँ भैया परिणाम अच्छे मिले और परिणाम देखो इतनी नीक नीक जानकारी भैया दे दिन हो तो हम हो देखो बताए अब जैसे देखो राजेश भैया हम पंचे अपने लखनऊ रही था ना,
0: अच्छा
1: तो भैया लखनऊ में कहा नहीं कि भैया दशहरी आम इतना जो है प्रसिद्ध हुआ विश्व मैया तक का है। तो बात यह है कि जैसे हम पंचे कहा जाने थन दशहरी जाने थन लखनऊ जाने था ना सफेदा चौसा लंगड़ा चर पांच तनक बस अंबिया
0: जाने था, अमरपाली है, हाँ, अल्फांसो है, बहुत ऐसी
1: भैया बस इतना जाने थन। लेकिन देखो भैया अगर बहुत ज्यादा जानकारी लेख है
0: हाँ,
1: स्वाद लेख है हाँ, तना तना कंबिया का
0: हाँ,
1: तो आज देखो 3 जुलाई है
0: हाँ, यानी आज से लेके हाँ, 5 तारीख तक
1: हाँ, आज ते भैया 5 जुलाई तक का जो है लखनऊ का जो अपन गोमती नगर हो भैया हुमन जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है हुमा पर भैया आम महोत्सव लाग है।
0: अच्छा भैया
1: उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक आम महोत्सव है वो लाग है उमा भैया जो अपन बागवान भाई हैं वे भैया बढ़िया बढ़िया किस्म क्या जो अपन आम है वो लेके आए हैं, उमा भैया वैज्ञानिक भैया मिले हैं। और देखो उमा स्वाद अगर लेख है भैया तो आप जाओ वही के साथ साथ नई नई जानकारी लेख है और का भैया
0: कुछ अच्छा की हाँ, जा सकता अपने मतलब कि जहाँ कहा जाते क्षेत्र में तो उनके बारे में भी जानकारी लेके अपने वहाँ पर भी अच्छा कर सकते हो,
1: बहुत अच्छा कह सकते हो। भैया देखो मैं वैज्ञानिक भैया मिलते हैं जानकारी देते हैं तो ये सब चीजन की जानकारी ले सकते हो। और वही के साथ देखो जब जानकारी की बात होती है तो अपन खेती मैया भैया अगर पहले तेरे हम पंचन का जानकारी हो जाए कोनो समाचार प्राप्त हो जाए कि भैया खेती में का चल रहा है का कौन नई योजना आई है का, तो भैया हम पंचन के लिए एकदम समझ लो बड़ा नीक हो जाते।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से आज के दिन जो अपन बैठकी में यानी कि शुक्रवार का जाते हैं किसान डायरी जो कृषि समाचार पर आधारित होता है।
1: हाँ भैया
0: विका आज जो आलेख हम वाचन किए हैं अभिषेक कुमार सिंह भैया और इनसे इनका जो संपादन किए हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय जी।
1: हाँ तो भैया किसान डायरी जो संपादन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया किन है तो सुना जाए पंचो भाई सुने जानकारी ले।
0: बिल्कुल भैया।
2: किसान भाइयों और बहनों नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है इस सप्ताह के कृषि समाचार। सुर्खियां, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 जुलाई से आम महोत्सव, कृषि विश्वविद्यालयों की तकनीक व नवाचार गांवों तक पहुंचे, सोलर पंप के इस्तेमाल से किसान करें पानी की बचत, दूसरे राज्य से कृषि उत्पाद लाने पर करानी होगी जियो टैगिंग, किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है खाद, किसान भाई जुलाई के मध्य तक जरूर करें रुपाई। और अब कृषि समाचार विस्तार से। आम महोत्सव में सैकड़ों विशिष्ट व दुर्लभ 800 प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह महोत्सव 5 जुलाई तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के 900 से अधिक प्रगतिशील बागवान उत्पादक और निर्यातक भाग लेंगे। प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार व कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने आम महोत्सव 2026 के बारे में बताया कि महोत्सव 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में बांटा गया है। इस महोत्सव में किसानों एवं निर्यातकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन 3 दिनों में बच्चों के लिए आम खाने और आम से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने तकनीक तुड़ाई के बाद

फल प्रबंधन, कीट व रोग नियंत्रण तथा विपणन विषयों पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य मंत्री के अनुसार प्रदेश में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 62 लाख टन आम का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 26% है। नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित FPO स्तर की कृषि चुनौतियों और संस्थागत समीक्षा बैठक में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में विकसित तकनीक व नवाचार तभी सार्थक होंगे जब उनका लाभ छोटे किसानों एवं FPO तक पहुँचे। बैठक में क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने FPO स्तर पर सामने आ रही प्रमुख चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा किया। कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा कॉन्फ्रेंस में सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर PM ओझा ने बताया कि किसान सोलर पंपों का उपयोग करके कम पानी में भी खेती का काम कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सोलर पंपों के चलने वाले स्प्रिंकलर सिस्टम पूरी तरह से कामयाब है। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किसानों को जैव ऊर्जा के लिए FPO गठित करना चाहिए, इसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सौर ऊर्जा विशेषज्ञ अविनाश तिवारी ने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई में सोलर पंप सबसे कामयाब है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की खेती सीधे बिजाई माध्यम से करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 1 किलो धान पैदा करने में 3000 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है, जबकि सीधी बुवाई से 30% कम पानी में धान की पैदावार की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी एकत्र होने की समस्या है, वहाँ के किसान बांस की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए 10 किसान मिलकर क्लस्टर भी बना सकते हैं। क्लस्टर के लिए सहकारिता विभाग में पंजीकरण कराकर ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने उत्तर प्रदेश व्हीकल मंडी टैगिंग ऐप पर वाहनों की टैगिंग की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था से अब सरकारी मंडियों में दूसरे राज्यों से या मंडियों से कृषि उत्पाद लाने के लिए अब अपने वाहनों की जियो टैगिंग करानी होगी। इसको कराने से यह पता चल सकेगा कि किसी भी मंडी में पहुंचने वाला उत्पाद कहां से लाया जा रहा है। यदि किसी कारण से माल पहुंचने में देर होती है तो उसका कारण भी पता चल सकेगा। इस व्यवस्था से एक ही स्लिप पर अधिक बार व्यापार दिखाकर चोरी को भी रोकने में सहायता मिलने की संभावना है। कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में किसानों हेतु पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने वर्तमान खरीफ सीजन में खाद की पर्याप्त उपलब्धता बताई है। विभाग द्वारा बताया गया है कि पूरे प्रदेश में खाद की समस्या नहीं है। किसान भाई खाद को लेकर परेशान न होवें। कृषि विभाग के द्वारा प्रदेश में लगभग 15.5 लाख टन यूरिया, 5.25 लाख टन DAP, 5 लाख टन NPK, 4 लाख टन SSP और 1.25 लाख टन MOP उपलब्ध की बात बताई है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल ने इमली का क्रोमोसोम तैयार कर जीनोम मानचित्र तैयार किया है। इसमें मौजूद औषधि गुणों और उपयोगी रसायनों से जुड़े जीनों की पहचान संभव हुई है। यह शोध मधुमेह, सूजन एवं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी समस्याओं से जुड़े प्राकृतिक उपचारों पर नए शोध का आधार बनेगा। प्रोफेसर विनीत शर्मा ने बताया कि नवीन जीन अनुक्रमण तकनीक की मदद से अब पहली बार इसका उच्च गुणवत्ता वाला जीनोम तैयार किया जाएगा। किसानों एवं आम नागरिकों हेतु राजस्व विभाग ने एक विशेष अभियान 1 से 15 जुलाई के बीच चलाया है। इस अभियान के तहत किसान भाई अपने खेतों की सटीक पैमाइश पारदर्शी तरीके से करा सकते हैं। यह पैमाइश रोवर तकनीक से किया जाएगा। यह उपकरण सभी तहसीलों में उपलब्ध करा दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि किसानों को धान के अलावा राजकीय बीज भंडारों पर मुफ्त बीज की किट दिया जा रहा है। इसकी बुवाई भी किसान बारिश में करें, साथ ही खेतों के मेड़ों को मजबूत रखें

0: ताकि मिट्टी का कटाव न होवे। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल किसान भाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस मौसम में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली और तिल जैसी फसलों की बुआई की जाती है। इसके साथ ही जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है वहां पर धान से अच्छा विकल्प कुछ भी नहीं है, जबकि कम वर्षा वाला क्षेत्रों में बाजरा, ज्वार और दालों की खेती लाभदायक है। किसान भाई खेत की गहरी जुताई, मिट्टी परीक्षण, प्रमाणित बीज का चयन और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वह अच्छी उपज के लिए जरूरी है। डॉक्टर मेनका ने बताया कि यदि धान की नर्सरी में लगातार बारिश के कारण पानी भर जाए और पौधे डूब जाएं, तो सबसे पहले खेत के अतिरिक्त पानी को तुरंत निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसान भाई मौसम के पूर्वानुमानों पर नियमित नज़र रखें और उसी के अनुसार बुवाई, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन करें। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब सरकारी खरीद दिनांक 8 जुलाई 2026 तक की जाएगी। जो किसान अभी तक इन फसलों को नहीं बेच पाए हैं वह अब जाकर उसको बेच सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों की खेती में प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के उपयोग और सरकारी सब्सिडी के बारे में बताया जा रहा है, ताकि किसान इसका लाभ उठाकर अधिक से अधिक खेती में यंत्रीकरण का प्रयोग करें, जिससे खेती में लागत कम और उत्पादन बढ़े। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम किया जा सके। IMD ने जुलाई में सामान्य से कम बारिश का अनुमान बताया है। कम बारिश होने के कारण इस वर्ष खरीफ फसलों पर काफ़ी असर पड़ेगा। किसान भाई सिंचाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करें ताकि खरीफ फसल के नुकसान से बच सकें। सरकार जुलाई के द्वितीय सप्ताह में गन्ना किसानों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम करेगी। यह कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। छोटी समितियों में 3 दिवसीय और बड़ी समितियों में 5 दिवसीय गोष्ठियां होंगी। इस गोष्ठी में नामांकन काउंटर और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस जागरूकता कार्यक्रम को गन्ना पर्यवेक्षक एवं महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा भी सहयोग किया जाएगा। अलनीनो के प्रभाव के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की चाल सुस्त पड़ने के कारण देश में धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई में 23% की कमी आई है। इसके साथ ही प्रमुख जलाशयों में भी 26% पानी ही बचा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक जून अंत तक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 23% की बुवाई कम हुई है। पूर्वानुमान है कि प्रदेश में 85% ही बारिश होगी। वैज्ञानिकों ने किसानों को मोटे अनाज की खेती की सलाह देते हैं। अल नीनो प्रभाव के कारण सामान्य से कम मानसून का सीधा असर मवेशियों के दूध देने की क्षमता पर पड़ रहा है। इस चालू वित्तीय वर्ष में दूध के उत्पादन की वृद्धि दर घटने की संभावना है। यह थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: ओम भैया।
2: हाँ राजेश भैया,
1: देखो कितनी नेक जानकारी रही किसान डायरी के माध्यम से अपने पंच जो कृषि समाचार पर आधारित रहे, और जिनका आलेख हम वाचन किया रहना अभिषेक कुमार सिंह भैया, और इनसे जो मतलब इनका संपादन किया है जो किसान डायरी का डॉक्टर सुशील कुमार राय जी, तो इन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। और देखो राजेश भैया, अषाढ़ का महीना शुरू हो गया है, है? और अषाढ़ में जब रिमझिम रिमझिम फुहार परत है,
1: पड़ी हुई खटिया भैया,
2: खटिया परी हो गई भैया चलत हो, लेकिन भैया वैपा जब अपन बैठ के चलत है और वही माँ कहूँ आल्हा सुने मिल जाए,
1: बिल्कुल भैया
2: है, तो जो ढोलक के थाप होते है वह भैया जब गूंजत है और एक साथ साथ जब बुलंद आवाज नैया भैया जो तान होते वह खिंचत है, तो ऐस लागत है कि भैया जो इतिहास है वो अपने सामने समझ लो, ऐस लागत है कि जीवंत हो गया है।
1: बिल्कुल भैया।
2: तो भैया एक आल्हा लेके आए हैं, वीर रस में यहाँ उत्साह भरा है, तो आओ सुना जाए भैया, और यो जो स्वर हवे वो रामरत पांडे भैया और साथिन का है, तो आओ सुना जाए भैया, पंचो भाई सुने आनंद ले माड़ो का दरबार।
1: बिल्कुल भैया।

0: राजेश भैया।
1: हाँ ओम प्रकाश भैया।
0: देखो इतना नीक भैया आल्हा एकदम झूम गेन एकदम आनंद आएगा है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और भैया देखो आनंद तब आ जाते हैं जब मौसम की जानकारी प्राप्त हो जाते हैं। और भैया हम पंचायत पंच उन खेती पाती काम है वे पहले तरह निपटाए ले थे तो कोनो नुकसान नहीं होते तो मजा मजा भैया हो
1: बिल्कुल भैया
0: जाते।
1: सही कहा तुम।
0: और हम देख रहे ना आपके हाथ में मौसम क्या हाल है हैं।
1: बिल्कुल भैया
0: और भैया खुश है के मारे हो कि मौसम बड़ा नीक हो गया है अपनी
1: बिल्कुल
0: फसलन के मारे। तो भैया जो है मौसम की जानकारी अपने पंच भाई दे दो।
1: बिल्कुल भैया। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग से जो

0: जानकारी मिली है आज यानी 3 की तारीख में, मतलब कुछ स्थानों पर पूर्वी और पश्चिमी गरज चमक के साथ में बरसात मतलब बरसात पड़े की संभावना है। और बात की जाए 5 और 6 तारीख में, मतलब कि अनेक जगह पर पूर्वी और पश्चिमी मतलब कि जो
1: उत्तर प्रदेश
0: है वहाँ हाँ। पर बरसात होने की संभावना है।
1: हाँ।
0: तो ये तो भैया मतलब मौसम की जानकारी रही है, बाकी तो आप मतलब अपने पंच तो जानते हैं कहाँ पर कैसा का है।
1: हाँ
0: तो
1: भैया देखो आषाढ़ लाग गया है और मानसून आए गवा है तो अपन भैया काम छपरा जाने सब बढ़िया बना लो है, पता लाग भैया
0: अगर ना बनाए तो।
1: हाँ और पता लाग जब पानी कस गया बरसा लाग तब लहे पन्नी अन्नी भैया घूम रहे हो है तो भैया तिरपाल तब नहीं समझ में आवत है, पहले भैया सब छपरा वपरा बना लो। और देखो एक चीज़ यह है जब अपन भैया फसल ठीक हो जाते हैं तो भैया जब बाजार भाव भैया मिल जाते हैं
0: बिल्कुल भैया
1: तो भैया बड़ा आनंद तब हो जाते हैं। तो भैया देखो 4 मंडी का थोक भाव हो वो अपने पंच भाई भैया जानकारी दे दो।
0: बिल्कुल भैया जो आज का भाव प्राप्त हुआ है बाजार का 4 मंडी का, वो भी गेहूं का, गेहूं का और भी फसलें हैं भैया उनका, तो कहा जाए कि गेहूं दड़ा जो लखनऊ मंडी में रहा 2590 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर का 2515 रुपया प्रति क्विंटल और गोंडा मंडी का 2595 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या में 2570 रुपया प्रति क्विंटल।
1: हाँ भैया और जो चावल कामन रहा लखनऊ मंडी में 3500 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 3550, गोंडा में 3130 और अयोध्या में 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
0: बिल्कुल भैया बात की जाए मक्का पीली की, तो मक्का जो लखनऊ मंडी में 2400 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 1950 रुपया प्रति क्विंटल और गोंडा मंडी का 2153 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या मंडी का 2350 रुपया प्रति क्विंटल।
1: और भैया छोटा चना के जो भाव रहा लखनऊ मंडी में 6680 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 6350, गोंडा में 6770 और अयोध्या में भैया 6500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
0: बिल्कुल भाई सही है भैया सही कहो, काहे से बात की जाए जो अपन उजरकी आलू है
1: हाँ।
0: तो वही का लखनऊ मंडी में 930 रुपया प्रति क्विंटल और कानपुर में 810 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा मंडी का 895 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या मंडी का 950 रुपया प्रति क्विंटल।
1: हाँ भैया और जो प्याज लाल वाला रहा वो लखनऊ मंडी में 1650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में भैया इतनी महंग रहा 2300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, गोंडा में 2500 और अयोध्या में 2000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
0: बिल्कुल भैया और इसके बाद बात की जाए मटर सफ़ेद की, तो लखनऊ मंडी का 4500 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर का 4560 रुपया
1: प्रति क्विंटल भैया
0: और गोंडा मंडी का 4125 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या मंडी का 4390 रुपया प्रति क्विंटल।
1: और भैया जो पका टमाटर रहा
0: हाँ,
1: लाल वाला भैया
0: अच्छा
1: वही क्या दाम लखनऊ मंडी में रहा 2800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 2400 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 3000 रुपया और भैया अयोध्या में 2895 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
0: अब भैया बिल्कुल सही कहो, कहे सही के बात की जाए गुड़ पारी की यानी कि मीठे
1: की भैया जरूर बात
0: करो। लखनऊ मंडी का जो भाव रहा है 4700 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर का 4425 रुपया प्रति क्विंटल, यूँ तो रहा आज का बाजार भाव भैया।
1: हाँ ये थोक मंडल का हाँ प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। और देखो अपन पंच भाई देखो कार्यक्रम सुनत हैं और अगर उनका पहले तो कार्यक्रम की जानकारी हो जाते कि मतलब का सुनी है का भैया कल सुनी है तो भी भैया अपन पहले तो बैठ के मैया भैया ध्यान लगा लेते हैं और भैया पहले तो बाजा आ जाते बैठ जाते हैं और आवाज़ बढ़ा लेते हैं भैया। तो भैया देखो अपने पंच भाई का बताया दिन जाए कि कल के कार्यक्रम मैया भैया का सुनी है तो राजेश भैया बताओ भैया कल के कार्यक्रम में कहाँ सुनिए पंडित।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से लोकायतन में सुनिए ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, ये विषय पर जो बात कही मैं जानकारी दे हैं सुनील कुमार पांडे भैया और जो खेती किसानी में जानकारी रही है खरीफ में सह फसली खेती जिके मतलब जानकारी दे हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह और इनसे बात कही करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय, तो ये तो भैया कल जरूर सुने।
1: तो भैया ये तो है कल का भैया जानकारी जो कार्यक्रम अपन प्रस्तुत हुए लोकायतन और खेती किसानी की का सुनिए पंच भाई, वही के साथ साथ देखो अपन पंच भाई कार्यक्रम सुनत हैं अपन बैठ के मैया भैया कई कार्यक्रम लाग तो अपन भैया प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, वही के साथ साथ कार्यक्रम सुनत हैं वे चाहते हैं कि देखो हमू पंचे जब कार्यक्रम करे थे तो सोचे थे ना ही सो जाए वही सो जाए तो अपन पंच भाई अगर कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ सुनक चाहते हैं तो भी अपन प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, अपन चिट्ठी पाती लिख सकते हैं और देखो अब तो भैया ईमेल भेज सकते हैं दन दरे और सन दे हम पंचंती पहुँच जाए और भैया तुरंत भैया प्रयास कीन जाए हैं।
0: बिल्कुल
1: तो अपन जो कार्यक्रम का पता है पाती कहाँ लिखे भैया वो बता दो।
0: बिल्कुल भैया जो अगर पाती लिखे गए वो लिखा गए आपके यहाँ कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी केंद्र लखनऊ, पिन कोड है 226

0: 001 यही पर अपनी चिट्ठी पत्री लिख के भेज सकते हैं। और बात की जाए जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की भैया के हो तो वही में भी अपनी चिट्ठी भेज सकते हो। तो वही का जो पता है फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com ये ईमेल आईडी पर अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं भैया भेज सकते हो, जिससे जो अपनी चीज़ें सुनना चाहते हो बिल्कुल कह सकते हो।
1: हाँ तो अपने पंच भाई जो है देखो पता नोट कर लेनी हुई है, नौपर प्रतिक्रिया भेजें। और देखो अब भैया अपने इशारा हो रहा है, कार्यक्रम का समय हो गया है, तो अपने पंच भाई से लीजिए आज्ञा। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
4: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं

0: अटूट बनी रहे।
1: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
2: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
3: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
1: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में

0: श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
1: यूपी का APY स्कीम में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश वर्ष की बात करें तो 9,25,00,000 से ज़्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफ़ी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाए प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज का अंग्रेजी कार्यक्रम।

0: क्रम मीरावेव 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
8: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

अलका याग्निक की आवाज़ में जख्म फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और एमजी श्रीकुमार की युगल आवाज़ों में, डोली सजा के रखना फिल्म से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं केपीएस वर्मा की वार्ता, भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पी पीवी नरसिम्हा राव।
1: पीवी नरसिम्हा राव कभी भी वित्त मंत्री नहीं रहे देश के, पर 1980 से 1984 तक भारत के विदेश मंत्री थे। सभी देशों की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचा समझने का मौका उन्हें मिला होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उनके आर्थिक सुधारों में 1978 के बाद चीन में डेंग जियाओपिंग ने नीतियों में जो बदलाव किया उसकी झलक मिलती है। वो जानते थे कि वो कभी वित्त मंत्री नहीं रहे हैं और इसलिए उनका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत सीमित है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो पूरी दुनिया में पहले से ही जाना माना अर्थशास्त्री माना जाता था। इसके लिए उन्होंने श्री मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री बनते ही सबसे पहला चीज़ जो मनमोहन सिंह ने देखी और पीवी नरसिंह राव से उसका जिक्र किया वो ये था कि देश में भयानक रूप से कमी थी विदेशी मुद्रा की, डेफिसिट फाइनेंसिंग का गैप बहुत बढ़ गया था और उसको पूरा करने के लिए, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह ने एक सुझाव दिया कि हमारे पास जो सोना है और जो काम नहीं आ रहा है, पड़ा हुआ है किसी भंडार में, उसको गिरवी रखा जाए। इसके लिए इंग्लैंड की और जापान की बैंक में ये सोना गिरवी रखा गया और उससे जो विदेशी मुद्रा आई उससे हमारा काम बहुत अच्छी तरह चलने लगा। उसके अलावा विदेशी मुद्रा बढ़ाने का एक और काम नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की टीम ने किया, वो ये था कि रुपये का अवमूल्यन। जैसे ही रुपये का अवमूल्यन होता है हमारी देश में बनाई हुई चीज़ों की कीमत विदेश में घट जाती है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इस एक्सपोर्ट के बढ़ जाने से हमारी विदेश मुद्रा और बढ़ती है और हमारी विदेश मुद्रा नरसिंह राव के समय में ही इतनी बढ़ गई थी कि हमने वो गिरवी रखा सोना उन्हीं के कार्यकाल में वापस भी ले लिया था। असल में क्या किया गया इस जोड़ी ने आर्थिक सुधारों में, उनमें सबसे पहला था बंद

व्यवस्था को खोलना। हमारी व्यवस्था अब तक इस टाइप की थी कि जो कार बना रहा है उसको कंपटीशन बाहर से न मिले, इसके लिए बाहर की कारों पर बड़ा टैरिफ लगाया जाता था, करीब करीब सभी चीज़ों में था। तो इससे ये हो रहा था कि हमारी आत्मनिर्भरता तो बढ़ रही थी लेकिन हम आइसोलेट भी होते जा रहे थे पूरी दुनिया से। हमारी गुणवत्ता अपने उत्पाद की और उत्पादकता में भी कमी आ रही थी। इसको सही राह पर लाने के लिए व्यवस्था को खोला गया, लिबरलाइजेशन किया गया, जिससे रूल्स और रेगुलेशंस और लाइसेंस राज से थोड़ा सा छुटकारा मिला और इसकी वजह से विदेशी निवेश भी आने लगा और ज़्यादातर क्षेत्रों में विदेशी निवेश का स्वागत किया गया। विदेशी पूंजी आने से हमें नए नए उद्योग और नए नए व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। इससे गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ी और लोगों को नौकरियां मिली जिससे उनकी परचेज कैपेसिटी बढ़ी और इसका असर ये हुआ कि ओवरऑल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने लगा। जो कभी 3% रहता था लाइसेंस राज के टाइम में, वो अब 6-7% टाइप का होने लगा। इसके अलावा सरकार ने एक काम और किया, जितने भी सरकारी संपदा थी, जो संस्थान थे, संकाय थे और जो लॉस में चल रहे थे, हानि में चल रहे थे, जिसके लिए फिर सरकारी खजाने से भरपाई करनी पड़ती थी, उनका निजीकरण शुरू किया। लेकिन इसमें भी डेंग जियाओपिंग की शैली का एक तरह से झलक मिलती है। एक्चुअली डेंग जियाओपिंग ने विदेशी पूंजी या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश की सुरक्षा, चीन की सुरक्षा और उनके सामाजिक ढांचे पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। इस जोड़ी ने, पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने भी लगभग यही किया। बड़े बड़े रक्षा संस्थान सरकार के ही रहे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर्स जैसे स्टील प्लांट, रेलवेज, ये सरकार के नियंत्रण में ही रहे, लेकिन बाकी जगह जहाँ रिटेल वगैरह में या छोटे मोटे उद्योग धंधों में विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया और उसका फर्क भी पड़ा। इससे हमारी संप्रभुता पर भी कोई असर नहीं आया और हमारा जीडीपी भी रेट अच्छी गति से बढ़ने लगा। और इसका असर ये हुआ कि जब नरसिम्हा राव की सरकार 1996 में गई तो उसके बाद भी किसी भी सरकार ने इन सुधारों को वापस नहीं लिया, वो चलते रहे और उसकी वजह से सरकारें बदलीं, जल्दी जल्दी सरकारें बदलीं, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। एक और काम जो किया गया था वो ये किया गया था कि हमारे देश में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत लंबे चौड़े बड़े बड़े कानून होते थे जो विदेशियों को नहीं समझ में आते थे या जिनसे अपने घर के उद्योगपति ही काफ़ी परेशान रहते थे, उनको या तो हटाया गया या उनमें ढिलाई दी गई और ऐसे नियम बनाए गए जिसके तहत विदेशियों को भी और देश के पैसा लगाने वाले पूंजीपतियों को भी आसानी हो सके। इसलिए नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलाव का जनक माना जाता है, हालांकि इसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत सहयोग और रहा है। इससे पहले आपको ये और बताना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक कंट्रोलर होता था उद्योग धंधों के नियम करने के लिए, सीओसी कहलाता था। उससे वो जो कंट्रोल ज़्यादा करता था और उसको रेगुलेट कम करता था। इसके लिए भारत सरकार ने 1992 में सेबी का गठन किया। इस सेबी का काम ये था कि निगरानी भी रखे और लोगों को बताए कि सही रास्ता क्या है और उस पर कैसे चलना है। तो इन नियमों के आने के बाद विदेशियों को जो दिक्कत होती थी ईज ऑफ बिजनेस की, उसमें काफ़ी राहत मिली और 1904 तक आते आते हमारे देश में एक तरह की औद्योगिक क्रांति आ गई थी जिसकी वजह से हम नए नए क्षेत्रों जैसे ये कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, इसमें चीन से भी आगे निकल गए थे। और मुझे लगता है कि इसके लिए नरसिम्हा राव जी और मनमोहन

0: सिंह जी को देश को धन्यवाद देना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे केपीएस वर्मा की वार्ता। विषय था भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पी पीवी नरसिम्हा राव। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522-4530-207, 0522-4530-207।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 400.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर अपने रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। रात्रि के 8:10 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं जाफर हुसैन खां का नात व कवाली।

इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना जाफर हुसैन खान का नात व कवाली। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रही हैं। रात्रि के 8:30 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में सनम तेरी कसम फिल्म से। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं शक्ति फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड

0: की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है।

0: ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली

0: में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा।

राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Number one, Yannick Sinner, is currently facing US player Jensen Brooks-Bai, while Daniil Medvedev is taking on Jan Lennard Struff of Germany. In another third-round fixture, Serbian Novak Djokovic is taking on Arthur Rinkonesh of France. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today, extending their rising streak for the third straight session. The Sensex rose 262 points to close at 77,764. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government says Indus Waters Treaty remains suspended. Pakistan must renounce support to cross-border terrorism. India on track to achieve $1 trillion export target this year, says Commerce Minister Piyush Goyal. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia, Australia and New Zealand on a six-day tour beginning Monday. Defence Acquisition Council clears procurement proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकिफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफ़िका रोड मैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामे नुक्ता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत, जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में

0: फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमरीका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला मोहम्मद उमर के साथ रबते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। सभी सुनने वाले श्रोताओं को कस्तूरी का प्यार भरा नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में आप पत्र और ईमेल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईमेल के पते से, जिस पर तुरंत आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि बहुत सारी फरमाइश हम तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी जिन्होंने अभी नहीं भेजा है उन्हें अपनी ईमेल आईडी बता देते हैं, जिससे कि वे हमें अपने फरमाइश को हमारे तक भेज सकें। हमारी ईमेल आईडी है aapkepatraapkeemail@gmail.com। स्पेलिंग इस तरह से रहेगी aapkepatraapkeemail@gmail.com। तो जल्दी से अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दीजिए। और आज वैसे तो बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। पहला ईमेल जो हमें भेजा है वो हमारे पास आया है ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रमाशंकर बहाई रक्षा मौर्या रामसागर साहू रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति। आप सभी सुनना चाहते हैं नजराना फिल्म का ये गीत, तो आप सभी को सुनवाते हैं। लेकिन सबसे पहले ना आपको एक बार पत्र का पता भी बता दें कि अगर कोई इस वक्त कागज़ कलम लेकर के बैठा हो और पत्र का पता लिखना चाहता हो तो कैसे वो हमारे तक अपनी फरमाइश भेज सकते हैं पत्र के माध्यम से, वो भी नोट कर लें। आपको लिखना है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन संख्या है 226001। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन संख्या है 226001। और अब फरमाइश पूरी करते हैं आप सभी सुनने वाले श्रोताओं की।

कार्यक्रम में आगे बढ़ चलते हैं और आज की अगली जो ईमेल है ना उसे शामिल कर लेते हैं। ये ईमेल हमारे पास आई है संबलपुर कांकेर से। फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने ये ईमेल हमें भेजी है और आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार, और आप सुनना चाहते हैं बहारों की मंजिल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। तो चलिए जल्दी से आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

आगे बढ़ चलते हैं। और अब जो कार्यक्रम का अगला गीत हमने शामिल किया है उसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि अश्विन, मंगलाबेन राजेंद्र जी शाह, और आप सभी ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, और आप सभी सुनना चाहते हैं किनारा फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत। तो चलिए जल्दी से आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं।

शब्दों का जो जादू होता है ना, वो रेडियो के उस तरफ से हमारे श्रोता महसूस करते हैं, और जब उनके पत्र और ईमेल आते हैं ना, तो रेडियो के इस तरफ से हम भी उस जादू को महसूस करते हैं। और इस शब्दों के ताने बाने के साथ जो रिश्ता बनता है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और आज के कार्यक्रम की जो अगली ईमेल है वो भी कुछ ऐसी ही है, और भेजने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो हैं किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे। और आप सभी श्रोताओं ने जिस गीत की फरमाइश की है वो तो मैं बिल्कुल आपको सुनवाऊंगी, लेकिन कुछ पंक्तियां भी आपने अपने इस ईमेल के माध्यम से हम सभी के साथ साझा करने का आग्रह किया है, तो उसे भी शामिल करती हूँ। समय और शब्द दोनों बहुत अनमोल होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिए, समय की कद्र कीजिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही इंसान की असली पहचान बनता है, और सम्मान देने वाले लोग हमेशा दिलों में बस जाते हैं। बेहद खूबसूरत बात। और साथ ही एक छोटा सा और मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी इसमें, कि ना सिर्फ ये सारी चीज़ें बल्कि वो लोग जो समय के साथ साथ हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ चलते हैं, उनकी भी कद्र बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। क्योंकि कई बार ना हम जिंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन पलट कर जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। और उनमें वो लोग भी होते हैं जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और जब हम ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचते हैं तो उन्हें कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सही मायने में ज़िंदगी का हासिल तो वही है ना जो हमारे साथ हर वक्त चलते हैं। खैर, आप सभी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये अपनी फरमाइश भेजी है, तो चलिए जल्दी से आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा गीत आंधी फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला जो है ना वो हमने शामिल किया है फरमाइशी क्रम में एक पत्र जो हमें भेजा है कटरा चांदखां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आपने जिस गीत की फरमाइश की है उसी गीत के लिए हमारे पास खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा का भी ईमेल आया है। तो भाई खुर्जा से ईमेल आया है और खुर्जा की बहुत सारी चीज़ें भी प्रसिद्ध हैं, तो आप सभी की फरमाइश जल्दी से पूरी करते हैं और बरसात फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का जो आज का आखिरी ईमेल हमारे पास आया है वो हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है ना वो है जोशीला फिल्म से, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश पत्र के माध्यम से भी हमारे पास आई है। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कुसुम ठाकुर, पूनम ठाकुर, नेहा ठाकुर और लक्ष्मी ठाकुर, और इन्होंने ये पत्र हमें भेजा है अयोध्या से। तो चलिए जल्दी से आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी को सुनवाते हैं।

इस गीत के साथ ही अब आपकी पसंद कार्यक्रम का सफ़र यहीं पूरा होता है, और जो हमें ईमेल या पत्र नहीं भेज पाए उन्हें हम अपना पता एक बार फिर से बता दें, ताकि जब कभी भी फरमाइशी कार्यक्रमों का दौर चले तो आप उसकी दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके ईमेल @gmail.com। इस पर आप अपनी फरमाइश किसी भी फरमाइशी कार्यक्रम में भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारा पता नोट कर लें, आपको इस कार्यक्रम के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन संख्या है 226001। और अब कार्यक्रम से मुझे अनिका कस्तूरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

श्रोताओं, आज के इस फिल्म संगीत के सफ़र में हम आज जिन सदाबहार गीतों को सुनेंगे उन्हें हमने शामिल किया है 90 के दशक के उन सदाबहार हिंदी गीतों को इस कार्यक्रम में जोड़ा है जो दौर एक अलग मासूमियत के सुरों को दर्शाता है। कहीं दोस्ती की गहराई इन गीतों में समाहित होती है तो कहीं जिंदगी के हर भाव इस संगीत की खूबसूरती से सराबोर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं कुमार सानू की आवाज में परदेस फिल्म के इस गीत के साथ।

कहते हैं ना कि कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते। 90s का दौर वो दौर था जब गानों को जिया जाता था, ना सिर्फ जिया जाता था बल्कि आंख बंद करके। आज भी जब उस गीत को हम सुनते या गुनगुनाते हैं तो उस दौर की तमाम यादें भी हमारे जहन में ताज़ा होती हैं। और कार्यक्रम का जो अगला गीत हमने शामिल किया है ना, वो हर महफिल में कुछ ऐसे ही जान डालने वाला है। कार्यक्रम का अगला गीत है जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, कुमार सानू और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में।

अलका याग्निक और विनोद राठौर की इस खूबसूरत सी जोड़ी के साथ जो गीत आपने बाजीगर फिल्म से सुना वो 90s के उस दौर की याद ताज़ा कराता है ना, जब टेप रिकॉर्डर के जो कैसेट्स हुआ करते थे उन्हें पेंसिल के एक सिरे से घुमाना और अपनी पसंद का साइड ए या बी का गीत सुनना। और 90s के दौर की ना एक और बड़ी ही ख़ास बात थी, वहाँ के जो गीत संगीत का जो भी सुकून था ना वो बड़ा ही शांत, बहुत सुलझा हुआ था। चलिए उसी दौर में आपको लिए चलती हूँ साजन फिल्म के इस गीत के साथ।

कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में सुन रहे थे कार्यक्रम का आप ये गीत। और आखिर में अब बढ़ चलते हैं और आपको सुनवाते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से कार्यक्रम का आखिरी गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित किशन महाराज का तबला वादन। पहले सुनिए ताल धमार, फिर सुनिएगा झप ताल और अंत में सुनिएगा तीन ताल।

There's nothing to do.

अभी आप सुन रहे थे पंडित किशन महाराज का तबला वादन। पहले आपने सुना ताल धमार, फिर आपने सुना झपताल और फिर आखिर में तीन ताल। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे। पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में आप समाचारों को सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे

0: of Germany beat Daniel Medvedev. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो गए हैं। श्रोताओं, अब हमारी आज की दूसरी व अंतिम सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी कल की पहली सभा के विविध कार्यक्रमों के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।